सुप्रभात। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आज दिन है सोमवार। शक संवत 1948 की वैशाख माह की 28वीं तिथि तदनुसार 18 मई 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58:28 हो चुके हैं। हम उपस्थित हैं अपनी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। इस सभा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी जिक्र किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें तथा मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम खेती किसानी का, जिसमें आज हमें जानकारी मिलेगी समेकित कीट प्रबंधन के बारे में। जानकारी दे रही हैं अनीता तिर्की।
2: समेकित कीट प्रबंधन व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षण मानव संसाधन विकास के सभी मिले जुले उपाय, जिससे हानिकारक कीड़ों की संख्या आर्थिक नुकसान के स्तर से नीचे बनाए रखने के लिए एक व्यापक परिस्थिति विज्ञान से जुड़ी प्रणाली है। यह कम खर्च वाली आर्थिक रूप से युक्तिसंगत ढंग से फसल की रक्षा के लिए कायम की गई एक ऐसी प्रणाली है जो पूरे पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव डालती है और उपज बढ़ाने में मदद करती है। समेकित कीट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य कीड़ों को आर्थिक क्षति स्तर से नीचे रखना है। इस प्रणाली के हिस्सों में हानिकारक कीड़े, बीमारियों और खरपतवारों की रोकथाम के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए जाते हैं, जैसे व्यवहारिक नियंत्रण, यांत्रिक नियंत्रण, जैविक नियंत्रण, वंशानुगत नियंत्रण, कानून के द्वारा और रासायनिक नियंत्रण। व्यवहारिक नियंत्रण का मतलब है ऐसे नियंत्रण से जिसमें परंपरागत अपनाई जाने वाली कृषि प्रणालियों को थोड़ा सा परिवर्तन करके कीटों और रोगों के आक्रमण को कम किया जाए। इस नियंत्रण के अंतर्गत खेतों की गहरी जुताई गर्मी में करनी है, हरी खाद के लिए सनई, ढेंचा, मूंग आदि फसल लेना, कीट एवं रोग प्रतिरोधी जो प्रजातियां हैं उसका प्रयोग करना, फसल चक्र अपनाना, बीजों को उपचारित करना, भूमि परीक्षण एवं संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करना, खेत को खरपतवार से मुक्त रखना, पौधों की रुपाई निश्चित दूरी पर करना इत्यादि शामिल हैं। यांत्रिक नियंत्रण में हम कीड़ों और उनके अंडे को एकत्रित करते हैं, जैसे कि हेलोथीस और स्टेप्टोरा, इसकी विकसित सुंडी को एकत्रित करके नष्ट किया जाता है। उसी तरह भुआ पिल्ली के अंडे जो हैं उसको भी एक जगह में एकत्रित करके नष्ट करना इस क्रिया में आता है। जैविक नियंत्रण यह नाशी जीव को नियंत्रित करने वाली विधि है, जिसमें कीटों, फफूंदों और खरपतवार इत्यादि को प्राकृतिक शत्रुओं का प्रयोग किया जाता है। पहले प्राकृतिक शत्रु को पहचान कर उसे पालकर बढ़ाया जाता है, उसके बाद उचित रूप और माध्यम की सहायता से फसलों पर तब छोड़ा जाता है जब नाशी जीव आर्थिक क्षति स्तर से अधिक आबादी में फसलों पर लगे हों। या हम यूं कह सकते हैं कि इस विधि में कीड़ों को कीड़े के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। जैविक नियंत्रण में इसके अलावा बायोजन के अलावा जीवधारियां और पौधों से निर्मित बायो पेस्टिसाइड भी आता है। बायो एजेंट जीवित प्राकृतिक शत्रु और बैक्टीरिया, फफूंद, विषाणु ये सभी इसमें आते हैं। फफूंद कीट रोगाणु में मेटेराइजियम, बैक्टीरिया में वेसिलस, विषाणु में ग्रेनोलाइवरा, न्यूक्लियर पोलीहाइड्रेटिस वायरस इत्यादि आते हैं। वंशागुणत जो नियंत्रण है इसमें हम वैसे बीज तैयार करते हैं जिसमें कीड़ों और रोग के आक्रमण ना हो, जैसे कपास में सुंडी के नियंत्रण के लिए बीटी कपास। रासायनिक नियंत्रण में हम सभी रसायन के द्वारा रोग और कीटों का नियंत्रण करते हैं। समेकित कीट प्रबंधन जो है इसका सबसे बड़ा फायदा है कि इससे पर्यावरण अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है, यह आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है।
1: समेकित कीट प्रबंधन, इस विषय पर जानकारी दे रही थी अनीता तिर्की कार्यक्रम खेती किसानी में। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन, संकलन एवं वाचन है दिनेश कुमार लाल का।

ईश्वर को परमपिता कहा जाता है। कभी कभी हम अपने दुखों से इतने पीड़ित हो जाते हैं कि परमपिता परमेश्वर पर ही पक्षपाती होने का आरोप लगा बैठते हैं। तनिक विचार करके देखिए कि क्या पिता कभी भी अपनी संतान को कष्ट में देख सकता है। ईश्वर की दयालुता का सबसे बड़ा प्रमाण है विस्मृति। हम चेतन या अचेतन अवस्था में सदैव जागृत रहना चाहते हैं। हमें हर क्षण हमारे आसपास क्या हो रहा है उसके प्रति सतर्क रहने की, उसे याद रखने की आदत बन गई है। प्रकृति ने निद्रा और मृत्यु का नियम बनाया है। निद्रा में जाते ही हम दिन की अधिकांश घटनाओं को भूल जाते हैं। अगले दिन मात्र बहुत ही महत्वपूर्ण या मन पर छाप छोड़ने वाली बातें याद रह जाती हैं। इसी प्रकार मृत्यु, जो काल निद्रा है, वो हमें जीवन भर की घटनाओं को भूल जाने का वरदान देती है। यही प्रकृति हमें कभी भी

0: भविष्य के विषय में नहीं बताती और न ही अतीत की सभी बातों को याद रखने देती है। हमें जो थोड़ी सी स्मृति रखने की अनुमति प्रकृति से मिली है, उसी से हमने अपने जीवन को अधिक कष्टमय बना रखा है। कुछ लोगों को अपने दुख से इतना लगाव होता है कि वे उससे एक क्षण भी निकलना ही नहीं चाहते। स्मृतियां ही दुख का कारण है। हृदय में एक शूल गड़ा हो तो राजसी पलंग पर मलमल की चादर ओढ़कर भी नींद कहां आती है। ईश्वर यदि हमें कष्ट देना चाहते हैं तो सबसे पहले ऐसा विधान बना देते हैं कि हमें सब कुछ याद रहे। विचार कीजिए, हम अपने वर्तमान के कष्टों से इतनी दुखी हैं तो सभी जन्मों की बातों को याद करके कितने अधिक दुखी होते। ग्लानी और पश्चाताप के बोझ तले हम इतना दब जाते कि अवसाद के दलदल में ही धंसे रहते। थोड़ी सी अवधि के लिए मिली हुई स्मृति से हम तमाम ताने बाने बुनकर जीवन को जालों में उलझा लेते हैं, जबकि सकारात्मक होकर आगे बढ़ने का एक ही मंत्र है, बीती ताहे बिसार दे आगे की सुध ले।
1: बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, इस विषय पे प्रेरणादायक बातें अभी आप सुन रहे थे दिनेश कुमार लाल से कार्यक्रम चिंतन में। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम आराधना का, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आराधना कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम राष्ट्र प्रेम देशभक्ति के गीत के साथ। तो आइए सुनते हैं फिल्म आनंद आश्रम का ये देशभक्ति गीत हेमंत कुमार और साथियों के आवाज़ में।

फिल्म आनंद मठ का अभी एक गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, हेमंत कुमार और साथियों के स्वर में संगीत था हेमंत कुमार का और इस गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रांची से आराधना कार्यक्रम और आराधना कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे भक्ति रचनाएं। कलाकार हैं तृप्ति शाकिया और संगीतकार हैं धनंजय मिश्रा।

सच ही तो है, जब हम जीवन में कभी भटक जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, कठिन परिस्थितियों में घिर जाते हैं, तब ईश्वर हमें सही राह दिखाते हैं और कठिन से कठिन परिस्थितियों में सकारात्मक रहने की शक्ति भी देते हैं। ईश्वर में अटूट विश्वास और प्रेम मनुष्य को निडर, शांत और धैर्यवान बनाता है।

सच ही तो है, ईश्वर कब किस रूप में हमारे सामने आ जाए कहना मुश्किल है। उनकी कृपा दृष्टि कब हम पर हो जाए ये कोई नहीं जानता। जो मनुष्य अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर देता है, फल की चिंता नहीं करता है, वो कभी दुखी नहीं होता। ईश्वर हमें वो नहीं देते जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वो देते हैं जो वास्तव में हमारे लिए अच्छा होता है। व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर जब चलता है तो ईश्वर स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं। असंभव कुछ भी नहीं है, बस ईश्वर पर भरोसा रख के हम आगे बढ़ें। निश्चित मानिए, हमें वो सब कुछ मिलेगा जो हमने इच्छा की है, जो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और वैसे भी ये शरीर नश्वर है, मिट्टी का है, तो इससे ज़्यादा मोह ना रखते हुए मन ईश्वर में लगाएं और हर वो काम करें, हर वो चीज़ करें जो ईश्वर को अच्छा लगे और हमें सुकून दे।

तृप्ति शाक्या के गाए इस भजन के साथ ही आज का आराधना कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का।

अयोध्या से आई बारात की चहल पहल जनकपुर में चहुं ओर दिखाई दे रही है। हेमंत ऋतु, अगहन का सुहावना महीना, ग्रह तिथि, नक्षत्र योग तथा शुभ दिन सभी अनुकूल होकर जब एकत्र हुए तो स्वयं ब्रह्मा ने लग्न पत्रिका बनाकर मुनिवर नारद के हाथों से राजा जनक के पास भिजवाया। शुभ मुहूर्त आया देख राजा जनक की नगरी में मंगल

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। श्रोताओं, आइए आपको जानकारी दे दें आज हमारे केंद्र से कौन कौन से कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। 7:05 का वक्त होता है सेहत संबंधी कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा का, जिसमें आज आप सुनेंगे भेंटवार्ता, बवासीर कारण और बचाव। भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर सुरेश राव, उनसे बातें करेंगे संजीव कुमार लाल। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुबह सुरीली आप सुनते हैं 7:15 पर। खुला आकाश का वक्त होता है 7:45 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे वार्ता अप दीपो भव। वार्ताकार होंगे पंकज मित्र। लोक रंग लोकगीतों का यह कार्यक्रम आप सुनेंगे आज 8:45 पर। आज यह कार्यक्रम नागपुरी भाषा में प्रसारित किया जाएगा। कलाकार होंगे दीन बंधु ठाकुर और साथी।

रसरंजन हम आपके लिए लेकर आते हैं सुबह 9 बजे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का वक्त होता है 9:30 पर। आज हमारे कलाकार होंगे चेत सुंदर ठाकुर, जिनसे हम सुनेंगे सितार पर राग ललित में आलाप और जोड़ के बाद दो गते प्रस्तुत होंगी। दोनों ही गते 3 ताल में निबद्ध है। तबले पर संगत करेंगे संदीप चटर्जी। 10 बजे का वक्त होगा कार्यक्रम आओ साथ चलेगा, जिसमें आज चर्चा होगी जनगणना, राष्ट्र निर्माण और विकास की आधारशिला। भेंटवार्ता आप सुनेंगे जनगणना 2027 के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। भेंटवार्ताकार होंगे श्री राम नारायण सिंह, एडिशनल कलेक्टर रांची। उनसे बातें करेंगे सिंधु मिश्रा। कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी नूतन प्रसाद की। चौहान रांची का वक्त होता है 10:30 पर। आपकी पसंद 11:30 पर। महिलाओं को संबोधित दैनिक कार्यक्रम गृहलक्ष्मी आप सुनते हैं हर दिन 12 बजे। आज इस कार्यक्रम में चर्चा होगी बदलते मौसम में सावधानियां। भेंटवार्ता आप सुनेंगे आयु अनुकूल उपयुक्त आहार, बच्चों के स्वास्थ्य का आधार, गर्मियों में बच्चों का खान पान। कार्यक्रम की प्रस्तुत करता होंगे नूतन प्रसाद। प्रायोजित कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं दिन के 12:30 पर। और उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होता है 1:20 पर। हमारी आज की कलाकार हैं श्रीमती अनीता सेन। एक बजकर 45 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम सुगम संगीत जय भारती। फौजी भाइयों का यह कार्यक्रम होता है 2:30 पर। नॉन स्टॉप अंताक्षरी हम सुनते हैं 3 बजे। रांची मेलोडीज का वक्त होता है 3:30 पर। और 4:02 पर आप एक बार फिर सुन पाएंगे आओ साथ चले। 4:35 पर सांझ सरगम प्रसारित किया जाएगा। 5:02 का वक्त होता है युवा श्रोताओं को हमारे दैनिक कार्यक्रम युववाणी का। आज चर्चा होगी वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, इंटरनेशनल म्यूजियम डे पे। साथ ही इतिहास में आज के दिन के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। आज की कंपेयर होंगी आद्य शक्ति और प्रज्ञा। कार्यक्रम के प्रस्तुत करता होंगे गौरव कुमार पांडे। श्रमिक साथियों का कार्यक्रम श्रमिक लोक हम आपके लिए लेकर आते हैं 5:30 पर। आज चर्चा का विषय है संस्कृति की संवाहक, आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष। जानकारी और सावधानी में आज आपको मिलेगी जानकारी HIV रोकथाम की कुंजी। साथ ही संग्रहालय संस्कृति और सभ्यता के संरक्षक, शहरों में रोजगार और कौशल विकास का आधार। आज के कंपेयर हैं इस कार्यक्रम में योगेश्वर राम और जया श्रीवास्तव। कार्यक्रम की प्रस्तुति है प्रशांत गौरव की। खेतीबाड़ी का वक्त होता है 6:02 पर। और इस कार्यक्रम की प्रस्तुति होती है संजीव कुमार लाल की। और इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे बकरी पालन से लाभ, प्रश्नोत्तरी में गर्मियों में दुधारू पशुओं का प्रबंधन, विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर भरत महतो। श्रोताओं ये थी संक्षिप्त जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की। थोड़ी देर में आप सुनेंगे संस्कृत और हिंदी समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

एयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः सुरेश चन्द शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी गतरात्रौ गोथेनबर्ग इत्यत्र स्वीय स्वीडिश समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यमुना साकं संवादं विहितवान्। श्रीमोदी द्विदिवसीय स्वीडन यात्रान्तर्गतं गतदिने गोथेनबर्ग इत्यत्र सम्प्राप्तवान्। भारत स्वीडन देशयोः सम्बन्धेष् मोदिनः असाधारण योगदानाय दूरदर्शी नेतृत्व सम्माने च प्रधानमन्त्री श्रीमोदी रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रेड क्रॉस इत्यनेन सम्मानेन सभाजितवान्। प्रधानमंत्री मोदी

0: सह प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय वार्तान्तर्गतम् उभौ नेतारौ भारत स्वीडन सम्बन्धानां समेषां पदक्षेपाणां समीक्षामपि कृतवन्तौ। उभौ नेतारौ व्यापार निवेश प्रविधि नवाचार हरित परिवर्तनम् अन्तरिक्ष रक्षा अनुसन्धानं समेत्य नैकेषु विषयेषु चर्चितवन्तौ। स्वीय सम्बोधने श्रीमोदी आतंकवादम् आलोचयन् नैकेषु विषयेषु विस्तृतेन वक्तव्यं प्रकटितवान्। आतंकवादं विरुध्य संघर्षे स्वीडिश प्रधानमन्त्रिणः समर्थनाय आभारमपि श्रीमोदी प्रकाशितवान्।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना स्वीडिश समवायाः आमन्त्रिताः। गोथेनबर्ग इत्यत्र प्रमुख स्वीडिश समवाय प्रमुखैः सह वार्तान्तर्गतं श्रीमोदी स्वीडिश समवायान् विनिर्माण हरित हाइड्रोजन अभियानं स्वच्छोर्जा अन्येषु क्षेत्रेषु च स्वीयोपस्थिति संवर्धनाय आग्रहमपि कृतवान्। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी अद्य स्वीय यात्रायाः चतुर्थे चरणे नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय अथ द्विपक्षीय वार्ताभ्यः श्रीमोदी अद्य नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नॉर्वे इत्यत्र एषा प्रथमा यात्रा स्यात्। श्रीमोदी राजा हेराल्ड पंचम इत्यमुना अथ रानी सौम्या इत्यनया साकं च मेलनं कुर्यात्। श्रीमोदी तत्रत्य प्रधानमन्त्रिणा जोनास गहरस्टोरे इत्यमुना साकं द्विपक्षीयां वार्तां कुर्यात्। कांग्रेस दलस्य नेतृत्वे केरलम शासनस्य शपथग्रहणम् अद्य स्यात्। कांग्रेस दलस्य नेता वीडी सतीशन अद्य तिरुवनन्तपुरम इत्यत्र शपथवचनं स्वीकुर्यात्। कांग्रेस दलेन सतीशन इत्यसौ केरल प्रदेशस्य अग्रिम मुख्यमंत्री रूपेण समुद्घोषितः। कांग्रेस दलस्य नेतृत्वयुतेन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक ग्रन्थियुतेन तत्र शासन विरचनं स्यात्। केन्द्रीयः गृह सहकारिता मन्त्री अमितशाहः गुजरात प्रदेशस्य गांधीनगरे सप्तशतं कोटिमितानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। स्वीय द्विदिवसीय यात्रावधौ गतदिने गांधीनगर नगर निगमस्य शतं कोटिमितानां विकास कार्याणां शुभारम्भमपि श्रीशाहः विहितवान्। एतत्पूर्वं प्रथमे दिने श्रीशाहः सूचना केन्द्रस्य उद्घाटनं च कृतवान्। श्रीशाहः एआई तथा डीपटेक इत्येतौ भविष्यस्य अर्थव्यवस्थायाः मुख्य स्तम्भौ इति वर्णितवान्।
2: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: अन्ते च क्रीडा वार्तासु आईपीएल इत्येतस्यां क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः मध्ये द्वन्द्वं स्यात् इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार निवेश प्रौद्योगिकी नवाचार हरित बदलाव अंतरिक्ष उभरती प्रौद्योगिकियों रक्षा सुरक्षा एसएमई

0: अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी उल्लेख किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोतेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें और मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर जेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए उन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे जलपोत गुजरने की अनुमति दी गई थी, जो ईरान के विरूद्व ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब यह नीति बदल जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा का, जिसमें आज आपको जानकारी मिलेगी बवासीर कारण और बचाव के बारे में। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुरेश राव और उनसे बातें कर रहे हैं संजीव कुमार लाल।
2: मित्रों नमस्कार। मित्रों, आजकल की बिगड़ती और बदलती जीवन शैली में बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर के अंदर चली जाती है और आप इस बीमारी को इग्नोर करने लग जाते हैं, और जब आप बीमारी को इग्नोर करने लग जाते हैं तो बीमारी अपना विकराल रूप धारण करने लग जाता है, फिर आप घोर परेशानी में घिर जाते हैं। एक ऐसा ही बीमारी है बवासीर, जो हमारे खान पान के कारण हो जाता है, हमारे बिगड़ती जीवन शैली के कारण हो जाता है और भी बहुत सारे इसके कारण हैं। तो बवासीर होने का कारण क्या है, पहचान कैसे करें कि इस हम बीमारी से ग्रसित हो गए हैं, और इसका उपचार और अपने जीवन शैली में किन किन चीज़ों का

0: ध्यान रखें ताकि ये बीमारी हम तक नहीं आए। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित हैं आयुष चिकित्सक डॉक्टर सुरेश राव। राव साहब स्वागत है। डॉक्टर साहब, बवासीर होने का प्रमुख कारण क्या मानते हैं आप?
1: सबसे पहला कारण तो है कि कब्ज, जो आजकल हर एक भारतीयों में 60-70% इस चीज़ को लेकर परेशान है, क्योंकि आजकल का हमारे लाइफ स्टाइल या हमारे जीवन शैली जो हो गई है, ज़्यादातर हमारा फिजिकली वर्क वैसा नहीं रहता है, ज़्यादातर बैठ के काम करना शिटिंग वर्क है, ज़्यादातर हम लोग है ना मेंटली है ना प्रेशर पड़ता है, यही सारी चीज़ों के कारण हमारे, और नाइट वॉचिंग ज़्यादा है, मोबाइल में ज़्यादा देर हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं, ये सारी चीज़ों के कारण क्या है, हमारे जीवन शैली बहुत सारे बिगड़ चुके हैं, उसके कारण हमारे कब्जियत हमेशा बनी रहती है। ज़्यादातर है ना आजकल जंक फूड, फास्ट फूड और मसालेदार ज़्यादा यूज होने के कारण ये बीमारी ज़्यादा ही बढ़ रहा है। इस चीज़ को लेकर
0: ज़्यादा समय तक बैठकर काम करना, लैपटॉप के सहारे काम करना, और काम करते ही जाना और उसके बीच में हम ब्रेक नहीं दे पाते
1: नहीं लेते हैं,
0: और मोबाइल में लगे रहना, और खान पान तो हमारा आजकल बिगड़ गया है, सही समय पर ना खाना ना पीना ना सोने ना जागने का समय हमारा निर्धारित है। डॉक्टर साहब, इस बीमारी का पहचान क्या है?
1: इसको 3 भाग में हमारे मेडिकल टर्म में डिवाइड किया गया है। पहला है पाइल्स, फिशर, फिस्टुला। जनरली जो फिशर होता है वो क्या होता है कि मलद्वार के बीच में या मलद्वार के रास्ते में, उस मांसपेशियों के बीच के रास्ते में वहाँ पर एक कट लग जाना या वहाँ पर दरारें बन जाना, जिसके कारण मरीज को बहुत ज़्यादा जलन, दर्द और ब्लड आना, कभी कभी लैट्रिन के साथ चिपका हुआ, ये सारी समस्या होती है जिसको फिशर बोला जाता है। पेशेंट इतना ज़्यादा इसको है ना प्रॉब्लम होता है कि उसको टच भी नहीं कर सकता है, कभी कभी उसके साथ है ना बैठना, उसके साथ अपने जीवन को है ना बढ़ाना बहुत सारा मुश्किल हो जाती है। और के बाद एक बवासीर आती है। बवासीर के क्या लक्षण होते हैं कि आप जब टॉयलेट में जाते हैं प्रेशर देते हैं, उसके कारण क्या होता है कि उस मांसपेशियों में, मलद्वार के मांसपेशियों में एक सूजन जैसा कन्वर्ट हो जाता है या आ जाता है, उसके कारण क्या होता है, मस्से जो होते हैं जिसको हम लोग छूने से या हाथ से टच होने से महसूस होता है कि वहाँ उभार जैसा हो गया है, इसको हम लोग बवासीर में बोलते हैं। तीसरा चीज़ क्या हो गया है कि आपका फिस्टुला, फिस्टुला में जनरली क्या होता है, संक्रमण के कारण एनस के पास कोई फोड़ा या फुंसी टाइप का हो जाता है, जिससे मवा जाना, पानी आना, बहुत ज़्यादा पेन होना, ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो इसको हम लोग फिस्टुला में गिनती करते हैं। जनरली जो फिशर की प्रॉब्लम्स होती हैं ये आजकल भारत में 60-70% हर आदमी को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है, क्योंकि कब्जियत इसकी मेन है। दूसरी चीज़ क्या है कि खान पान, अच्छा खान पान हम लोग को नहीं मिल रहा है, ज़्यादा पानी का सेवन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण व्यायाम नहीं है, योगा नहीं है, ये सारी चीज़ों के कारण क्या होता है, पेशेंट अपने लाइफ स्टाइल को इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर चुका है, जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग को कब्जियत मेन आ जाती है। इसी के कारण पेशेंट क्या होता है, फिशर की प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होती है। और ये क्या होता है कि कभी कभी अगर स्टार्टिंग रहा वन वीक की रही या 2-4 दिन की रही, तो ये आप घर के उपचार से या थोड़े से खान पान के चेंजेस से आप इसको ठीक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़े, लेकिन जब ये क्रॉनिक हो जाता है, 6-8 वीक हो जाते हैं, तब ये क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाता है, उस समय आपको एक अच्छे चिकित्सक से मिलना जरूरी होता है और सही उपचार करना जरूरी है। बहुत सारे है ना पेशेंट इस चीज़ को ना नहीं बताने का मेन रीज़न क्या होता है कि शर्म के कारण, शर्मिंदा के कारण, ये ऐसी जगह पर होने के कारण पेशेंट इसको इग्नोर करते चला जाता है, और उससे क्या होता है कि बीमारियां बढ़ते चली जाती हैं। इस बीमारियों को जब आप नज़रअंदाज करते हैं, आगे जाके इस बीमारी से कैंसर होने की भी चांसेज रहती हैं। इसीलिए आप समझिए कि फिशर क्या है, पाइल्स क्या है और फिस्टुला क्या है, ये तीनों चीज़ों को जब समझेंगे उस हिसाब से आप अपना सही और सही सटीक तरीके से अपना खान पान हो या आप है ना अच्छे डॉक्टर से मिल सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया बवासीर जिसे हम पाइल्स कहते हैं या फिस्टुला या फिजर, तीन अलग अलग चीज़ें हैं,
1: तीन अलग,
0: लेकिन प्रायः सभी लोग इसको मिलाकर बवासीर समझ लेते हैं, और बवासीर का इलाज वो अपने हिसाब से या किसी से पूछकर वो शुरू कर देते हैं, तो मर्ज तो वहीं के वहीं रह गया।
1: राइट सर।
0: और बीमारी बढ़ती चली जाती है। तो कैसे इन सब चीज़ों का निदान किया जाता है?
1: देखिए, ज़्यादातर है ना, इस बीमारी का हम लोग ज़्यादातर अपने खान पान और अपने है ना जीवन शैली को चेंज करके ही कर सकते हैं इसको। अगर आप अपने खान पान को लेकर मॉर्निंग में वॉकिंग करें, ज़्यादा मात्रा में पानी पिए, सही समय पर आप खान पान करें, ज़्यादा आप फाइबरस फूड लें, हरी साग सब्जी लें, फल फ्रूट्स लें, मसालेदार नॉन वेज, मछली, अंडा, ये सारी चीज़ें अभी आप अवॉइड करें, तो उससे क्या होगा कि बहुत हद तक आपको पाइल्स होने के चांसेस ना के बराबर है। इसका एक और मेन रीज़न क्या है, जेनेटिक, मतलब कि आपकी वंशागलिक, मतलब अगर आपके ना फैमिली में किसी को पाइल्स है या फिशर है तो उससे भी आपको हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मेन रीज़न है। इससे आपको बचने का मेन सबसे अच्छा एक ही चीज़ है कि अपने जीवन शैली को चेंज करें, और कब्ज़ को, अगर आपको है ना कब्ज़ अगर दूर रहेगा, अगर आपकी कब्ज़ की बीमारी नहीं रहेगी, कब्ज़ का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, तो आपको पाइल्स होने के चांसेस ना के बराबर है। ये मेन रीज़न है सर।
0: लगातार बैठकर काम करना, ये कितना प्रभावित करता है बवासीर को?
1: बहुत ज़्यादा सर, बिकॉज है ना जब आप लगातार उस पर बैठते हैं तो जो मलद्वार के है ना मांसपेशियाँ होते हैं, जहाँ वहाँ पर वेन सप्लाई होते हैं, जहाँ पर आपके वहाँ पर ब्लड का सप्लाई होता है, जब आप ज़्यादा देर उस पर बैठते हैं तो उस पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपका ब्लड का सप्लाई वहाँ पर पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। अब उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना है कि बीच बीच में आप उसको ब्रेक ले सकते हैं। ज़्यादा देर बैठ के काम करने से क्या होता है कि उस मांसपेशियों में ना ब्लड का सर्कुलेशन उतने अच्छे से नहीं होने के कारण क्या होता है कि वहाँ पर फिर से आपको मस्से आना, या नहीं तो वहाँ पर एक दबाव पड़ के वहाँ पर मोशन सही से क्लियरेशन नहीं होती है, टॉयलेट आपको सही से पास आउट नहीं होता है।
0: आयुर्वेदिक में बहुत सारे इलाज घर पर ही किया जा सकता है, और घर के रसोई में भी बहुत सारे ऐसे मसाले हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप सेवन कर इलाज कर सकते हैं। तो इस बवासीर में कौन सी ऐसी विधि है या कौन सा ऐसा उपचार है जो आपके घर पर ही उपलब्ध है और उसके सेवन से इस बीमारी से आप अपना बचाव कर सकते हैं?
1: सबसे अच्छा है कि आप है ना स्टीम बाथ ले लीजिए। स्टीम बाथ का मतलब क्या होता है कि गर्म पानी, वार्म वाटर, वो हल्का सा वार्म वाटर हो, उसमें आपके नीम के पत्ते डाल दीजिए या फिटकरी डाल दीजिए, उसके बाद सोच के बाद आप वहाँ पर 10 से 15 मिनट उस पर बैठ जाइए। उससे क्या होगा कि जो मांसपेशियाँ का सिकुड़न हुआ है वो आपका कम हो जाएगा, पेन रिलीफ मिलेगी आपको। दूसरा चीज़ है कि आपके घर में बहुत सारे नारियल की तेल होती है, एलोवेरा होते हैं, उसका आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तीसरा सबसे अच्छा है कि आपके घर में कच्चा दूध हो, उस दूध में आप अगर नींबू डाल के पीते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदेमंद मिलता है। ज़्यादातर आप पाइल्स, फिशर, फिस्टुला का जो भी ट्रीटमेंट हो या इलाज घर में करना चाहते हैं, अगर टेम्प्रोरी है, मतलब स्टार्टिंग है, तो आप अपने घर में उसी हिसाब से कर सकते हैं इस सब चीज़ों को। और हरी साग सब्जी ज़्यादा खाएं, ज़्यादातर पानी ज़्यादा मात्रा में कीजिए, और सुबह में व्यायाम ज़रूरी है, एक्सरसाइज, योगा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इस बीमारी से बचने के लिए अपने पेट को साफ़ रखें। पेट को साफ़ रखने के लिए सबसे अच्छा एक उपाय है जो मैं खुद भी करता हूँ, मॉर्निंग में आप जैसे ही है ना बेड से उठते हैं, एक गुनगुना पानी, उसमें हल्की सी काला नमक थोड़ा सा डाल के आप सुबह में 1 से 2 ग्लास पीजिए, जिससे आपका पेट बिल्कुल साफ रहेगा। जितना हो सके जंक फूड और फास्ट फूड से अवॉइड कीजिए, पेट आपका साफ रहेगा तो बवासीर आपसे दूर रहेगी।
0: तो मित्रों, अपना ख्याल रखिएगा, खान पान नियमित कीजिएगा और अच्छा भोजन कीजिएगा, और बाहर की भोजन से परहेज कीजिएगा, तो आप सुख रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुरेश शाह आज आप इस कार्यक्रम में। और मित्रों, अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और आज का दिन आपके लिए खुशनुमा हो। धन्यवाद।
2: बवासीर कारण और बचाव, इस विषय पे अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सुरेश राव से संजीव कुमार लाल की बातचीत। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुबह सुरीली का। सुबह सुरेली कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत स्वागत है। मैं हूँ इस कार्यक्रम में आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सुनीता। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और सुबह की शुरुआत हो चुकी है, बहुत लोग अभी व्यस्त होंगे, ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे होंगे। कुछ लोगों की शायद सुबह अभी हो रही होगी, बेड पर ही आँखें खुल रही होंगी, और कुछ लोग रेडियो ऑन करके अपने घर के सारे काम भी कर रहे होंगे। तो चलिए, सारे कामों के बीच आप अपना काम करते रहिए और हम आपको सुनवाते हैं कुछ बेहद ही खूबसूरत से प्यारे प्यारे गीत। और पहला गीत हमने लिया है फिल्म जागते रहो से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने। तो मैंने सोचा कि आज कार्यक्रम में मैं भी आपको इस खूबसूरत से गीत के साथ क्यों ना जगा दूँ।

फिल्म लव इन टोक्यो का ये खूबसूरत सा गीत। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म उसने कहा से। उसने कहा था इस फिल्म का गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर और तलत महमूद के युगल स्वरों में।

शैलेंद्र की शब्द रचना, सलील चौधरी का संगीत, लता मंगेशकर मन्नाडे की खूबसूरत सी आवाज़ और फिल्म का नाम मधुमति। मधुमति का ये गीत अभी आप सुनेंगे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में।

सुबह सुरीली कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म नौकरी से। इस गीत को गाया है किशोर कुमार और उषा मंगेशकर ने। गीत के बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने और धुन बनाई है सलील चौधरी ने।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। वक्त है कार्यक्रम खुला आकाश का। आज इसमें आप सुनेंगे वार्ता अप दीपो भव। वार्ताकार हैं पंकज मित्र।
1: बौद्ध दर्शन का एक सूत्र वाक्य है अप दीपो भव, अर्थात अपना प्रकाश स्वयं बनो। गौतम बुद्ध के कहने का मतलब यह है कि किसी दूसरे से उम्मीद लगाने की बजाय अपना प्रकाश, अपनी प्रेरणा खुद बनो। खुद तो प्रकाशित हो ही, लेकिन दूसरों के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ की तरह जगमगाते रहो। गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से उसके ये पूछने पर कि जब सत्य का मार्ग दिखाने के लिए आप या कोई आप जैसा पृथ्वी पर नहीं होगा, तब हम कैसे अपने जीवन को दिशा दे सकेंगे, तो बुद्ध ने जवाब दिया था अप दीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। कोई भी किसी के पथ के लिए सदैव मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता। केवल आत्मज्ञान और अंतरात्मा के प्रकाश से ही हम सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ सकते। बुद्ध ने कहा था, तुम मुझे अपनी बैसाखी मत बनाना। तुम अगर चल नहीं सकते और मेरी बैसाखी के सहारे कितनी दूर चलोगे, मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। आज मैं साथ हूं, कल मैं साथ

नहीं रहूंगा, फिर तुम्हें अपने ही पैरों पर चलना है। मेरी साथ की रोशनी से मत चलना, क्योंकि थोड़ी देर को संग साथ हो गया है अंधेरे जंगल में। तुम मेरी रोशनी में थोड़ी देर रोशन हो लोगे, फिर हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। मेरी रोशनी मेरे साथ होगी, तुम्हारा अंधेरा तुम्हारे साथ होगा। अपनी रोशनी पैदा करो, अप दीपो भव। अप दीपो भव, जिसने देखा उसने जाना, जिसने जाना वो पा गया, जिसने पाया वो बदल गया। अगर नहीं बदला तो समझो कि उसके जानने में ही कोई खोट था। बुद्ध ने जाना तो बुद्ध पहुंचेंगे, तुम नहीं। तुम बुद्ध की पूजा करने से नहीं पहुंचोगे, नहीं किसी अन्य की पूजा करने से या शिष्य बनने से। तुम खुद जानोगे तभी तुम पहुंचोगे। भारतवर्ष में बुद्ध का विरोध क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि उन्होंने पौराणिक और ब्राह्मणवादी मान्यताओं को खारिज कर दिया। यदि संसार में किसी ने सबसे पहले यह सवाल उठाया कि मनुष्यों में ऊंच नीच जातियां क्यों हैं, तो यह काम बुद्ध ने किया था। बुद्ध ने आगे कहा था कि वह ईश्वर के होने या न होने के प्रश्न को गैर जरूरी मानते हैं और ईश्वर पर निर्भर न रहकर अपने मार्ग और अपना भला खुद ही करने के लिए तत्पर हैं। बुद्ध के अनुसार धर्म का अर्थ ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नर्क, परलोक नहीं होता। बुद्ध ने वैज्ञानिक तरीके से ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नर्क, परलोक के अस्तित्व को नकार दिया। संसार भर में इतिहास में बुद्ध एकमात्र ऐसे धर्म प्रचारक हैं जो व्यक्ति को तर्क और विज्ञान के विपरीत किसी भी बात में विश्वास करने से रोकते हैं। बुद्ध कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हो उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। किसी बात को केवल इसलिए स्वीकार मत करो कि मैंने इसे करने को कहा है। प्रत्येक बात अपनी तर्क बुद्धि से परखो, अन्यथा तुम तर्क शक्ति वाले मनुष्य नहीं हो। बुद्ध के जैसे स्वतंत्रता किसी भी अन्य धर्मगुरु ने नहीं दी। बुद्ध ने स्वयं को मार्गदर्शक कहा है और कभी भी विशेष दर्जा नहीं लिया। धर्म में नैतिकता पर ज्यादा जोर दिया गया है। अन्य धर्मों में जो स्थान ईश्वर का है, वही स्थान बौद्ध धर्म में नैतिकता का है। कूटदंत सूत्र में बुद्ध ने शासकों को शिक्षा दी कि नवयुवकों के लिए रोजगार के साधन ढूंढे जाएं, उनको रोजगार के लायक शिक्षा दी जाए, छोटे व्यापारियों को आसान दरों पर पूंजी दी जाए, किसानों के लिए अच्छी और उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक और सिंचाई के साधनों की व्यवस्था की जाए, उनकी उपज का सही मूल्य दिया जाए। इस तरह अगर गरीबी और बेरोजगारी दूर कर दी जाए तो कोई हिंसा नहीं करेगा, चोरी बेईमानी नहीं करेगा, कानून व्यवस्था अच्छी होगी, सबको समुचित विकास का अवसर मिलेगा तो देश भी समृद्ध होगा। हम सोचें कि उस जमाने में कोई आदमी चोरी और बेईमानी रोकने के लिए रोजगार देने की सलाह दे रहा था और पाप पुण्य या लोक परलोक जैसी बातें नहीं कर रहा था। बुद्ध ने धर्म और अध्यात्म को आत्मा परमात्मा के रहस्य से निकालकर उसे इस दुनियावी जीवन से जोड़ा। देवी देवताओं और कर्मकांड की जगह सामाजिक जीवन के मूल्यों का महत्व समझाया। सम्राट अशोक ने बुद्ध की इन्हीं शिक्षाओं को अपने शासनकाल में लागू किया और भारत सोने की चिड़िया बन गया। उनके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। भारतीय समाज को यदि फिर उस ऊंचाई पर पहुंचना है तो एक बार फिर से बुद्ध की शिक्षाओं को जीवन में उतारने की जरूरत है। भगवान बुद्ध की सबसे महत्वपूर्ण देन यह है कि उन्होंने विश्व को दिखाया कि वे स्वयं भी अन्य लोगों की तरह एक गृहस्थ थे। वे कहीं से अवतरित नहीं हुए थे। उनका जन्म, विवाह और गृहस्थ जीवन सामान्य और प्राकृतिक था। उन्होंने सिखाया कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति भी अपनी साधना, त्याग और दृढ़ निश्चय से उस ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इसके लिए किसी वरदान या किसी दैवी शक्ति की आवश्यकता नहीं है। शील सदाचार के जीवन का उपदेश देते हुए 45 वर्षों तक बुद्ध गांवों, कस्बों में जाकर लोगों को आनंदमय जीवन जीने की कला सिखाते रहे। उन्होंने हर वर्ग और उम्र के लोगों को सदाचार का जीवन जीना सिखाया, जिससे समरस समाज की स्थापना हो और सब लोग परस्पर प्रेम और सौहार्द का जीवन जिए। बुद्ध ने कहा, दो अतियों से बचना चाहिए। पहली है काम भोगों में लिप्त रहने की इच्छा, जो कमजोर बनाने वाली है,
और दूसरी है खुद को पीड़ा देने की प्रवृत्ति जो दुखद और बेकार

0: तार है। उन्होंने कहा, हमारा मन व शरीर हमेशा बाहरी घटनाओं से प्रतिक्रिया करते हैं। अवचेतन मन लगातार राग द्वेष जगाता रहता है और वैसे ही संस्कार भी बनाता रहता है। ये संस्कार तीन प्रकार के बनते हैं। पहले प्रकार के संस्कार पानी पर खींची हुई लकीर के समान होते हैं, ये बनते ही मिट जाते हैं। दूसरे प्रकार के संस्कार बालू पर खींची हुई लकीर की तरह होते हैं, जो अंतर मन की गहराई तक तो नहीं जाते, लेकिन जिन्हें मिटने में थोड़ा समय लगता है। तीसरे किस्म के संस्कार पत्थर पर खींची हुई लकीर के समान होते हैं, जो अंतर मन की गहराइयों तक जाकर बस जाते हैं और जिन्हें समाप्त होने में बहुत लंबा समय लगता है। अज्ञान के कारण हम इनके प्रति अनजाने में ही लगाव पैदा कर लेते हैं और मन उन्हीं में गोते लगाता रहता है। बुद्ध ने कहा, सारे दुख हमारी इस 3.5 हाथ की काया और चित्त में हो रहे हैं। सब परिवर्तनशील हैं, कुछ भी स्थायी नहीं है। जीवन की अनित्यता दुख का कारण है। दुख सिर्फ बीमारी, बुढ़ापा या मृत्यु से ही नहीं है, बल्कि दिन प्रतिदिन की विफलताओं, कुंठाओं और अभाव से उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और 8 अष्टांगिक मार्ग बताए, जिन पर चलकर कोई भी इंसान बुद्धत्व प्राप्त कर सकता है। बुद्धत्व का मार्ग सबके लिए खुला है। हर इंसान के भीतर बुद्धत्व का अंकुर मौजूद है। बुद्ध ने अपना गुरु स्वयं बनकर अपना मार्ग खोजा, इसीलिए बुद्ध का यह कथन कि अप दीपो भव हर काल में प्रासंगिक है।
1: अप दीपो भव, अभी आप ये वार्ता सुन रहे थे पंकज मित्र से, कार्यक्रम खुला आकाश में। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं

श्रोताओं, आइए आपको जानकारी दे दें कि आज हमारे केंद्र से बाकी के और कौन कौन से कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। शाम 4:35 पर आप सुनेंगे सांझ सरगम कार्यक्रम। 5 बजे युवाओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युवावाणी। चर्चा होगी वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे और इंटरनेशनल म्यूजियम डे। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे, साथ ही रोचक तथ्यों की जानकारी आपको इस कार्यक्रम में मिलेगी। करंट अफेयर्स पर भी चर्चा होगी और आज इस कार्यक्रम में कंपेयर्स होंगे आद्य शक्ति और प्रज्ञा। कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की। श्रमिक साथियों का कार्यक्रम श्रमिक लोक का वक्त होता है 5:30 पर। आज चर्चा का विषय है संस्कृति की संवाहक, आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष। जानकारी और सावधानी HIV रोकथाम की कुंजी। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे पे ये चर्चा आप सुनेंगे। साथ ही संग्रहालय संस्कृति और सभ्यता के संरक्षक। शहरों में रोजगार और कौशल विकास का आधार पर भी बातचीत होगी। कार्यक्रम की कंपेयर होंगे जया श्रीवास्तव और योगेश्वर राम। कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी प्रशांत गौरव की। खेती बाड़ी आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा बकरी पालन से लाभ। साथ ही प्रश्नोत्तरी में आप जान पाएंगे गर्मियों में दुधारू पशुओं का प्रबंधन। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर भरत महतो, उनसे बातें करेंगे संजीव कुमार लाल। कृषि गीत आप सुनेंगे और कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है संजीव कुमार लाल। हमारी दुनिया कार्यक्रम का वक्त होता है शाम 6:30 पर। आज इसमें चर्चा होगी समय का महत्व। साथ ही पंच परगनिया वार्ता आप सुनेंगे, पंच परगनिया भाषा के संस्कार गीत। वार्ताकार होंगी डॉक्टर अंबिका स्वासी। कार्यक्रम की प्रस्तुति है संजीव कुमार लाल की। जिले में आजकल का वक्त होता है 7:11 पर। 7:15 पर आदिवासी अखड़ा, आज यह कार्यक्रम उराव भाषा में आप सुनेंगे। इसमें चर्चा है रसोई गैस बचाने के उपाय, मिशन इंद्रधनुष। और कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है प्रदीप कुमार।

प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद का वक्त होता है 7:45 पर। 8 बजे अब सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। 8:30 पर सुर्खियों में दिल्ली से आप समाचार सुनेंगे, समाचार संध्या, न्यूज एट 9, उर्दू समाचार और पब्लिक स्पीक का वक्त होगा 9:30 पर। सुनहरी यादें, यह कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे 10 बजे। शास्त्रीय संगीत का वक्त होता है रात 10:30 पर और इस कार्यक्रम में कलाकार हैं वी जी चोग, तबले पर साथ देंगे श्यामल बोस।

ग्यारह बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 11:10 पर मीडियम वेव पे हमारी सभा समाप्त होगी और एफएम पर हमारी सभा जारी रहेगी।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में

0: असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
1: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक के लिए संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रांगर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्र पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
2: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की।
6: कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के

0: सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए यूडीएफ कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
2: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।
3: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्नपत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए यह मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरू ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने एचडी देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और एआई में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। होर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमरीका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जंचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। एनडीए सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृहमंत्री का ये बयान हिंदुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृहमंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और एनडीए की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर नव भारत टाइम्स संपादकीय में लिखा है, ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी, शिक्षा और जागरूकता पर बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक खर्च किया गया, यही कारण है कि आज दक्षिण के राज्य आगे खड़े दिखते हैं। पत्र लिखता है, आबादी को बढ़ाने की नाकाम कोशिशों के बजाय मौजूदा कार्य बल के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देने होंगे।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. India and Sweden decide to elevate their bilateral ties to strategic partnership. Prime Minister Modi invites Swedish companies to enhance their presence in India under Make in India, National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission initiatives. Congress leader V.D. Satishan to be sworn in as Chief Minister of Keralam today. Southwest monsoon likely to hit Keralam coast on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Rajasthan Royals by 5 wickets in Delhi. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi held talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg last night. Prime Minister Modi was awarded Sweden's highest honor, the Royal Order of the Polar Star, Degree Commander Grand Cross, in recognition of his exceptional contributions to bilateral ties and his visionary leadership. The award is the highest distinction that can be given to a head of government. This is Prime Minister Modi's 31st international honor. During the delegation-level talks, the two leaders reviewed the full spectrum of India-Sweden relations and agreed to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership, marking a major milestone in the relationship. The two leaders also agreed to identify new opportunities in the spirit of the India-EU strategic partnership and recently concluded India-EU FTA for the benefit of their people. We have more details on this from our correspondent in Sweden covering the Prime Minister's visit.
6: Central to the visit was the adoption of a joint action plan, which aims to double bilateral economic exchange within 5 years. Under the theme India-Sweden Stronger Together toward 2047, both nations committed to holding a bilateral trade and investment summit in India in 2027. In the realms of technology and climate action, the visit secured significant agreements to co-create solutions 21st century. Both nations launched a joint innovation partnership 2.0 and agreed to establish a virtual India-Sweden Joint Sciences and Technology Center, focusing on AI, 6G, quantum computing and life sciences. Furthermore, Sweden-India Technology and AI Corridor will be strengthened to connect the two nations' startup ecosystem. On the climate front, the leaders announced the third phase of the leadership group for industrial transition, significantly expanding cooperation in green steel and low-carbon industrial transformation. Defense and security cooperation have transitioned from a traditional buyer-seller model to a long-term industrial partnership, with Swedish companies actively investing in India's defense production corridors. Prime Minister specifically thanked Sweden for its support following the Pahalgam terror attack, reaffirming a joint commitment to global stability. Finally, the visit celebrated a shared intellectual legacy and broader regional cooperation. To commemorate the centenary of Gurudev Rabindranath Tagore's historic visit to Sweden, both countries initiated the Tagore Sweden Lecture Series and exchanged unique gifts, including replicas of Tagore's handwritten epigrams found in Swedish archives. The presence of European Commission's President Ursula von der Leyen highlighted the visit's importance to the India-Euro partnership, with a renewed push for the India-Euro free trade agreement, described as the mother of all deals, to unlock new opportunities for innovators and investors alike.
7: We succeeded indeed in concluding our landmark trade agreement. We call it the mother of all deals. And just look at some of the figures. A shared market of over 2 billion people, that is close to one quarter of global GDP. Over 90% of tariff cuts. Enormous opportunity to grow trade and investment. From here in Gothenburg, Scandinavia's largest trading port, to Mundra port in your home state in Gujarat.
6: Sakshi Singh, Akashwani News, Gothenburg, Sweden.
5: Prime Minister Modi has invited Swedish companies to enhance their presence in India under initiatives such as Make in India, National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission. During an interaction with select Swedish CEOs in Gothenburg, Mr. Modi made a strong pitch to Swedish companies to enhance their presence in India in manufacturing, green hydrogen mission, clean energy and other sectors. The discussions also focused on strengthening cooperation in resilient supply chains, green transition, sustainable mobility, life sciences and digital technologies. Highlighting India's rapid economic transformation, Mr. Modi mentioned about strong domestic demand, digital public infrastructure, manufacturing expansion and next-generation infrastructure development in India.
8: Vodafone, Ericsson, Nokia, ओरांज जैसी कंपनियों का भारत में विशाल अनुभव है. भारत 5G से 6G ट्रांजिशन, AI एनेबल्ड नेटवर्क्स, सिक्योर कनेक्टिविटी और डिजिटल इंक्लूजन में बड़ा पार्टनर बन सकता है.
5: The Ministry of External Affairs has said that business leaders and CEOs who met Prime Minister Narendra Modi in Sweden expressed strong interest in India and appreciated the country's transformation driven by sustained economic reforms over the past several years. Addressing reporters after the European Roundtable Industry Meeting, MEA Secretary of West, Sibi George, said that CEOs and senior industry leaders highlighted the significant changes they have witnessed in India in recent years.
9: which was attended by a large number of key companies in Europe. I would like to highlight that in his meetings today with the CEOs and other senior leaders from the business, they all highlighted about their interest. You know, they have been observing India for last few years. They have been investing in India for last few years. What they have seen is a complete transformation in India in the last few years. They emphasized that.
5: In the fourth leg of his visit, the Prime Minister

0: 9289094044 or post your questions on X using the hashtag AskAIR. On to sports. In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Rajasthan Royals by 5 wickets at Arun Jaitley Stadium, Delhi last night, chasing a target of 194 runs set by Rajasthan Royals. Delhi Capitals scored 197 for 5 in 19.2 overs. KL Rahul was the top scorer with 56 runs. For Delhi Capitals, Mitchell Stark took 4 wickets, which was later judged player of the match. And now for a look at today's newspapers, it's over to Neera Arakel.
1: Thank you, Shagun. Sweden confers its highest honour on PM Narendra Modi. The Royal Order of the Polar Star Degree Commander Grand Cross is Prime Minister Modi's 31st international award, is a top headline in the Pioneer, while the Asian Age headlines trade to chips. India inks 14 Netherlands pacts, lifts ties, Modi jettin, hold talks, adopt strategic partnership roadmap. The statesman mentions metro to run extra train trips to encourage use of public transport. This capacity expansion aims to ensure uninterrupted service and efficient passenger management. UAE nuclear plant attacked by drone, testing Iran proves, writes the Hindustan Times. While the Times of India states drone attack sparks fire at UAE nuclear plant. In an editorial titled Diversification Gains, the Hindu commends India's export performance in April 2026, underscoring the attempts by the government and industry to diversify in terms of crisis. And finally, the Indian Express writes HPV vaccination sees uptake, 1,100 girls receiving the shot. The figure reflects a slow but steadily accelerating start to one of the country's most important public health drives in recent years in preventing cervical cancer. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Neera. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. India and Sweden decide to elevate their bilateral ties to strategic partnership. Prime Minister Modi invites Swedish companies to enhance their presence in India under Make in India National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission initiatives. Congress leader V.D. Satheeshan to be sworn in as Chief Minister of Keralam today. Southwest monsoon likely to hit Keralam coast on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Rajasthan Royals by 5 wickets in Delhi. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashvani Ranchi se prastut hai Pradeshik Samachar. नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। जेटेड क्षेत्रीय भाषाओं में मगही, भोजपुरी और अंगिका को शामिल करने पर होगा विचार। मंत्रियों की कमेटी की पहली बैठक आज। रेलवे ने गोमती नगर से खुदरा रोड तक समर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की। गोमो, गया, वाराणसी, जौनपुर और गोरखपुर होकर गुजरेगी रेल। दुमका में अंतर्राज्यीय ट्रैक्टर चोर गिरोह का खुलासा, 3 अपराधी गिरफ्तार। निशानदेही पर पश्चिम बंगाल से चोरी के वाहन बरामद, पुलिस कर रही नेटवर्क की जांच। राज्य के कई हिस्सों में आज गर्जन के साथ बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान। कल से अगले 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। और ताशकंद में रग्बी सेवन्स में भारतीय पुरुष टीम ने रजत पदक जीता, महिला टीम चौथे स्थान पर रही। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एआई और डीप टेक को भविष्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ बताया है। कल अहमदाबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
3: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
2: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के 319 इंटर

0: और प्रशिक्षित सहायक आचार्य को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस कदम से राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था और भी मजबूत होगी। समारोह में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर और श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव भी उपस्थित रहेंगे। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को शामिल करने के लिए बनी सरकार की समिति की आज पहली बैठक होगी। इस समिति में 5 मंत्रियों को शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट भवन में दिन के 11:30 बजे से बैठक होगी। समिति में मंत्री दीपिका पांडे, राधा कृष्ण किशोर, संजय यादव, योगेंद्र प्रसाद और सुदिव्य कुमार सोनू शामिल हैं। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से रांची में आज जनजातीय किशोरियों के स्वास्थ्य पोषण एवं सशक्तिकरण के लिए सशक्त परियोजना का शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने राजधानी में पेट्रोल और डीजल की किल्लत की खबरों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि तेल कंपनियों के पास पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और घरों में अनावश्यक रूप से तेल जमा नहीं करने की अपील की है।
1: हम लोगों की समीक्षा में पाए गए कि जो पहले से जितना सप्लाई थी वो सप्लाई अभी भी उपलब्ध है, और लेकिन किसी कारणवश जो एक पैनिक की अवस्था में बहुत सारे लोग जो है जितना रिक्वायरमेंट है उससे अधिक गुना में जो भर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है सप्लाई में जो समस्या आ रही है, तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने उनको बताए हैं कि पैनिक में किसी तरह का लोग न आए।
0: विश्व पर्यावरण दिवस 2026 अभियान के तीसरे दिन धनबाद मंडल ने कल विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर प्लास्टिक मुक्त यात्रा के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया। इसके तहत यात्रियों को दोबारा उपयोग योग्य बोतलों के इस्तेमाल, प्लास्टिक प्रदूषण रोकने और रेल परिसर में कचरा न फेंकने की अपील की गई। साथ ही पोस्टर, उद्घोषणा और सीधे संवाद के जरिए पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की सुविधा के लिए गोमती नगर से खुदरा रोड तक समर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है, जो गोमो, गया, वाराणसी, जौनपुर और गोरखपुर होकर गुजरेगी। गोमती नगर से यह ट्रेन 28 मई से 18 जून तक हर गुरुवार और खुदरा रोड से 30 मई से 20 जून तक हर शनिवार चलेगी, जिसमें धनबाद के यात्रियों के लिए गोमो और बोकारो के लिए भोजुड़ी में ठहराव रहेगा। हजारीबाग जिले के कोरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से ब्राउन शुगर, 3 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल और 1 कार बरामद की है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित आनंद ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों में 1 का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है।
2: जांच के क्रम में एवं जब इनको छानबीन किया गया, इनकी तलाशी ली गई, तो कुल मिलाकर हमें 3 स्मार्टफोन, 20 ग्राम ब्राउन शुगर, 1 अपाचे गाड़ी और 1 क्रेटा कार पकड़ाया गया। अनुमानित मूल्य इसका लगभग 10 से 15 लाख तक होता है, मतलब होलसेल में जब इनको, लेकिन जब ये लोग इसको तोड़ तोड़ के बेचते हैं या जो खुदरा क्रम में बेचते हैं, तो इनका रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है।
0: दुमका जिले में पुलिस ने सक्रिय अंतरराज्यीय ट्रैक्टर चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। तीनों की निशानदेही पर मुफस्सिल और शिकारी पाड़ा थाना क्षेत्र से चोरी हुए 2 ट्रैक्टरों को पश्चिम बंगाल से बरामद किया गया है। पुलिस गिरोह के अन्य संभावित नेटवर्क की जांच कर रही है। राज्य के कई हिस्सों में आज गर्जन के साथ बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
3: आने वाले दिनों में भी आपको कुछ कुछ जगह पर थंडरस्टॉर्म के साथ में बारिश, तेज हवा, आंधी देखने को मिलेगी। 3 दिन के लिए जो विंड स्पीड है उसमें 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गस्टिंग 260। 18 में थोड़ा सा हवा की गति बढ़ सकती है जिसमें कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से विंड स्पीड गस्टिंग 270 भी कुछ जगह पर जा सकती है गर्जन वज्रपात के साथ में।
0: कल जिले हजा का चांद नहीं दिखने के कारण देश भर में 28 मई को बकरीद मनाई जाएगी, यह घोषणा इमारत ए सरिया ने की। ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित पहले CASA रग्बी सेवंस 2026 में भारत की सीनियर पुरुष टीम ने रजत पदक हासिल किया, जबकि सीनियर महिला टीम चौथे स्थान पर रही। पुरुष टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार 4 मैच जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। पुरुष टीम में झारखंड के डेविड मुंडा भी शामिल है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने मुख्यमंत्री को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा लिखे पत्र की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा दैनिक जागरण ने लिखा है, स्वीडन और नीदरलैंड्स के साथ रिश्तों को रणनीति साझेदारी में बदलेगा भारत। प्रभात खबर की सुर्खी है, JTET भाषा विवाद सुलझाने के लिए आज बैठक करेंगे 5 मंत्री। दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश में राजधानी एक्सप्रेस के AC कोच में आग, 15 मिनट में 68 यात्रियों को बचाया। हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर लिखा है, जलापूर्ति व्यवस्था पर मुख्य सचिव सख्त, सभी जिलों को त्वरित कार्रवाई के लिए कहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। JTET क्षेत्रीय भाषाओं में मगही, भोजपुरी और अंगिका को शामिल करने पर होगा विचार, मंत्रियों की कमेटी की पहली बैठक आज। रेलवे ने गोमती नगर से खुर्दा रोड तक समर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की। गोमो, गया, वाराणसी, जौनपुर और गोरखपुर होकर गुजरेगी रेल। दुमका में अंतर्राज्यीय ट्रैक्टर चोर गिरोह का खुलासा, 3 अपराधी गिरफ्तार। निशानदेही पर पश्चिम बंगाल से चोरी के वाहन बरामद, पुलिस कर रही नेटवर्क की जांच। राज्य के कई हिस्सों में आज गर्जन के साथ बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान, कल से अगले 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। और ताशकंद में रग्बी सेवंस में भारतीय पुरुष टीम ने रजत पदक जीता, महिला टीम चौथे स्थान पर रही। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉड पर एक मेल भेजा, रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डालें, और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था, मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है। अपने आप को आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई ना कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। इस प्रसारण में मैं हूँ आपके साथ सुनीता।

0: आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम लोक रंग का। आज इसमें आप सुनेंगे नागपुरी भाषा में लोकगीत। कलाकार हैं दीनबंधु ठाकुर और साथी। ये कार्यक्रम हम सुनेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन

दीनबंधु ठाकुर और साथियों के गाए इस नागपुरी लोकगीत के साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग अब यहीं संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:32 हो चुके हैं और आपको इंतज़ार होगा आपके पसंदीदा कार्यक्रम रसरंजन का। रसरंजन में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूँ इस कार्यक्रम में सुनीता। आप सभी को मेरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म बदलापुर के इस गीत के साथ, जिसे गाया है दिव्या कुमार ने। गीत के बोल लिखे हैं दिनेश विजयन ने और प्रिया सराया ने। धुन बनाई है सचिन जीकर ने।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: अगला गीत हमने लिया है फिल्म भूल भुलैया से। इस गीत को लिखा है सईद कादरी ने और इस गीत को गाया है के ने।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। अगला गीत फिल्म बंटी और बबली से। इस गीत को गाए हैं सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर ने। गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने, धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने।

गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार उत्तम सिंह, उदित नारायण, लता मंगेशकर की खूबसूरत सी आवाजें, फिल्म दिल तो पागल है।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म गैंगस्टर अ लव स्टोरी से। इस गीत को गाया है अभिजीत और सुनिधि चौहान ने, गीत के बोल लिखे हैं नीलेश मिश्रा ने और धुन बनाई है प्रीतम ने।

अभिजीत और सुनिधि चौहान के गाए इस खूबसूरत से गीत के साथ ही आज का रसरंजन समाप्त करने की सुनीता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। हमारे आज के कलाकार हैं चिर सुंदर ठाकुर, जिनसे हम सुनेंगे सितार पर राग ललित में आलाप और जोड़ के बाद दो गते, दोनों ही गते तीन ताल में निबद्ध हैं। तबले पर साथ दे रहे हैं संदीप चटर्जी। ये कार्यक्रम हम सुनेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

चीर सुंदर ठाकुर से भी आप सुन रहे थे सितार पर राग ललित में आलाप और जोड़ के बाद दो गते, दोनों ही गते तीन ताल में निबद्ध थी। तबले पर साथ दे रहे थे संदीप चटर्जी। इसी के साथ आज का शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम आओ साथ चलेगा, जिसमें आज चर्चा होगी जनगणना, राष्ट्र निर्माण और विकास की आधारशिला। साथ ही आप सुनेंगे भेंटवार्ता, जनगणना 2027 के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। भेंटवार्ताकार हैं श्री राम नारायण सिंह, एडिशनल कलेक्टर रांची। उनसे बातें कर रही हैं सिंधु मिश्रा। कार्यक्रम की प्रस्तुति है नूतन प्रसाद की।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम आओ साथ चले के साथ एक बार फिर मुखातिब हूँ। स्वीकार करें सिंधु मिश्रा का नमस्कार। श्रोता मित्रों, आज कार्यक्रम में हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे राष्ट्र निर्माण और विकास की। श्रोताओं, कार्यक्रम आओ साथ चले के साथ एक बार फिर मुखातिब हूँ। स्वीकार करें सिंधु मिश्रा का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम आओ साथ चले के साथ एक बार फिर मुखातिब हूँ। स्वीकार करें श्रोताओं, कार्यक्रम आओ साथ चले के साथ एक बार फिर मुखातिब हूँ। स्वीकार करें सिंधु मिश्रा का नमस्कार। श्रोता मित्रों, आज कार्यक्रम में हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे राष्ट्र निर्माण और विकास की आधारशिला जनगणना के संबंध में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनगणना 2027 के लिए प्रथम चरण आरंभ हो चुका है और अभी डिजिटल माध्यम से इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। श्रोताओं, किसी भी देश के समग्र विकास के लिए वहां की जनसंख्या से संबंधित सही और विस्तृत जानकारी होना बेहद जरूरी होता है। जनसंख्या की संख्या, शिक्षा, रोजगार, आयु, सामाजिक स्थिति, निवास, भाषा और आर्थिक स्थिति जैसी जानकारियां किसी राष्ट्र के विकास योजनाओं का आधार बनती हैं।

श्रोताओं, इन्हीं जानकारियों को व्यवस्थित रूप से प्राप्त करने की प्रक्रिया को जनगणना कहा जाता है। यह किसी देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित आंकड़ों का सरकारी स्तर पर किया जाने वाला व्यापक सर्वेक्षण होता है। भारत में जनगणना का कार्य केंद्र सरकार द्वारा नियमित अंतराल पर कराया जाता है। यह केवल लोगों की गिनती भर नहीं, बल्कि देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का विस्तृत अध्ययन भी है। श्रोताओं, किसी भी कार्य का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। जनगणना का भी एक प्रमुख उद्देश्य है, और वो है देश की जनसंख्या और उससे संबंधित विभिन्न जानकारियों का सही आकलन करना। इसके माध्यम से सरकार को यह पता चलता है कि देश में कितने लोग रहते हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या क्या हैं और किस क्षेत्र में किस प्रकार की योजनाओं की आवश्यकता है। क्रमबद्ध तरीके से अगर हम जानें, तो जनसंख्या की सही जानकारी प्राप्त करना देश की कुल जनसंख्या, पुरुष एवं महिला अनुपात, बच्चों और बुजुर्गों की संख्या जनगणना से हमें प्राप्त होती है। सरकार जनगणना के आंकड़ों के आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और रोजगार जैसी योजनाएं तैयार करती हैं। फिर आर्थिक और सामाजिक स्थिति का अध्ययन जनगणना से लोगों की शिक्षा, रोजगार, आय और सामाजिक स्थिति की जानकारी मिलती है, जिससे समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाती हैं। किस क्षेत्र में कितनी आबादी है, उसके अनुसार वहां स्कूल, अस्पताल, सड़क और अन्य सुविधाओं का विकास किया जाता है। देश की बढ़ती जनसंख्या और बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार भविष्य की नीतियां और योजनाएं बनाती हैं। श्रोताओं, एक बात बेहद महत्वपूर्ण है, और वो है कि जनगणना क्यों कराई जाती है। इस बारे में हमें जानना बेहद जरूरी है। जनगणना इसलिए कराई जाती है ताकि सरकार को देश की वास्तविक स्थिति की स्पष्ट जानकारी मिल सके। यदि सरकार के पास सही आंकड़े नहीं होंगे, तो विकास योजनाएं जरूर प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाएंगी। जनगणना से यह पता चलता है कि किन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आधारभूत सुविधाओं की कमी है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, गरीब, बेरोजगार, ग्रामीण और पिछड़े वर्गों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जनगणना के आंकड़े उपयोगी होते हैं। श्रोताओं, किस क्षेत्र में कितने युवा हैं और उनकी शिक्षा की स्थिति क्या है, इसके आधार पर रोजगार और शिक्षा से संबंधित योजनाएं बनाई जाती हैं। फिर जनगणना से ही हमें पता चलता है कि शहरों और गांवों में जनसंख्या का वितरण कैसा है। इससे आवास, परिवहन और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था बेहतर होती है। इसके अलावा देश की आर्थिक और सामाजिक नीतियों के निर्माण में जनगणना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। श्रोताओं, जनगणना किसी भी देश के विकास की मजबूत नींव मानी जाती है। इसके बिना योजनाबद्ध विकास संभव नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में जहां बच्चों की संख्या अधिक होती है, वहां नए स्कूल और कॉलेज खोले जाते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में जनसंख्या के अनुसार अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र और चिकित्सा सुविधाएं विकसित की जाती हैं। रोजगार सृजन में जनगणना के आंकड़ों से बेरोजगारी की स्थिति का पता चलता है, जिससे रोजगार के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई जाती हैं। इसके अलावा ग्रामीण विकास में गांवों में सड़क, बिजली, पानी और कृषि से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी बनाने में जनगणना सहायक होती है। महिला और बाल विकास की बात अगर हम करें, तो महिलाओं और बच्चों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए विशेष योजनाएं इसके माध्यम से तैयार की जाती हैं। डिजिटल और आधुनिक भारत के निर्माण में आज डिजिटल तकनीक के माध्यम से जनगणना को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है, जिससे योजनाओं का लाभ तेजी से लोगों तक पहुंच सके। इससे आमजन को सीधा लाभ पहुंचता है। लोगों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। गरीब और जरूरतमंद लोगों

0: सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचता है, रोजगार और स्वरोजगार की योजनाएं बढ़ती हैं, गांव और शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास होता है, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाती हैं। जहां यह आम जन को सीधा लाभ देती है, वहीं सरकार को भी इससे कुछ लाभ होते हैं। जनगणना सरकार के लिए नीति निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है। सरकार को देश की वास्तविक जनसंख्या का पता चलता है, योजनाओं के लिए बजट, संसाधनों का सही वितरण तभी संभव हो पाता है। विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करने में सहायता मिलती है और इसके अलावा आर्थिक और सामाजिक नीतियां प्रभावी ढंग से बनाई जाती हैं ताकि राष्ट्रीय विकास की दिशा तय करने में मदद मिल सके। श्रोताओं, हम कह सकते हैं कि जनगणना केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं बल्कि देश के भविष्य की योजना तैयार करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह राष्ट्र निर्माण, विकास और जन कल्याण की मजबूत आधारशिला है। सही और सटीक जनगणना से सरकार जनता की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझ पाती है और उसी के अनुसार योजनाएं बनाती हैं। श्रोता मित्रों, आज आवश्यकता है कि प्रत्येक नागरिक जनगणना के महत्व को समझे और सही जानकारी देकर इस राष्ट्रीय कार्य में अपना योगदान दे। जनगणना जितनी सटीक होगी, देश का विकास उतना ही मजबूत और योजनाबद्ध होगा। श्रोताओं, जनगणना 2027 से संबंधित कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको आज कार्यक्रम में करवाने जा रहे हैं। हमारे साथ आज कार्यक्रम में हैं श्री राम नारायण सिंह, एडिशनल कलेक्टर रांची। तो लेते हैं इनसे जनगणना 2027 के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। श्रोताओं, आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं एडिशनल कलेक्टर रांची सर का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूं कार्यक्रम में। नमस्कार सर।
1: हाँ नमस्ते, और सभी आपके श्रोताओं को भी नमस्कार।
0: सर, आज मुख्य रूप से कार्यक्रम में हम आपसे बातें करना चाहेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे जनगणना के संबंध में। जो जनगणना 2027 के लिए आरंभ की गई है और अभी तो ये प्रथम चरण की शुरुआत इसमें हुई है, तो जनगणना का क्या प्रमुख उद्देश्य है ये हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे।
1: जनगणना का उद्देश्य सरकार के स्तर से जो हमारे देश के सभी आंकड़े हैं, डाटा है, उसको इकट्ठा करना होता है और उस डाटा का उपयोग विकास के कार्यों में किया जाता है। यही जनगणना का मूल उद्देश्य होता है, जो सामाजिक आर्थिक स्थिति को अंदाजा करते हुए और प्रत्येक 10 वर्षों में हमारा कितना विकास हुआ उसका अंदाजा करते हुए फिर आगे की रणनीति तैयार करने के लिए आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं।
0: इन आंकड़ों को आपने बताया सर कि विभिन्न योजनाओं के विकास के लिए इसको किया जाता है, तो आंकड़े जो एकत्रित किए जाते हैं तो विकास के क्या मायने हैं? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इन क्षेत्रों में भी इन आंकड़ों का उपयोग होता है?
1: विकास के सभी क्षेत्रों में इन आंकड़ों का उपयोग होता है और ये सरकार के स्तर से ही इसका उपयोग होता है, किसी निजी स्तर से इसका उपयोग नहीं होता है, सभी क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है।
0: इसमें अब बारी आती है सर ये जानने की कि जनगणना हमारे भारत वर्ष में, जैसा कि आपने कहा कि 10 वर्षों में ये कराया जाता है, तो हमारे झारखंड राज्य में अभी इसकी शुरुआत मैं देख रही हूँ कि हो चुकी है, प्रथम चरण की शुरुआत है, तो इसमें किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है?
1: यह हमारी 16वीं जनगणना है और स्वतंत्रता के पश्चात 8वीं जनगणना है। यह पूर्ण रूप से डिजिटल जनगणना है। इसका सभी लोगों का के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसमें डिजिटल प्रचार है और पंपलेट के माध्यम से एवं अन्य जो ग्राम सभा के माध्यम से सभी जगहों से इनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि जनगणना में लोग स्वयं भाग लें। इसमें इस बार महत्वपूर्ण ये है कि मैंने स्वगणना करना है, तो ये अभी जो चल रहा है 16 तक का चल रहा है, अब जो सेल्फ कर सकते हैं सभी व्यक्ति, और फिर 16 तारीख से उसका जो प्रगणक जो है जो जो सेल्फ करेंगे उसके फिर प्रगणक जाके उसका जांच करेंगे
0: जी। तो ये डिजिटल जनगणना के बारे में थोड़ी सी और जानकारी मैं आपसे चाहूँगी सर।
1: डिजिटल जनगणना ये एक भारत सरकार का पोर्टल है sesensus.gov.in। इस पे आप जाएंगे और इसके बाद आपका एक मोबाइल से आपका OTP के माध्यम से लॉगिन होगा और उसके बाद उसमें प्रश्नोत्तरी आता है कि विभिन्न 33 तरह के प्रश्न हैं जिसका कि प्रश्नोत्तरी आता है और आप उन प्रश्नों को भरेंगे और वो फिर उसको इंटर कर देने से वो जनगणना हो जाता है, मतलब कि अभी मकान गणना जो हमारा चल रहा है अग्रह गणना वो हो जाता है।
0: ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कई विवादित मामले लोगों के बीच में रहते हैं, जैसे घर को लेकर, परिवार को लेकर, और ऐसे में परिवार के कुछ सदस्यों का पलायन भी अन्यत्र हो जाता है। तो ऐसे में स्वगणना अगर लोग कर रहे हैं डिजिटल माध्यम से तो क्या प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि कोर्ट में भी बहुत सारे विवादित मामले चल रहे हैं, तो वैसी स्थिति में लोग क्या करें?
1: जनगणना से विवाद का कोई रिलेशन नहीं है। जनगणना तो जिसे आप एक व्यक्ति का अभी जो मान ले 2 मकान है 3 मकान है तो वो अपना डाल सकते हैं, किसी का कोई 1 मकान है कोई 2 मकान है कोई, तो वो सभी चीज़ उसमें डाला जाएगा और उस परिवार के हेड का नाम डाला जाएगा, यही जनगणना है। विवाद का किसी प्रकार का इसमें कोई कनेक्शन नहीं।
0: यानी कोई भी व्यक्ति घर बैठे डिजिटल माध्यम से 15 मई तक ये इस कार्यक्रम में भाग ले सकता है, अपना योगदान दे सकता है, स्वगणना कर सकता है जी। और डिजिटल माध्यम से तो आपने बताया सर कि 15 मई तक इसका समय निश्चित किया गया है, और ऐसे लोग कैसे और कब तक कर पाएंगे?
1: उसके बाद फिर 16 मई से 14 जून तक प्रत्येक मकान पे, प्रत्येक गृह पे प्रगणक जाएंगे और उसकी गणना करेंगे। जो जो 33 तरह के प्रश्न हैं डिजिटल मोड में ही, वो जो प्रगणक हैं वो डिजिटल मोड में ही कार्य करेंगे, कंप्लीट काम डिजिटल मोड में ही होगा।
0: सबसे पहले अब मैं ये जानना चाहूँगी सर कि इन जनगणना का हमारी सरकार को क्या लाभ पहुँचेगा, हमारी सरकार कैसे इससे लाभान्वित होगी?
1: ये जनगणना एक प्रक्रिया है जो लगातार चलते आ रही है और सरकार के द्वारा ही इसको कराया जाता है, और सरकार जो ये जो डाटा इकट्ठा होता है विभिन्न प्रकार के जो डाटा 10 वर्षों के बाद जो डाटा मिलता है उस डाटा का इस्तेमाल सरकार अपने जो नागरिक है उसके उन्नति के लिए और जो हमारे देश के प्रगति के लिए उसका इस्तेमाल सरकार करती है।
0: सरकार के बाद अब मैं जानना चाहूँगी आम जन को इससे क्या फ़ायदा पहुँचेगा और क्या लाभ उनको मिलेगा?
1: आम जन को बहुत फ़ायदा होता है, जो जो हमारी नीतियाँ, जो हमारी सरकार की नीति, जो हमारे सरकार का जो फोकस होता है वो इन्हीं तथ्यों के आधार पर तय किया जाता है कि हमारा कौन क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, कौन क्षेत्र हमारा, कौन समाज आगे है, कौन, ये इन्हीं आधार पर सरकार का फोकस तय होता है। तो उससे उस क्षेत्र के विकास में सहायता मिलती है। लोगों को चाहिए कि बढ़ चढ़ के इस जनगणना में भाग लें और उसको पूरा करें।
0: सर, इस जनगणना के आंकड़ों से हमारे शहरी और ग्रामीण जीवन जो विकास से काफ़ी प्रभावित होता है, तो इन्हें क्या लाभ पहुंच सकता है?
1: शहरी और ग्रामीण जीवन में भी इन आंकड़ों का उपयोग होता है। जब हम जो शहर के विकास को देखते हैं तो उसमें भी ये जो कलेक्ट डाटा कलेक्ट होता है उससे इसका फ़ायदा होता है।
0: सर, इस जनगणना में मीडिया भी अहम भूमिका निभा रही है, तो आप अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे कि मीडिया के बंधु इसमें कैसे अपना सहयोग दें?
1: मीडिया के बंधु इसमें अपना सहयोग देते भी हैं और हम लोग समय समय पर उनको बुला के जो जो जनता को सूचित करना है उनके माध्यम से सूचित करते हैं। मीडिया के बंधु लगातार इस पर अपना जो चूँकि स्वगणना का मामला है तो स्वगणना करते हैं, या अन्य भी जो लोगों तक सूचना

0: देते हैं, जिससे कि हमारे जो प्रगणक जाते हैं तो उनको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, लोग उनको एक सरकारी सेवक के तरह व्यवहार करें। तो ये सारे सूचना मीडिया के माध्यम से ही जाती है, और मैं अनुरोध करता हूँ कि इसको और विस्तार से मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया जाए, जिससे कि इसका सभी लोग इसमें अपना भागीदारी निभा सकें।
1: एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ उठता है सर, कि जब जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लोग स्वगणना भी कर रहे हैं, और बाद में आपने कहा कि अधिकारी गण भी घर घर जाकर इसकी गणना करेंगे, तो अगर मान लीजिए किसी से अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती है, इसमें कहीं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन चला जाता है, तो क्या इसकी भूल सुधार की भी कोई प्रक्रिया है?
0: जब आप स्वगणना करते हैं तो उसमें किसी प्रकार का अगर भूल हो जाता है तो वो रिपीट करने, उसको चेंज करने का है, लेकिन आप एक बार इंटर कर देते हैं तो पुनः वो नहीं हो सकता है, पुनः वापस नहीं हो सकता है।
1: क्या कुछ अधिकारियों को कुछ कागज वगैरह भी जमा करना है, या फिर ऐसे ही वो सहज रूप से ये गणना हो जाएगी?
0: इसमें किसी प्रकार का कोई कागज जमा नहीं करना है, सभी डाटा डिजिटल मोड में ही जाएंगे, वो जो बताएंगे वो उतना ही वो सही होगा। इसलिए अनुरोध रहता है सभी लोगों से कि इसमें सही बात को ही बताया जाए
1: जी। और अंत में जो श्रोता अभी कार्यक्रम के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, उन्हें आप संदेश के रूप में क्या कहना चाहेंगे सर?
0: आपके सभी श्रोताओं से आग्रह है कि इस जनगणना में भाग लें, जो स्वगणना करें और रांची जिला को अग्रणी बनाएं।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त हमारे कार्यक्रम के लिए निकाला और श्रोताओं को इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी मतगणना से संबंधित दिया, धन्यवाद सर।
0: धन्यवाद आपको भी।
1: श्रोताओं अभी हम कार्यक्रम आओ साथ चलें के तहत जानकारी ले रहे थे जनगणना 2027 के संबंध में, और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ थे श्री राम नारायण सिंह, एडिशनल कलेक्टर रांची। सर के द्वारा जितनी भी बातें बताई गई ये बेहद महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो इन बातों को आप ध्यान में रखते हुए थोड़ी जागरूकता, थोड़ी सहभागिता इसमें निभाएं और सहयोग करें। श्रोताओं इस बातचीत के बाद अब सुनवाती हूँ एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अंत में आप सबसे बस यही कहूंगी कि जनगणना केवल लोगों की गिनती भर नहीं है, बल्कि यह देश की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण दर्पण है। इसी के आधार पर सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी और जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं को बेहतर ढंग से तैयार करती है। वर्ष 2027 की जनगणना आधुनिक तकनीकी, डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शिता के साथ देश के विकास को नई दिशा देने का माध्यम बनेगी। ऐसे में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी और सही जानकारी बेहद जरूरी है। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम जनगणना 2027 विकसित भारत की मजबूत आधारशिला में आपने जाना कि जनगणना केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि देश के भविष्य की योजना तैयार करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। सही जानकारी देकर हम न केवल अपने अधिकारों और सुविधाओं को मजबूत बनाते हैं, बल्कि देश के विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी

0: निभाते हैं। इसी आशा के साथ कि आप सभी जनगणना 2027 में सक्रिय सहयोग देंगे, कार्यक्रम की सहयोगी सिंधु मिश्रा को अब दें अनुमति। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ साथ चले, जिसमें आपने सुना चर्चा जनगणना राष्ट्र निर्माण और विकास की आधारशिला। साथ ही भेंटवार्ता आपने सुनी जनगणना 2027 के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। भेंटवार्ताकार थे श्री राम नारायण सिंह, एडिशनल कलेक्टर रांची। उनसे बातें कर रही थी सिंधु मिश्रा। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी सिंधु मिश्रा के। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कार्यक्रम जोहार रांची में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ अमृता,
1: और मैं हूँ सुनीता। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार,
0: जोहार। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे।
1: बिल्कुल अमृता, श्रोता हमारे बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे ही रहेंगे, और अच्छे इसलिए भी लगते हैं कि हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। तो जीवन की जो सफलता का श्रेय, हर किसी का अपना स्वभाव होता है, है कि नहीं?
1: बिल्कुल,
0: लेकिन
1: बिल्कुल।
0: अपनों के लिए जो अपयश या बुराई, हंसते हंसते सह लेना, ये गुण सभी में नहीं होते।
1: हाँ बिल्कुल, तुम्हारी बात बिल्कुल ही सही है, बहुत ही सही बात कही है तुमने। देखो, सफलता का सहरा सब लोग अपने सिर पे बांध लेते हैं, लेकिन जो बुराई है ना, उसको लेने का साहस बहुत कम लोगों में होता है।
0: जी,
1: और खासकर जब आप किसी और के लिए अच्छा करते हो और उसका अच्छा बुरा सब अपने सर पे ले लेते हो, तो ये गुण हर किसी में नहीं होता। हर
0: हाँ
1: आदमी की अपनी पहचान, अपना पर्सनालिटी, अपना व्यक्तित्व होता है।
0: जी, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए अपनी खुशी, यहाँ तक कि अपनी छवि भी दांव पे लगा देते हैं।
1: हाँ, और आज के इस दौर में ऐसे लोगों का मिलना बहुत ही मुश्किल
0: हाँ,
1: है।
0: विरले ही ऐसे लोग
1: हाँ,
0: मिलते
1: लेकिन
0: हैं।
1: अगर जो हैं, तो समझ लो कि आज ये दुनिया उनकी वजह से ही चल रही है।
0: जी
1: किसी के
0: बिल्कुल,
1: चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर उसके उसे खुश होने का मौका देना, ये हर किसी की बात नहीं होती।
0: हाँ
1: ये बहुत समझदार और सुलझे हुए जो लोग हैं, जिनको पता है कि किसी के चेहरे पे अगर हम मुस्कान लेकर आते हैं, तो वो अंदर से कितना अच्छा फील करेगा, उसे कितना अच्छा लगेगा।
0: हाँ बिल्कुल। और प्रायः ऐसे लोगों के हिस्से में हमेशा आलोचना आती है, फिर भी वे रुकते नहीं, क्योंकि उनके पास बुराई लेने का साहस होता है।
1: हाँ देखिए, बुराई हर किसी की होती है। बुराई तो पीठ पीछे कई लोगों की भी की जाती
0: जी
1: है, लेकिन बुराइयों से लड़कर जो जीतता है ना, वही सच्चा इंसान और साहसी इंसान कहलाता है।
0: जी और ऐसे व्यक्तित्व हमें अपने घर परिवार में ही मिल जाते हैं। वो आप पिता या पति, जो परिवार के ताने सुनकर भी सबकी जरूरतों को के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं, है कि नहीं? वे भी, उनका योगदान भी कम नहीं है।
1: हाँ बिल्कुल, परिवार में अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपको सही गलत की पहचान करा रहा है, उसके बाद भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, फिर भी वो इंसान लगातार मेहनत कर रहा है, आपकी बुराइयों को अपना समझकर उसे सुधारने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे विरले इंसान परिवार में होते हैं।
0: जी
1: हर परिवार में एक इंसान आपको ऐसा मिलेगा ना,
0: बिल्कुल
1: जो
0: बिल्कुल,
1: आगे आकर सब चीज़ों को
0: हाँ
1: समेटने का साहस रखता
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल सही कहा। और मतलब उन्हें एहसास होता है कि घर की सारी जिम्मेदारियां जो हैं हमारे कंधों पे हैं। और प्राय ऐसा देखने के लिए मिला जाता है, जो घर के बड़े होते हैं उन्हें इस चीज़ का एहसास जो है बहुत ही जल्दी हो जाता है।
1: हाँ, और घर कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि जो बात घर के बड़े नहीं समझ पाते ना, घर के छोटे भी समझ जाते
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: कई जगहों पर आपने देखा होगा कि घर के जो छोटे होते हैं ना, वो जल्दी ही अपने उम्र से बड़े हो जाते हैं, वो सारी चीज़ों को समझने लगते हैं और बहुत चीज़ों में आगे बढ़ चढ़कर परिवार का साथ देते हैं। तो मतलब बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, जो

0: पर मिलजुल कर हम सभी हल करें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन अगर कोई कुछ नहीं करता और एक इंसान आगे बढ़कर उसे समेटने का साहस करता है तो उसका आत्मबल मनोबल हमें जरूर बढ़ाना चाहिए।
1: जी बिल्कुल। तो बातों के साथ अपने श्रोताओं को सुनाते हैं प्यारा सा
0: हाँ,
1: गीत।
0: बिल्कुल बहुत बातें हो गई हैं और श्रोताओं को इंतजार होगा कि एक खूबसूरत सा गीत वो इस कार्यक्रम में सुने।
1: जी बिल्कुल।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
4: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
3: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
5: कार्यक्रम जोहार रांची में आप सभी का पुनः स्वागत है।
6: और अमृता, अभी तुम आ रही थी तो देखा होगा तुमने, धूप बहुत तेज है। दो दिनों से गर्मी बढ़ गई है, लेकिन अभी जो अनुमान आया है, फोरकास्ट आया है, उसके अनुसार ना अभी मौसम बदलने वाला है।
5: ना बिल्कुल, लेकिन रांची का मौसम जो है वो कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये पहले जैसा हो गया है।
6: ऐसा नहीं है, पहले जैसा नहीं है। पहले बहुत मौसम स्मूथ रहता था, जिस तरह से अभी आपने देखा होगा ना कि आंधियां चलती हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं, बिजली गिरती है, मतलब अजीब सी बारिश हो रही है। पहले जब मौसम बदलता था उस समय बहुत कोई ऐसी डर वाली बात नहीं होती थी। अभी तो आपने ध्यान दिया होगा ना कि जैसे ही बादल काले आते हैं, बिजली इतनी तेज कड़कती है और कितनी जगह गिरती है, कितने लोगों की जानें चली जाती हैं। तो ये मौसम पहले जैसा नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज का असर है।
5: बिल्कुल, और पहले तो ऐसा नहीं था कि बारिश होती थी नॉर्मल तरीके से, लेकिन अभी तो ऐसा है कि आंधियां इतनी तेज चलती हैं कि लोगों के घर की छत तक उड़ जाते हैं,
6: लोग उड़ जाते हैं।
5: एकदम सही कहा आपने, कहीं बिजली के खंभे उड़ जाते हैं। और ये ऐसा नहीं कि एक बार हो रहा है, ये प्राय देखा जा रहा है कि आजकल मतलब प्राय रोज ही ऐसा हो रहा है।
6: और मौसम विभाग की माने ना तो उन्होंने मई के अंतिम सप्ताह तक ऐसा ही मौसम का अनुमान लगाया है, और 23 मई तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज हवा चलेगी, बारिश होगी, गर्जन के साथ वज्रपात भी हो सकता है। और आने वाले जो दो दिन है ना, अभी सुबह मैं समाचार सुन रही थी तो उसमें दो दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है।
5: तो हम अपने श्रोताओं से यही कहना चाहेंगे कि इस मौसम में आप सतर्क रहें। अगर मौसम बदलता है और आप घर से बाहर रहते हैं तो आप किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं।
6: बिल्कुल, और कभी भी मौसम के साथ खिलवाड़ ना करें। बिजली गरज रही है तो जो भी पैमाना सेट किया गया है उससे आप बच कर रहें, उसका पालन करें। पेड़ के नीचे ना रहें, किसी ऐसी जगह पर ना रहें जहाँ बिजली गिरने का खतरा अधिक होता है। कोशिश करें सेफ और सुरक्षित रहें और खुश रहें।
5: जी बिल्कुल।

0: और अमृता, मौसम की बात कर ली और लोग अपने श्रोताओं से और भी बहुत सारी बातें कर ली,
1: जी
0: थोड़ी सी जानकारी देने का वक्त आ गया है। और जानकारी में आज के दिन की बात कर लेते हैं, क्योंकि हर दिन अपने मतलब अपने इतिहास में कुछ चीज़ों को समेटे
1: खास होता
0: रखा
1: है।
0: है।
1: बिल्कुल, देश दुनिया के इतिहास में जो है 18 मई की तारीख बहुत सारी वजह से दर्ज है। वैसे इस दुनिया में हर तारीख को कुछ न कुछ अच्छा या बुरा होते रहता है ना? इसमें से कुछ घटनाएं वक्त के साथ भुला दी जाती हैं और कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास में अपना नाम दर्ज कराती हैं। तो
0: और इतिहास में दर्ज इसलिए भी कराती हैं कि कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें होती
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: अच्छी चीज़ों से सीख लेकर हम उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और बुरी चीज़ों को भूलने की कोशिश करना चाहिए और उससे भी सीख लेना
1: बिल्कुल
0: चाहिए
1: उससे भी
0: कि
1: सीख लेते हैं।
0: भविष्य में
1: हाँ
0: कोई वैसी दोबारा घटना ना हो।
1: जी
0: तो चलो जानकारी देते हैं, आज के दिन क्या क्या हुआ
1: हाँ,
0: था।
1: तो 1974 में 18 मई की तारीख एक ऐसी अहम घटना के साथ इतिहास में दर्ज है जिसने भारत को दुनिया के परमाणु संपन्न देशों के कतार में खड़ा कर दिया। भारत ने राजस्थान के पोखरण में अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। और साथ ही हम ये भी बता दें कि 1912 में पहली भारतीय फीचर लेंथ फिल्म श्री पुंडलिक रिलीज हुई थी।
0: और जानकारी दें कि राजस्थान में पंजीकृत निजी क्षेत्र में भारत के पुराने बैंकों में से एक बैंक ऑफ राजस्थान का आईसीआईसीआई में बैंक में विलय होना तय हो गया था। साथ ही 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1995 में संयुक्त राष्ट्र सहिष्णुता वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया था।
1: और आपको बता दें श्रोताओं कि 1991 में चॉकलेट कंपनी में केमिस्ट के तौर पर काम करने वाली 27 वर्षीय हेलेन ने ब्रिटेन की पहली अंतरिक्ष यात्री के तौर पर सोवियत सोयुज यान से उड़ान भरी। उन्हें एक पहेली का जवाब देने पर यह मौका दिया।
0: और बात कर लेते हैं 2008 की, तो पार्श्व गायक नितिन मुकेश को मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया था।
1: जी, और 2009 में श्रीलंका सरकार ने 25 साल से तमिल विद्रोहियों के साथ हो रही जंग के खत्म होने का ऐलान किया। सेना ने देश के उत्तरी हिस्से पर कब्जा किया और लिट्टे प्रमुख वेलुपिल्लई प्रभाकरण को मार गिराया।
0: और साथ ही बता दें कि 2008 में ही भारतीय मूल के लेखक इंदिरा सिन्हा को उनकी किताब एनिमल पीपल हेतु कॉमनवेल्थ सम्मान प्रदान किया गया था।
1: बिल्कुल, और 1994 में गाजा पट्टी क्षेत्र के अंतिम इजरायली सैनिक टुकड़ी हटाए जाने के साथ ही क्षेत्र पर फिलिस्तानी स्वायत्त शासी शासन पूरी तरह से लागू हुआ। और 2004 में इसराइल के राफा विस्थापित कैंप में इजरायली सैनिकों ने 19 फिलिस्तानियों को मौत के घाट उतारा था।
0: बात कर लेते हैं आज जिनका जन्मदिन है।
1: जी
0: भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान, उनका जन्म भी 1961 को हुआ था।
1: हाँ बिल्कुल, और 1934 में मुकुंद दास जो कि भारतीय बांग्ला भाषा के कवि, गीतकार, संगीतकार और देशभक्त थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था।
0: और 1682 में शाहू छत्रपति शिवाजी का पौत्र तथा शंभुजी और येसुबाई के पुत्र थे, उनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। साथ ही 1948 में थावरचंद गहलोत भारतीय राजनेता थे, उनका भी जन्म हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ सुधीर रंजन मजुमदार का जन्म भी आज ही के दिन 1939 में हुआ था।
1: जी, और आपको बता दें श्रोताओं कि आज ही के दिन 1951 में जगदीप धनखड़ जो कि भारतीय जनता पार्टी के जा राजनीतिज्ञ हैं, उनका जन्म हुआ था। और 1959 में फग्गन सिंह कुलस्ते जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंध राजनीतिज्ञ हैं, उनका भी जन्म हुआ था।
0: भारत के 12वें प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का जन्म भी आज ही के दिन 1933 में हुआ। और रामलिंगम चेटियार एक वकील, राजनीतिज्ञ और संविधान सभा के सदस्य थे, उनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ।
1: और
0: बात कर लेते हैं निधन की, जो आज
1: जी
0: से हमारे बीच चले गए, उनका भी हमारे जीवन में अमूल्य योगदान है।
1: जी तो 1934 में मुकुंद दास जो कि भारतीय बांग्ला भाषा के कवि, गीतकार, संगीतकार और देशभक्त थे, उनका जन्म आज ही के दिन हुआ था।
0: उनका निधन आज के दिन हुआ था
1: जी
0: अमृता।
1: जी
0: और आज ही के दिन पंचानन महेश्वरी भारत के सुप्रसिद्ध वनस्पति विज्ञानी थे, उनका निधन भी 1966 में हुआ था।
1: कृष्ण पट्टाभी जोइस जो कि प्रसिद्ध भारतीय योगाचार्य थे, उनका भी निधन आज ही के दिन सन 2009 में हुआ था।
0: भारत सरकार में पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री रहे अनिल माधव दवे का भी निधन आज ही के दिन 2017 में हुआ था।
1: और आज ही के दिन 2012 में जय गुरुदेव जो कि प्रसिद्ध धार्मिक गुरु हैं, उनका भी निधन आज ही के दिन हुआ था।
0: और
1: 2017 में रीमा लागू, जिनसे हमारे सभी श्रोता वाकिफ होंगे, उनका भी निधन आज ही के दिन हुआ था। तो क्यों ना उन पे फिल्माया गया ये प्यारा सा गीत सुने।
0: हाँ, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत चरित्र अभिनेत्री थी, अभिनेत्री के रूप में उन्हें जाना जाता था और बहुत सारी फिल्मों में हमने उन्हें देखा है माँ के किरदार में, जो कि बेहद पसंद किया गया है। तो चलो उनकी ही फिल्म का एक गीत सुन लेते हैं।

0: अमृता, हम बात कर रहे हैं आज के दिन की, इतिहास की जानकारी हमने दे दी है, और आज जो दिन है ना उसमें भी कुछ खास खास बातें हैं।
1: हाँ, बहुत सारे दिन हैं जो आज बहुत ही खास हैं। उनमें से एक है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, जो कि यह दिवस जो है दुनिया भर के संग्रहालयों के महत्व और संस्कृति के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है।
0: हाँ बिल्कुल, और 18 मई 2026 को वर्ल्ड म्यूजियम डे जो है, एक विभाजित विश्व को एकजुट करने वाले संग्रहालय विषय के तहत अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और भू राजनीतिक विभाजनों को पाटने, संवाद, समझ, समावेश और शांति को बढ़ावा देने में जो म्यूजियम होते हैं ना, उनकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए किसी भी जगह के बारे में, किसी खास चीज के बारे में, तो प्रायः हर शहर में, हर जिले में, हर, या इवन कि आजकल तो गाँव में भी छोटे छोटे म्यूजियम देखने को मिलते हैं। म्यूजियम से इतनी सारी जानकारियाँ मिल जाती है ना कि उस फिर आपको उसके बारे में, उस जगह के बारे में जानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका उद्देश्य ही है कि जो म्यूजियम है, संग्रहालय है, उनकी क्षमता को नित्य प्रतिदिन बढ़ाते रहें, ताकि हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती रहें और बहुत सारी जानकारियों को हम एक दूसरे के साथ साझा करते रहें।
1: बिल्कुल, इसीलिए कहा गया है कि किताब जो है वो ज्ञान का भंडार है।
0: और किताबों की बात तो है ही, किताब के लिए लाइब्रेरी होती है, म्यूजियम जो है ना वो सहेज कर रखे जाते हैं कुछ चिन्हों को, प्रतीक चिन्हों को, जो बहुत आपने देखा होगा, पुराने समय के सिक्के हो गए, या महाराजा राजाओं की तलवारें हो गई, ढाल हो गए, मतलब बहुत सारी चीजें,
1: इतिहास से जुड़ी हुई
0: दुर्लभ चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको म्यूजियम में देखने को मिलती हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे यहाँ की चीजें दूसरे के म्यूजियम में भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो म्यूजियम का मतलब ही है, संग्रहालय का मतलब ही है कि उसकी क्षमता को नित्य प्रतिदिन हम बढ़ाते रहें, जो भी नई चीजें या जो भी पुरानी चीजें हमें जानकारी में आती हैं, उसे सहेज कर संभाल कर रखने की जरूरत है, ताकि हमारी पौराणिक धरोहर बनी रहे।
1: तो और साथ ही हम अपने श्रोताओं को ये भी बताएं कि आज ही जो है विश्व चिकित्सीय बागवानी दिवस भी है। स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए बागवानी के चिकित्सीय लाभों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो हम सभी को पता है कि बागवानी एक ऐसा शौक है जो लोगों को मानसिक शांति भी देता है और आपको शारीरिक रूप से भी फिट बनाता है।
0: बिल्कुल, और बागवानी अगर आप करते हैं, देखो बहुत बृहद स्तर पर अगर आप नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास जो छोटी सी जगह ना, उसमें ही कीजिए। इंडोर प्लांट लगाइए, आउटडोर प्लांट लगाइए, या आसपास में अगर आपका, आपके पास जमीन है, घर है, तो उसके आसपास कोशिश करिए थोड़ी सी बागवानी करने की। क्योंकि आपने देखा होगा ना कि जो पेड़ पौधे हो ना, वो आपके तनाव को दूर करते हैं, आपके स्ट्रेस को कम करते हैं, उनके साथ बिताया गया पल आपको ऊर्जा से भर देता है।
1: और आपके घर के नीचे में अगर जगह नहीं है, तो आप छत पे भी कुछ गमले रखे,
0: आजकल बहुत सुविधाएं आ गई हैं। आप ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं, आप छोटे छोटे गमलों में लगा सकते हैं, आप पॉट में लगा सकते हैं। बागवानी करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास एकड़ में जमीन होनी चाहिए, जमीन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो छोटी छोटी जगह पे लगा,
1: फ्लैट में, बालकनी में भी एक अच्छा छोटा सा बागवानी का सेटअप तैयार कर देते हैं।
0: आजकल तो इंडोर प्लांट का इतना प्रचलन आ गया है कि प्रायः हर घर में आपको बहुत सारे पौधे देखने को मिलेंगे, जो कि देखने में भी अच्छे लगते हैं, मन को सुकून भी देते हैं। और फिलहाल अभी सुकून के लिए अपने श्रोताओं को गीत सुनवाते हैं, फिर आगे की बात करेंगे।

0: और अमृता, बात कर रहे हैं आज के दिन की, तो आज बेहद खास दिन है
1: जी,
0: जिसके बारे में जानना और जिसको मानना भी जरूरी है। आज है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, यानी HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस, जो हर साल 18 मई को मनाया जाता है।
1: हाँ बिल्कुल, इस दिन का मुख्य उद्देश्य HIV एड्स को रोक की रोकथाम के लिए एक सुरक्षित व प्रभावी वैक्सीन खोजने की आवश्यकता पर जोर देना है और वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य कर्मियों व स्वयं सेवकों के प्रयासों को सम्मानित करना भी है।
0: यह दिन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के 1997 के उस ऐतिहासिक भाषण से प्रेरित है जिसमें उन्होंने एक प्रभावी निवारक वैक्सीन के जरिए एड्स के खतरे को समाप्त करने का आह्वान किया था।
1: हाँ, पहला विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई 1998 को मनाया गया था। वर्तमान स्थिति, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी और अन्य बचाव उपायों ने HIV को नियंत्रित करने में बहुत मदद की है,
0: लेकिन आज भी इस महामारी को जड़ से खत्म करने के लिए एक वैक्सीन का विकास चिकित्सा जगत के लिए पहली बड़ी प्राथमिकता है। इसे कैसे किया जाए, किस तरह इसको लागू किया जाए और किस तरह ऐसी कारगर वैक्सीन बनाई जाए जिससे लोग इस महामारी से बच सके।

0: इस मौके पर जो है स्वास्थ्य संगठनों और समाज के स्तर पर कई वेबिनार, सेमिनार और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें निशुल्क जांच स्थानीय स्तर पर सरकारी ICTC केंद्रों में मुफ्त गोपनीय HIV को बढ़ावा दिया जाता है। होता क्या है ना कि लोग HIV से अगर पॉजिटिव हो भी जाते हैं ना, तो कई बार जागरूकता के अभाव में जानकारी नहीं, अपने जो मेडिकल परामर्श है वो लेते नहीं हैं, ना डॉक्टर के पास जाते हैं ना हॉस्पिटल में जाते हैं।
1: अभी भी लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ इस बीमारी को लेकर फैली हुई है और इसीलिए ये दिन मनाया जाता है और कोशिश ये की जा रही है कि कोई कारगर इलाज, कोई कारगर वैक्सीन इसमें और अच्छा डेवलप हो सके, जिससे लोग इस बीमारी से बच सके। फिलहाल तो हम अपने श्रोताओं से इतना ही कहना चाहेंगे कि आज बदलती दौर में सबको सब चीज़ पता है, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में हर चीज़ पूरी खुली किताब है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि एड्स से जो बचने के उपाय सुझाए गए हैं उसका पालन जरूर करिए और कोशिश करिए कि इस बीमारी से कोई ग्रसित ना हो।
0: जी हाँ, जागरूक रहिए, अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करिए।
1: बिल्कुल, कहा गया है ना, जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, फिर कोई भी बीमारी आपको छू नहीं पाएगी और आप हंसते खेलते खिलखिलाते अपना जीवन जी पाएंगे।

0: अमृता, इतनी सारी बातें कर ली हमने और बहुत सारी चर्चा भी चल ली, थोड़ा मुझे लगता है तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम कहीं जाने की तैयारी में हो।
1: हाँ बिल्कुल, मेरा मूड तो हो रहा है कि अब जल्दी से अपना सामान पैक करें और कहीं चले जाएं।
0: यानी
1: और
0: गर्मी की
1: ऐस
0: छुट्टी।
1: जी हाँ, गर्मी की छुट्टी, क्योंकि बच्चों की भी छुट्टियां हो रखी
0: हाँ
1: हैं,
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल,
1: फिर ये बहुत ही अच्छा मौका है मेरे लिए कि हम सारे परिवार मिलके कहीं अच्छी जगह पे चले
0: अच्छा
1: जाएं।
0: ये आपके लिए नहीं है, बाकी लोग हर घर में यही प्लान अभी चल रहा होगा कि कौन कहाँ जाएगा।
1: जी
0: किसी के पास समय बहुत नहीं है तो शॉर्ट टर्म के लिए भी, 2 दिन के लिए भी कहीं जाना चाहेंगे बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे की जब छुट्टियां होती है ना बच्चों की, तो बच्चे परेशान करते हैं कि
1: हाँ
0: कितना हम
1: बिल्कुल,
0: घर पे रहेंगे, हमें घुमाने ले चलो। और कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ आप कितनी बार भी जाओ ना आपका मन नहीं भरेगा।
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो
1: तो उन्हीं में से एक खास जगह है हिमालय की तलहटी में बसे ऋषिकेश का वातावरण और पर्यावरण अध्यात्म, योग और आराधना से की आभासी लबरेज। और यहीं पे स्थित है बीटल्स आश्रम, जिसे 84 कुटिया भी कहते हैं, और यहाँ के भित्ति चित्र और 84 ध्यान गुफाएं विशिष्ट हैं। दुनिया भर से स्वयं की खोज में लोग यहाँ आते हैं, जिनमें से कुछ तो यहीं के हो गए रह जाते हैं। वास्तव में ध्यान और योग की राजधानी है यह विशिष्ट जगह। इसे भारत की ही नहीं दुनिया की योग नगरी माना जाता है। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम माने जाने वाले मंदिरों की शहर ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर होने वाली संध्या आरती में शामिल होकर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभूति होती है।
0: और बताएं हम अपने श्रोताओं को अमृता, की जो ऋषिकेश है ना, बेहद ही खूबसूरत सी जगह है
1: जी
0: और बहुत ही सेफ जगह है। अभी
1: हाँ
0: तो बहुत भीड़ है, अभी चार धाम यात्रा की वजह
1: जी
0: से लोग बहुत जा रहे हैं, और ये जो समय है ना, ये जाने का बहुत अच्छा समय है। आप वहाँ पर जाइए, प्रकृति प्रेमी प्रेमियों के लिए तो यहाँ बहुत सारी जगह है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक झरने हैं, जिसमें नीरगढ़ का झरना, गरुड़ चट्टी और बहुत सारी खूबसूरत जगह है, जहाँ पे आप जाकर अपने कैमरे में, अपनी आंखों के कैमरे में उसे हमेशा के लिए कैद कर सकते हैं। और गंगा की जो धारा है ना ऋषिकेश में, कहा जाता है वो सबसे निर्मल धारा
1: हाँ
0: है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। गर्मी के मौसम में नदी, झरनों और तालाबों का जो सानिध्य आराम आपको देता है, नीला पानी जहाँ जहाँ खेलता उछलता हुआ ऊंचाई से उतरता या बहता है, और हर उम्र के सैलानियों को रोक कर कहता है, उसका खिलखिलाता हुआ रंग, आवेग और मचलना आंखों में ऐसे समा जाता है जैसे आपको लगेगा कि आप किसी स्वर्ग में आ गए हैं।
0: बिल्कुल, और ऋषिकेश जब आप जाएंगे ना और वहाँ पे आप रहेंगे कुछ दिन ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि स्वयं को अभिभूत करने वाला निर्मल आनंद हमारे शरीर में प्रवेश कर गया है।
1: जी
0: और वहाँ मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, बहुत सारे आश्रम हैं, आप कम खर्च में भी
1: बिल्कुल
0: वहाँ जाकर
1: आप
0: रह
1: रुक
0: सकते
1: सकते
0: हैं।
1: हैं।
0: और जो धार्मिक नगरी है और योग की नगरी है, मंदिरों की नगरी है, वहाँ आप आनंद उठा सकते हैं।
1: हाँ, साथ ही महाप्रसिद्ध लक्ष्मण झूला जो है पुराना हो जाने के कारण बंद कर दिया गया है। उसके पास बना 13 मंजिला त्रैकम्बेश्वर मंदिर दूर से ही ध्यान खींच लेता है। लक्ष्मण झूला के पास ही नया सेतु बनाया जा रहा है। ऋषिकेश में टैक्सी के अतिरिक्त स्कूटर या बाइक भी किराए पर ले सकते हैं, जिससे आप पूरे शहर में भ्रमण कर सकते
0: हाँ,
1: हैं।
0: क्योंकि बहुत बड़ी जगह नहीं है और
1: जी
0: आप घूम सकते हैं। वो लक्ष्मण झूला ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद है,
1: जी
0: गाड़ियों के लिए बंद है, लोग
1: हाँ
0: जाते हैं। उसके बगल में भी जो सेतु है वो भी बन गया है, तो वहाँ भी जाकर आप उसका आनंद उठा सकते हैं। तो और इस यहाँ पे जाने के लिए आपको हर चीज की सुविधा है,
1: जी
0: फ्लाइट है, ट्रेन
1: ट्रेन
0: है,
1: है।
0: बसेस हैं, आप पर्सनल गाड़ी से भी करके जा सकते हैं दिल्ली से आप, तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। बेहद खूबसूरत सी जगह, गंगा की गोद में बसा शहर, जरूर जाइए, घूम कर आइए। और जब घूमने जाए तो कुछ अच्छी यादें, कुछ अच्छे थॉट्स, कुछ अच्छी चीजें सीख कर आए और
1: बिल्कुल
0: बच्चों को भी सिखाए और गर्मी छुट्टियों का आनंद उठाए।

0: हमारी आंतों को स्वस्थ रखते हैं और पाचन क्रिया को बेहतर बनाते
1: हाँ,
0: हैं।
1: जिन लोगों को खाना खाने के बाद एसिडिटी, गैस या पेट में जलन की समस्या होती है, उन्हें भोजन के साथ या उसके बाद में एक कटोरा सादा दही जरूर लेना चाहिए।
0: दही के बहुत सारे गुण हैं अमृता। दही कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। इसे खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम होता है। इसके अलावा दांत और नाखून भी मजबूत बने रहते हैं। और पता है दही को बहुत तरीके से खा सकते हैं हम। दही प्लेन खा सकते हैं, दही नमक जीरे के साथ खा सकते हैं, दही रायता के साथ खा सकते हैं, दही छौंक लगा कर खा सकते हैं। तो दही खाने से यकीन करो कि हमारे शरीर को बहुत ही फायदे होते हैं।
1: दही में मौजूद जो है प्रोबायोटिक्स इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। गर्मियों में होने वाले पेट से संबंधी संक्रमण और फूड पॉइजनिंग की शिकायत को रोकने के लिए सहायक हो सकता है। हालांकि रात में अधिक मात्रा में दही खाने से कुछ लोगों को सर्दी जुकाम की परेशानी भी हो सकती है, इसलिए आप प्राय कोशिश करें कि दिन के वक्त ही दही खाएं।
0: बिल्कुल, दही आप कभी भी खाइए, रात में भी अगर खाते हैं ना तो ठंडी दही मत खाइए। दही में अगर नमक डालकर आप खाते हैं तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। और अभी गर्मी के मौसम में जो दही है, और दही जैसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको स्वस्थ रखेंगी। जैसे आप, हमने शुरू में ही बात की थी कि मौसम बहुत अजीब सा बदल रहा है, बहुत गर्मी अचानक सा हो रही है, तो अगले दिन तुरंत शाम को बारिश होने लगती है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ना गर्मी के मौसम में अपने खान पान का विशेष ख्याल रखना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ रहे। और दही ऐसी चीज़ है ना जो अगर दूध का सेवन नहीं करते हैं या बच्चे जो नहीं खाना चाहते हैं, उन्हें दही की लस्सी आप बनाकर पिलाइए, वो ज़रूर पिएंगे। और दही की स्मूदी भी बनती है, वो भी बच्चे खा सकते हैं। तो दही से जुड़े अनेकों चीज़ें हैं जिनका प्रयोग करके आप गर्मी में या सालों भर, दही तो बहुत लोग सालों भर खाते हैं, बीच में एक दो महीने नहीं खाते हैं जिस समय उसमें फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो दही का इस्तेमाल नियमित करें, अपने स्किन को भी ग्लोइंग बनाकर रखें। और बहुत सारी बातें, जानकारी हमने अपने श्रोताओं को दे दी है अमृता। घड़ी की ओर देखो, घड़ी हमें जाने का इशारा भी कर रही है।
1: घड़ी अब इशारा कर रही है कि अब हमारी बातें जो है यहीं पे
0: खत्म होनी चाहिए। तो हम अपने श्रोताओं को इतना ही कहेंगे कि स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहिए। और इस कार्यक्रम से सुनीता
1: और अमृता को दे इजाजत। आप सभी को
0: नमस्कार,
1: जोहार।
0: और सुनते हैं ये खूबसूरत संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहर रांची। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आपने ट्यून किया है FM 100.5 MHz पर। अब आपको सुनाते हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म कभी हाँ कभी ना के इस प्यारे से गीत के साथ। स्वर हैं सोनू निगम के, बोल हैं मजरू सुल्तानपुरी के और धुन बनाई है जतिन ललित ने। इस गीत को सुनना चाहा है भटिंडा रोड डबोवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग। और इसी गीत की फरमाइश आई है मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधू, महावीर संधू, गुरुचरण ग्रोवर, रमेश मिगलानी की। तो इन सबों की फरमाइश पे आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
2: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
4: कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगली फरमाइश आई है बाबा बैजनाथ धाम से मनोज केसरी, पूजा केसरी, महादेव केसरी, श्रद्धानंद केसरी, रोशनी केसरी की। और इसी गीत को सुनना चाहा है आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइनी शर्मा और निवान शर्मा। और इन सबों ने फरमाइश की है दोस्तों फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की इस प्यारे से गीत की, जिसे गाया है पामेला चोपड़ा, मनप्रीत कौर ने, संगीतकार हैं जतिन ललित और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सभी का पुनः स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की अगली फरमाइश आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू, चर डोंगरी पिपिरिया से दुर्गाराम साहू और गोंदा टाउन कांके रोड से रमेश प्रसाद जायसवाल, मनीदीप मंटू, मोनू सोनू आराध्या, ग्राम बगबूरवा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनमिका, उत्कर्ष नेताम। दोस्तों, ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म दिल तो पागल है के इस प्यारे से गीत को, जिसे गाया है उदित नारायण, लता मंगेशकर ने, संगीत दिया है उत्तम सिंह ने और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

दोस्तों कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म कल हो ना हो से। इस गीत को गाया है सोनू निगम ने और धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने। इस गीत को सुनना चाहा है कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती ऊषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा निवेदा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा। बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम। जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, उल्ला आसमा बेलदार। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनते हैं फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी से। इस गीत को गाया है अभिजीत और अलका याग्निक ने। संगीत है जतिन ललित का और रचना जावेद अख्तर की है। इस गीत को सुनना चाहा है राजा बाजार भैया आरा से सुरेश केसरी, पूनम केसरी, प्रतीक केसरी, थाना रोड बक्सर से ओमानंद केसरी, धनानंद केसरी, विनोद केसरी। और इसी गीत को सुनना चाहा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लिवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू, चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू।

दोस्तों, इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं पे संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

0: गृहलक्ष्मी कार्यक्रम सुनोइया सब श्रोता बहन मन के सुमन बहन बटले जोहार और वंदना बहन राउत को हो जोहार
1: जोहार सुमन दी और कार्यक्रम सुनवैया सब बहन मन के वंदना राय बटले जोहार और आसरा करीला कि हमार सब प्रिय श्रोता बहन मन खुशी और स्वस्थ होबे।
0: सही कहली बहन मन जे है से घर कर धूरी हो ना और जब भी मन स्वस्थ रह हमरे स्वस्थ रह तबे सब बट से खुशी और स्वस्थ परिवार कर निर्माण भी वेला है नी। और जब गोटा परिवार खुश और झकझोर करके एकदम मस्त रहला तबे सब बेस रहला। सहेले महिला कर योगदान अपन घर और परिवार बटले सबसे खास और बकरा रहला।
1: एकदम सही कहली सुमन बहन। देखो नी एखन मौसम कर कखनो गरम हो जाते तो कखनो ठंडा हो जाते तो कखनो बरसात हो जाते। सहेले ई बदलत मौसम में हमरे के विशेष सावधानी रखे कर दरकार है। ई बदलत मौसम में सर्दी खोखी जर और एलर्जी होवे कर बहुत खतरा बढ़ जाएला। और देखो नहीं अगर स्वस्थ रहे है तो हमारे मन के गुनगुना पानी के पिए के चाहिए। पौष्टिक आहार जेकर में विटामिन सी होवी से के जरूर लेवे के चाहिए और अपन पूरा शरीर के ढाक के हमारे मन के रखे के चाहिए। और देखो नहीं बाहर कर जो खाना हमारे मन खाई ला से के वो कम खाई के चाहिए। घर कर खाना के हमारे मन के बगरा खाई के चाहिए। और ई मौसम में देखो डिहाइड्रेशन और लू कर कारण भी होवेला बहुत गर्म हो गए इसलिए हमारे मन के ऊपर से बाचे कर बहुत दरकार है। और सबसे पहले तो हमरे के लू से बाचे होवी ऊकर ले बिहान 11:30 बजे से लेके साँझ के 4 बजे तक हमरे मन के घर से निकले के नहीं चाहिए काले कि से बेरा रोद बहुत बेसी होवेला। और देखो नी पानी कर प्यास नी लागल में भी उके पीते रहूँ तनी तनी देरी में। नींबू पानी होलक नरियर कर पानी होलक लस्सी चाहे छाछ और शिकंजी घर में बनाए के हमरे मन के जरूर पिए के चाहिए।
0: सही कहती। और देखो जब भी हमरे घर से बाहर निकली लनी तो हमरे के माथा ऊपरे टोपी चाहे कोई भी गमछा के ले चाहे स्कार्फ नियर कोनो के भी बांधू और छाता के अपन संगे जरूर से राखू और हल्का रंग कर जे ढीला सूती कर कपड़ा होवे से खे पिंधे कर कोशिश करूँ। और जे बाहर से जब भी घरे आऊ तो तुरंत पानी के नीब पिए के चाहिए। इन्हीं की धूप से आली और प्यास बहुत तेज है तो जल्दी जल्दी पानी के पिए थी ऊकर से भी बहुत नुकसान हुए और ना तो नहाय के चाहिए। पहले खुद के बैठो शांत हो और तनिक उन ठंडा करू शरीर के बदन के ऊकर बाद नहाय के पानी मन कर सेवन करे के चाहिए। और देखो कि छानल गारल बगरा तेल मसाला ये सब कर प्रयोग नहीं करे के चाहिए इसन मौसम में खास करके। और जे भी खाए पिए का चीज है जेकर में कि पानी कर मात्रा ज्यादा रहलक जैसे कि तरबूज भेला खीरा ककड़ी मन है चाहे संतरा है और जैसन भी फल जे कि खुला में रखल है उके मत कहू काट के रखल जैसे कि बहुत जगह देखा नहीं कि तरबूज मन काटल रहेगा ठेला मन में और उसे उन सब

0: कर सेवन मत करूँ कभी भी, जब भी करूँ तो घर में काट
1: घर
0: के
1: में
0: बढ़िया से
1: पहन के।
0: स्वच्छ तरीका से काटूँ, साफ सुथरा तरीके से काटूँ, धो और उकर बाद उकर सेवन करूँ। और साबुन और पानी से बार बार हाथ के धोवे के चाहिए। और एसी कर जैसे टेम्परेचर है उके भी कम में राखू। और एसी से भी देखे कि तुरंत आदमी का करे कि एसी में कर रूम में रहते और तुरंत उकर से बाहर आवी, तो
1: गर्म में।
0: उकर से भी सरद गर्म का संभावना बहुत ज्यादा बढ़ेला और ईसन में इन्फेक्शन का भी खतरा ज्यादा बढ़ेला। तो ई सब कर हमरे के जरूर अपन ध्यान रखे चाहिए अपन
1: एकदम
0: डेली
1: एकदम।
0: कर दिनचर्या में।
1: हाँ बोलो तो एसी कर जो टेम्परेचर है सेके अगर हमरे मन 24 से 26 डिग्री सेल्सियस तक रखी ला तो हमरे कर स्वास्थ्य के हानि नहीं पहुँचाए ला। और देखो हमरे रोद में अगर निकसत थी तो सनस्क्रीन कर उपयोग हमरे मन के जरूर करे चाहिए। और वायरल इन्फेक्शन से बचे खातिर देखो भीड़ वाला जगह में हमरे मन के नहीं जाए के चाहिए। अगर जर मुड़ बत्था उल्टी या दस्त जैसन लक्षण दिशत है तो तुरंत डॉक्टर दिखाए के चाहिए। और लू कर खतरनाक लक्षण जैसे कि चक्कर आवे, बेहोशी या त्वचा एकदम जो शुष्क हो जाएला
0: जलन हो
1: तखन,
0: लागे ला।
1: हाँ, और जलन होवे ला तो तुरंत हमरे मन के डॉक्टर डा जाए के चाहिए। तो ये सब करके हमरे मने बदलत जो मौसम है ओकर में सावधानी अपने के रख सकीले।
0: और स्वस्थ रख सकीला अपन आपके, है नी। तो चलो हमरे अपन कार्यक्रम में आगे बढ़ीला और एगो गीत के सुनीला, नागपुरी लोकगीत यशोदा देवी और संगीमन कर गावल।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें।

0: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: ये रहे विज्ञापन संदेश, इकर आगे हमरे सुन ली नागपुरी लोकगीत यशोदा देवी और संगी मनकर गावल।
2: तो चलो अब हमरे मन जानकारी करब कि आयु अनुकूल उपयुक्त आहार छुआ मनकर स्वास्थ्य कर आधार, इकर बारे हमरे के बताते विनीता शुक्ला और बातचीत कर रहे हैं हमरे कर सुमन बहिन।
3: बच्चों का स्वास्थ्य उनके भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है। स्वस्थ बच्चा ही आगे चलकर स्वस्थ और सफल नागरिक बनता है। बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आयु के अनुसार सही और संतुलित आहार मिले और हर उम्र के बच्चे की शारीरिक और मानसिक जरूरतें अलग अलग होती है। इसके लिए उनके भोजन में भी बदलाव होना जरूरी है। बच्चों को उनकी आयु के अनुसार पौष्टिक भोजन दिया जाता है जो उनको शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है, जिससे उनकी बौद्धिक क्षमता, दिमाग तेज होना और बीमारियों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है। छोटे बच्चे के लिए माँ का दूध सबसे उत्तम आहार माना जाता है और जन्म से 6 महीने तक के बच्चे केवल माँ के दूध पर निर्भर होते हैं। इसमें सभी जरूरी पोषक तत्व हैं जो बच्चे के विकास में मदद भी करता है। 6 महीने के बाद बच्चे धीरे धीरे दाल का पानी, खिचड़ी, फल, सब्जी, सूप, हल्का भोजन लेना शुरू करता है। भोजन में प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम और आयरन की मात्रा बहुत संतुलित मात्रा में होनी चाहिए। स्कूल जाने वाले बच्चों को दूध, अंडा, दाल, हरी सब्जियां, फल, अनाज नियमित रूप से देना चाहिए। इसके उनकी पढ़ाई में तन बढ़ता है और शरीर को ऊर्जा मिलती है। आयु के अनुसार सही और पौष्टिक भोजन बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य का आधार है। स्वास्थ्य बच्चे ही देश के उज्जवल भविष्य बनते हैं, इसलिए हर माता पिता और समाज का कर्तव्य है कि बच्चों को सही आहार और अच्छा वातावरण मिले। आइए आज इस विषय पे हम बात करते हैं विनीता जी से। विनीता जी नमस्कार।
4: नमस्कार
3: विनीता जी, बच्चों के लिए सही आहार का क्या महत्व है, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे?
4: सही आहार ऐसे तो बच्चों के शरीर के विकास के लिए काफी जरूरी होता है। भोजन से बच्चों को ऊर्जा मिलती है और यही ऊर्जा उन्हें खेलने, पढ़ने या फिर सीखने में मदद करती है। यदि बच्चों को सही भोजन न मिले तो फिर उनका शरीर कमजोर हो सकता है और उनकी मानसिक विकास काफी प्रभावित हो सकती है। इससे एक संतुलित आहार जिसमें कि काफी, जिसको कि हम बैलेंस डाइट भी बोलते हैं, जिसमें कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, जिंक, पानी, मिनरल्स, ये सभी चीजें सही मात्रा में होनी चाहिए। ये सभी पोषक तत्व शरीर में अलग अलग कार्यों में मदद करते हैं। प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करता है। दूध, दाल, अंडा, पनीर, सोयाबीन, ये सब में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम विटामिन डी का काफी अच्छा सोर्स होता है और ये हड्डियों को मजबूत करता है और साथ ही साथ दांतों को भी मजबूत करता है। विटामिन शरीर में बीमारियों को आने नहीं देता है और उनसे बचाता है। आयरन शरीर में खून बढ़ाने में काम करता है। यदि बच्चों को समय पर पौष्टिक भोजन मिले तो वे अधिक सक्रिय रहते हैं और पढ़ाई में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मानसिक का विकास होता है।
3: जन्म से लेकर 6 महीने तक के बच्चे का आहार कैसा होना चाहिए?
4: ऐसे तो जन्म के बाद बच्चे के लिए सबसे पहला और सबसे अच्छा भोजन माँ का दूध होता है। डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि जन्म के 6 महीने तक बच्चों को केवल माँ का ही दूध देना चाहिए। माँ के दूध में सभी जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो कि बच्चों को बीमारियों से बचाते हैं और जैसे कि कोई भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। माँ का दूध आसानी से पच जाता है और इससे बच्चे की सही मात्रा में पोषण मिलता है। छोटे बच्चों का जो पेट होता है वह काफी नाजुक होता है, इसलिए उन्हें जो बाहर का दूध या फिर भारी भोजन उन लोगों को नहीं देना चाहिए। कई बार लोग छोटे बच्चों को शहद, पानी या गाय के दूध देने लगते हैं, लेकिन यह सही नहीं माना जाता है। फिर जैसे जैसे वो बच्चा 6 महीने से अधिक का होने लगता है, वैसे उसे दाल का पानी, खिचड़ी, दलिया या फसला हुआ केला, उबले हुए आलू, सब्जियां, सूप आदि, ये सब धीरे धीरे बच्चों को अलग अलग स्वाद और भोजन की आदत डलवानी चाहिए। इस उम्र में बच्चे तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए उन्हें अधिक पोषण की जरूरत होती है। यदि इस समय सही भोजन ना मिले तो बच्चा कमजोर हो सकता है और कई बच्चे में कुपोषण की समस्या इसी उम्र में शुरू होती है। फिर जब बच्चे जो बड़े हो जाते हैं और वे जब स्कूल जाना शुरू करते हैं तो फिर उनमें अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। वे पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, निजी चीजें सीखते हैं,

0: और इसलिए उनके भोजन में सभी जरूरी पोषक तत्व होने चाहिए। सुबह का नाश्ता बहुत जरूरी होता है। जो बच्चे बिना नाश्ता किए स्कूल जाते हैं वे जल्दी थक जाते हैं और पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते हैं। बच्चों को सुबह दूध, फल, अंडा, पराठा, दलिया या पोहा जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ देने चाहिए।
1: जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, बड़े हो जाते हैं, फिर किशोरावस्था आती है, तो क्या उस समय भी फिर परिवर्तन करना पड़ता है बच्चों के डाइट में, उनके खान पान में?
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। किशोरावस्था जो होती है वे बच्चों के जीवन का काफी महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय शरीर तेजी से बढ़ता है और मानसिक बदलाव भी आते हैं। लड़के और लड़कियों दोनों को इस समय पौष्टिक भोजन की अधिक जरूरत होती है। इस उम्र में आयरन और कैल्शियम बहुत जरूरी होते हैं। लड़कियों में खून की कमी समस्या अधिक देखी जाती है, इसलिए उन्हें हरी सब्जियां, फल, दूध, आयरन ये सब से भरा हुआ ये सब भोजन लेना चाहिए। किशोर बच्चों को फास्ट फूड खाने की आदत जल्दी लग जाती है। कई बच्चे वजन कम करने के लिए खाना कम कर देते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। सही भोजन शरीर को मजबूत बनाता है और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। तुलित आहार ऐसे तो काफी जरूरी होते हैं जीवन में, जिसमें कि वे सारे भोजन आते हैं, जिसमें शरीर की जरूरतें, सारी जरूरतें, जिसमें कि सभी पोषक तत्व सही मात्रा में हो। केवल पेट भर लेना पर्याप्त नहीं होता है। भोजन ऐसा होना चाहिए जिससे कि शरीर को पूरी शक्ति मिले। संतुलित आहार में अनाज, दाल, दूध, फल, सब्जियां, पानी, ये सब कुछ शामिल होना चाहिए। हर रंग की सब्जियां और फल शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। यदि भोजन में केवल एक ही चीज ज्यादा है और बाकी चीजों की कमी है तो शरीर कमजोर हो सकता है, इसलिए भोजन में विविधता होनी चाहिए।
1: हम ये कह सकते हैं कि आयु के अनुकूल उपयुक्त आहार बहुत महत्वपूर्ण है ना?
0: जी
1: विनीता जी, इस विषय पे आप क्या बताएंगे?
0: ऐसा तो देखा गया है कि ये आयु अनुकूल उपयुक्त आहार, इसका मतलब होता है कि बच्चे जो हैं उनकी उम्र के अनुसार सही भोजन दिया जाए। हर उम्र में ऐसे तो शरीर की जो जरूरतें होती हैं वे अलग अलग होती हैं। छोटे बच्चों को हल्का और आसानी से पचने वाला जो भोजन होता है वो सब देना पड़ता है, जिसमें कि दलिया आ जाता है या फिर, जबकि बड़े बच्चों को अधिक ऊर्जा और पोषण की जरूरत होती है। सही आहार बच्चों के शरीर को मजबूत बनाता है और मानसिक विकास में भी मदद करता है। इससे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और वे जल्दी बीमार नहीं पड़ते। यदि बच्चों को सही भोजन न मिले तो उनका विकास रुक सकता है, इसलिए आयु के अनुसार भोजन देना बहुत जरूरी है।
1: व्यायाम और सही आहार, ये दोनों शारीरिक रूप से मजबूत बनने के लिए आवश्यक है, इस विषय पे क्या बात होती है?
0: अच्छे स्वास्थ्य पाने के लिए सही भोजन और व्यायाम दोनों जरूरी है। यदि बच्चे पौष्टिक भोजन खाएं और नियमित खेल कूद करें तो उनका शरीर स्वस्थ रहता है। व्यायाम से शरीर मजबूत बनता है और मन प्रसन्न रहता है। आजकल बच्चे मोबाइल में ज्यादा समय बिताते हैं, इसलिए उन्हें खेल कूद ये सब के लिए समय नहीं मिलता है। और लोगों को, उनके माता पिता को खास करके, बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि वे व्यायाम करें और खेल कूद, जो कि आउटडोर एक्टिविटीज हो गई, उनमें पार्टिसिपेट करें। बच्चे देश के भविष्य होते हैं। यदि बच्चे स्वस्थ होंगे तभी वे पढ़ लिख कर देश की प्रगति में योगदान देंगे। स्वस्थ बच्चे ही मजबूत समाज और मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं, इसलिए बच्चों के स्वास्थ्य और भोजन पर विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। फल और सब्जियां बच्चों के शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। इनमें विटामिन, मिनरल, फाइबर ये सब पाए जाते हैं, जो कि शरीर को स्वस्थ रखते हैं। हरी सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी, लौकी शरीर में खून बढ़ाने में मदद करती है। गाजर, जिसमें कि विटामिन ए काफी ज्यादा होता है, वो आंखों के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। फलों में प्राकृतिक मिठास होती है जो बच्चों को ऊर्जा देती है। केला, सेब, संतरा, पपीता या फिर ये सब जितने भी फ्रूट्स होते हैं ये सब बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। रोज फल खाने से बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आजकल कई बच्चे फल और सब्जियां खाने से बचते हैं। माता पिता को बच्चों को अलग अलग तरीके के फल और सब्जियां खिलानी चाहिए ताकि उन्हें खाने में रुचि हो।
1: यानी भी हम जितना ध्यान देते हैं उन्हें पानी पीने की ओर भी प्रेरित करना चाहिए, जिससे कि वो बिल्कुल हाइड्रेट रहे, है ना? तो पानी का भी महत्व हमारे संतुलित शरीर को रखने के लिए जरूरी होता है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। पानी हमारे जीवन के लिए ऐसे तो काफी जरूरी होता है। बच्चों के शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा होनी काफी जरूरी है। पानी शरीर को ठंडा रखता है और शरीर से गंदगी बाहर निकालता है। यदि बच्चे कम पानी पीते हैं तो उन्हें कमजोरी, थकान और पेट की समस्या हो सकती है, इसलिए बच्चों को साफ और उबला हुआ पानी

0: पीने की आदत डालनी चाहिए। गर्मी में के मौसम में बच्चों को अधिक पानी पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक की जगह नींबू पानी या फिर नारियल पानी, ये सब घर पे बना हुआ शरबत, ये सब ज्यादा लाभदायक होता है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। विनीता जी, आपने संतुलित आहार के विषय में इतनी अच्छी बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी धन्यवाद।
2: हाँ तो सुनोया बहिन मन, एखन हमारे मन जानकारी कर ली कि आयु अनुकूल उपयुक्त आहार बच्चों के स्वास्थ्य का आधार, और ओकर बारे में हमरे के बतात रहे विनीता शुक्ला और बातचीत कर रहे हैं हमरे कर सुमन बहिन। तो चलो और एक और नागपुरी लोकगीत हमरे मन सुन ले विला, रुना देवी और संगी मन कर गावल।
3: इधर आते का

0: ई रहे नागपुरी लोकगीत रूना देवी और संगी मनकर गावल।
1: तो चलो अब हमरे मन जानकारी करब कि ये गर्मी कर मौसम है उकर में छोट छुआ मन कर खान पान के हमरे मन के कैसे ध्यान देवे के चाहिए। देखो नी गर्मी में जो है छुआ मन कर जो मुख्य उद्देश्य है खान पान कर वो मन के डिहाइड्रेशन यानी कि पानी कर कमी और पेट कर समस्या से बचाई के उमन कर। देखो जो खाना है उकर में हमरे मन के तरल पदार्थ कर मात्रा जरूर बढ़ाई के चाहिए और मौसमी फल और सब्जी के हमरे मन के जरूर शामिल करे के चाहिए।
0: सही कहली वंदा बहन, गर्मी कर मौसम में छुआ मन के स्वस्थ और खास करके एकदम ऊर्जावान रहें जेकर से हुआ ने ऐसा डाइट के हमरे के अपन में शामिल करे के चाहिए और हाइड्रेशन और जो पेय पदार्थ मन है उकर में इन हमरे जैसे के कहबे कर ली कि नारियल कर पानी भेलक, नींबू पानी है, छाछ है, चीनी से जो भरल बाजार में जूस मन है से के ना दे
1: एकदम
0: अपन घर में
1: डब्बा बंद जूस हुवेला
0: से का प्रयोग मत करू। छुआ मन ले घर में खुद से फ्रेश जूस बना लू और उकर सेवन करे ले बच्चा मन के दे तो उकर में चीनी कर मात्रा के हमरे अपन हिसाब से राख सके।
1: चीनी नहीं देले भी चली
0: काले की उकर जे अपन जे प्राकृतिक रूप से उकर मिठास है से है हमरे लेकिन बेहतर रहे।
1: देखो स्मूदी जे होवेला से तो बहुत बढ़िया से घर में बन जाला उके भी हमरे मन दे सकीला। और देखो एखन तो बहुत बढ़िया बढ़िया फल मन मिलत है जैसे कि तरबूज होलक, खरबूजा, संतरा, पपीता जे पानी से भरल फल मन है
0: मौसमी फल है एकदम
1: से मन के जरूर छुआ मन के देवे के चाहिए जेकर से कि मन के पानी कर कमी नहीं होवी। और देखो दही जे होवेला से पेट के ठंडा रखेला और पाचन कर क्रिया के हम मजबूत रखेला सेले हमरे मन के अपन छुआ के सादा दही लस्सी या खीरा कर जे रायता होवेला से हमरे मन दे सकीला।
0: मठा के रूप में भी जरूर प्रयोग करे के चाहिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है मठा भी है नहीं सेहत ले।
1: तो बहन मन तो अगर घर में छोट छुआ है तो रौरे मन ये सब खाना दे के उमन के बढ़िया से राख सकीला गर्म कर मौसम में।
0: सही कहली।
1: तो सुमन बहन आप तो हमरे कर जाय कर बेरा होते तो अगला सोमवार के बहन मन कर संगे हमरे मन फिर से गोठियाब। तब तक खातिर देव विदा
0: जोहार।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और आपके मित्र अजीत का भी नमस्कार और जोहार।
2: बिना संघर्ष के सफलता बिना नमक के भोजन की तरह होती है। इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी लेकिन ये स्वादिष्ट नहीं लगेगी।
3: श्रोताओं, ये सुंदर विचार हमें भेजा था बिहार से वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने। बिल्कुल सच कहा है, बिना श्रम के सफलता का सच्चा आनंद नहीं मिलता
2: जी।
3: आप दोनों का धन्यवाद। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
3: और भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं,
2: गुरुवार 23 अप्रैल को सुविचार को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आपने जानकारी देते हुए एक दोहा का उदाहरण दिया। इस दोहे में कबीरदास जी विश्वास को न तोड़ने की सीख देते हैं। दोहा इस तरह से था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे, जुरे गांठ परे जाए।
3: आपने आगे लिखा है, आपके द्वारा इस दोहे के रचनाकार कवि का नाम कबीरदास बताया गया। वास्तव में इस दोहे को रहीम ने लिखा है, न कि कबीरदास जी ने। धन्यवाद और आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार। कृष्ण कुमार जी, आपको भी हमारा विशेष धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रमों को बड़ी बारीकी से सुनते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं।
3: तो हम कहना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है हमेशा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया संदेश भेजते रहिए। अगला संदेश सुनते हैं जो हमें मिला है।
2: गाँव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़ता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी।
3: और बेगूसराय बिहार से हमें संदेश मिला है इकबाल मोगा, देव, अजय मोगा और अहमद मोगा का। लिखते हैं,
2: आज की प्रस्तुति कल्पना चावला जो सितारों में खो गई हमें बहुत अच्छी लगी, आपको साधुवाद।
3: और आप सबको हमारा हार्दिक आभार। आइए बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
2: इस प्रश्न का उत्तर है, नीली वेल को आकार में समुद्र का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। इसका वजन लगभग 100 से 150 टन का होता है, यानी किलोग्राम के अनुसार ये 1 लाख से 1.5 लाख किलोग्राम की होती है
3: जी। और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, थर्मल लैग किसे कहते हैं।
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। गर्मियों में सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है। सुबह से सूर्य के ताप के कारण धरती गर्म होती रहती है और 12 बजे सूर्य की किरणें धरातल पर सीधी पड़ती हैं
3: जी।
2: बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसीलिए उनका ताप कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान यानी 12 बजे के बाद भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है, जिसे थर्मल लैग कहते हैं।
3: और हमारा तीसरा प्रश्न था कि प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
2: इसका उत्तर है साथियों, प्रकृति जलवायु के अनुसार हर मौसम में वही उपज देती है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसके अनेक उदाहरण हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि गर्मी के मौसम में जो फल आते हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है ताकि हमें गर्मी के मौसम में इसका लाभ मिले।
3: और हमारा अगला प्रश्न श्रोताओं प्राथमिक उपचार से संबंधित था। हमारा प्रश्न था कि लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीले करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
2: तो साथियों इसका उत्तर भी जान लेते हैं। लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से

0: सांस लेने में आसानी होती है और शरीर का रक्त संचार आसानी से हो पाता है।
1: और अब हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न, हमारा प्रश्न था, बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टी में और क्या क्या कर सकते हैं?
0: इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे विद्यार्थी कोई भी शास्त्रीय नृत्य या वाद्य यंत्र सीख सकते हैं, जैसे हारमोनियम, तबला या बांसुरी।
1: जी विमरेश जी, ये सचमुच एक बड़ी अच्छी सलाह है। तो श्रोताओं, अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
1: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमें भेज सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित ये कार्यक्रम बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करें और उसकी सुंदरता का अनुभव करें। कार्यक्रम एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक बच्ची आकाश में बादलों को ध्यान से देखकर उनके विभिन्न आकारों में पशु पक्षियों की छवि की कल्पना करती है।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू?
3: वी आर फाइन सर।
4: आई एम फाइन।
5: आई एम गुड सर।
2: फाइन, गुड, ओके, सो टेल मी, what do you like most?
6: I like playing, sir.
7: I like painting, sir.
2: Very good. Anyone else?
8: Sir, I like singing.
9: I like playing with my pets.
2: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
3: Yes, sir.
7: We like.
2: Lovely butterflies?
3: Yes, sir.
2: And lovely colorful chirping birds?
3: Yes, sir.
2: That's very nice, children.
7: Sir, I go to the park with my parents on holidays.
2: Okay. It's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it?
3: Yes, sir.
2: The rivers, the mountains, and the green trees.
3: Yes, sir.
2: Okay. So let me tell you the story of a sweet child like you.
3: Like us?
2: Would you like to listen?
3: Yes.
7: Story.
2: To know what the child did, you have to listen to a beautiful poem. After listening to the poem, you will know what the child did. Okay?
3: Okay, sir.
2: Very good. Now I am going to read this poem. You have to repeat after me. Okay?
3: Okay, sir. We love you.
2: As I lie on my back, looking up at the sky, I see a big white bear, looking down at me. As I lie on my back,
3: looking up at the sky.
2: I see a ship sailing. On a white sea. As I lie on my back. Looking up at the sky. I see an elephant. Waving its trunk at me. As I lie on my back,
3: looking up at the sky.
2: Oh, it's fun to me. To see whatever I want to see. So, children, you have recited so well. Have you ever noticed the clouds?
3: Yes, sir.
7: They are beautiful.
5: They are very big.
6: They change the shapes.
2: Wonderful. You have very rightly said. So now listen to the same poem in a song. Would you like to listen to this song?
3: Yes, sir.
2: So kids, here comes the song, As I Lie. What?
3: As I Lie.

0: Did you like the song?
1: Yes, it was lovely.
0: So, children, here is something to do for you, okay?
1: Okay, sir.
0: Sit outside your home or go to any park and see the clouds go by. And tell your friends what you have observed.
1: Okay, sir. It will be so lovely.
2: It will be good.
0: Yes. And one thing more. Notice the colors of the clouds and you will find that the clouds also have different colors from time to time.
1: Yes, sir.
3: I have seen rainbow.
4: It has 7 colors.
0: So, children, whenever you see the clouds, they have different
1: shapes.
0: Yes, shapes. And they have different
1: colors.
0: Very nice.
5: Show of clouds. You were just listening to this program. Program coordinator, Professor Rajendra Pal. Technical coordinator, Bati Langlingdo. Child singer, Angel. Child artists, Soham, Vedika, Vanya, Navya, Riddhi and Lavish. Sound recordist, Mayank Kumar. Assistance in production, Kusum Lata. Directed and produced by Ajit Horo. This program was brought to you by CIET-NCERT, New Delhi, India. अभी आपने सुना कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम. अगले कार्यक्रम का शीर्षक है तुलसी गौड़ा.
6: ये कार्यक्रम जंगल की एनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली महान आदिवासी पर्यावरण विशेषज्ञ तुलसी गौड़ा के जीवन, उनके पर्यावरण पर शोधों और वृक्षों को बचाने के उनके प्रेरणादायक अभियान की जानकारी देता है. विशेष रूप से मातृ वृक्षों पर उनकी खोज के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है.
7: नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहनी
8: तुलसी गौड़ा, 72-year-old ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती.
9: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौड़ा.
7: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
10: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है.
0: ये आकाशवाणी है. प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार. आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
11: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण.
0: यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है.

0: देश भर में प्रसन्नता की लहर।
1: आठ नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा।

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम्य वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेती बाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों में करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए।
3: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
2: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
3: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ।

0: तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
1: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
0: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
1: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं, और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
0: अच्छा,
1: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ,
0: अरे ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। हाँ, लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
1: देखो, पहली बात तो ये कि पौधों में भी जीवन होता है।
0: बिल्कुल होता है।
1: और मुझे लगता है कि वे भी दुख सुख अकेलापन का अनुभव कर सकते हैं, इसीलिए यदि उन्हें उचित दूरी पर आसपास रखा जाए तो वे बेहतर ढंग से बढ़ते हैं।
0: ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात है तुलसी जी,
1: है ना
0: जी।
1: और उचित दूरी पर आसपास लगाए जाने से वे एक दूसरे के साथ नमी और पोषण को साझा कर सकते हैं।
0: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
1: हाँ, बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।
2: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
1: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
2: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थीं, वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थीं। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थीं कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
3: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
2: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है, वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
4: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
1: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
4: अच्छा।
1: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी
5: और दूर दूर तक फैली होती है।
4: अच्छा,
5: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
4: अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि मातृ वृक्ष मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
5: बिल्कुल सही सुना है आपने, मातृ वृक्ष गोंद की तरह मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं।
4: अच्छा,
5: और आंधी तूफान के समय दूसरे पेड़ों को गिरने या उखड़ने से बचाते हैं।
4: अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने।
5: इतना ही नहीं, यदि कई मातृ वृक्ष आसपास हो तो छोटे पेड़ों के लिए आसपास की नमी को बनाए रखकर प्राकृतिक ग्रीन हाउस बनाते हैं। वे छोटे और युवा पेड़ों को नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान करके उन्हें पालते हैं, समझे?
4: जी, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृ वृक्षों के बारे में।
5: हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है, ठीक है ना?
4: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज, एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
5: आपका भी बहुत धन्यवाद।
2: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
3: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जंगल इंसाइक्लोपीडिया तुलसी गौड़ा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, पूनम एस कुदेसिया और अंजलि, आलेख अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तुलसी गौड़ा और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
8: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
9: दोस्तों, अभी आपने सुना NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए आपको ले चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुन पाएंगे हिंदी और अंग्रेजी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। इस दौरे में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय वार्ता और तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन शामिल है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और पांच नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले यह सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद गृहमंत्री बस्तर के लिए रवाना हो गए, जहां वे नेतानार गांव में सीआरपीएफ कैंप परिसर में स्थापित जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर होने से एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। यह हादसा पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। प्रधानमंत्री ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 133 अंक की गिरावट के साथ 75,105, निफ्टी 60 अंक लुढ़क कर 23,584 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has left for Norway after concluding his two-day visit to Sweden today. Mr. Modi, in a social media post, said his visit to Sweden was marked by several important outcomes that will add new momentum to bilateral relations. He said from elevating their bilateral ties to a strategic partnership, launching the Joint Innovation Partnership 2.0 and the India-Sweden Technology and Artificial Intelligence Corridor to setting an ambitious goal of doubling bilateral trade in the next 5 years, the discussions were highly productive. He thanked the people of Sweden, the government of Sweden, and Prime Minister Ulf Kristersson for the warmth and friendship. Our correspondent covering the Prime Minister's visit to Sweden reports that elevation of bilateral ties to the level of a strategic partnership is guided by the India-Sweden Joint Action Plan 2026-2030. The comprehensive roadmap aims to double bilateral economic exchange within the next 5 years and deepen cooperation under the Make in India and Made with Sweden initiatives, particularly in areas such as green hydrogen, semiconductors and advanced manufacturing. A defining moment of the visit was the conferment of the Royal Order of the Polar Star upon the Prime Minister, Sweden's highest honour for foreign heads of government, symbolising the deepening civilizational and democratic bonds between the two nations. Defence Minister Rajnath Singh departed on a two-nation visit to Vietnam and South Korea today. In a social media post, he said the visit will further expand the scope of the country's engagement with both nations. He added that the visit will focus on deepening strategic military cooperation, strengthening defence industrial partnerships, and boosting maritime collaboration in the Indo-Pacific region. During his visit to Vietnam, Rajnath Singh will hold bilateral talks with Minister of National Defence of Vietnam, General Phan Van Giang. Mr. Singh's visit also coincides with the 136th birth anniversary of former President of Vietnam Ho Chi Minh on the 19th of May. Union Home Minister Amit Shah today flagged off 400 next-gen Dial 112 vehicles in Raipur. Chief Minister Vishnu Deo Sai, State Assembly Speaker Raman Singh and Deputy Chief Minister Vijay Sharma were also present on the occasion. So far, the Dial 112 service was available in only 16 districts of Chhattisgarh. The state government has now expanded the service to all 33 districts. In Kerala, the new UDF ministry headed by senior Congress leader V.D. Satheeshan was sworn in today at Thiruvananthapuram. Governor Rajendra Vishwanath Arlekar administered the oath to the new ministers.
3: Yana Vadaseri Damodara Menon Sadhishan Emanyan Niyamamali Stabida Maya Bharatatinda Baranagaranayod Nirvyaja Maya Vishwasadayam.
2: Former opposition leader and former KPCC President Ramesh Chennithala, present KPCC President Sunny Joseph, former KPCC President K. Muralidharan and IUML leader P. K. Kunyalikutty are among the senior leaders in the new ministry. Prime Minister Narendra Modi has congratulated V.D. Satheeshan on taking oath as the Chief Minister of Kerala. In a social media post, Mr. Modi said the central government will assure all possible support for the newly formed Keralam government in fulfilling the aspirations of the people. A vessel carrying 20,000 metric tons of liquefied petroleum gas, LPG, has arrived at Deen Dayal Port Authority in Kandla in Gujarat after crossing the Strait of Hormuz amid the West Asia crisis. The Marshall Islands flagged MV Semi started its journey from Qatar and docked at the port in Kandla on Saturday. Since early March, 13 India-flagged vessels comprising 12 LPG tankers and one crude oil tanker have crossed the Strait of Hormuz. In a landmark decision, the Shubhendu Adhikari-led BJP

0: BJP government in West Bengal has raised the upper age limit for entry into state government jobs. The upper age limit for recruitment to Group A posts has now been set at 41 years. For Group B posts, the limit has been raised to 44 years. And for Group C and Group D posts, the maximum age is now 45 years. The government clarified that where higher age limits are already in place, the existing rules will continue. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री मोदी को मिला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा का बताया प्रतीक, कहा देशवासियों के लिए गर्व का विषय। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी। रांची में प्रगतिशील किसानों को किया सम्मानित। खूंटी में पुल निर्माण साइट पर फायरिंग और लूट की घटना। मजदूर के साहस से बाइक छोड़ अपराधी फरार। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। गुमला लोहरदगा समेत कई जिलों में अगले कुछ घंटों में मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ वर्षा की संभावना। रांची समेत कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। और चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन द्वारा रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया जाना प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व और गौरव का विषय है। यह सम्मान न केवल प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक स्तर पर उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व का प्रतीक है, बल्कि विश्व मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और सशक्त उपस्थिति को भी दर्शाता है। केंद्रीय रक्षा मंत्री संजय सेठ ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि प्रधानमंत्री को प्राप्त यह 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान देशवासियों के लिए प्रेरणादायी है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने शहरवासियों की सुविधा के लिए रांची के 5 प्रमुख चौराहों पर वाटरप्रूफ ट्रैफिक शेड लगाने की योजना बनाई है। पहले चरण में अरगोड़ा चौक, सरना चौक, सहजानंद चौक, लालपुर चौक और करमतोली चौक पर आधुनिक डिजाइन के मजबूत स्टील फ्रेम और वाटरप्रूफ सामग्री से बने शेड लगाए जाएंगे। प्रशासनिक स्वीकृति मिलते ही इस योजना पर काम शुरू होगा और सफलता के बाद इसे शहर के अन्य व्यस्त चौराहों पर भी विस्तार किया जाएगा। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची के बेड़ों में किसान सम्मान समारोह में कहा कि किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने के लिए लगातार काम कर रही है और ट्रैक्टर, कृषि यंत्र, स्प्रेयर समेत अन्य उपकरण अनुदान पर दिए जा रहे हैं। मौके पर मंत्री ने मत्स्य पालन और केस फार्मिंग को बढ़ावा देने के साथ साथ ग्रामीण बाजारों को सशक्त बनाने और कोल्ड स्टोरेज निर्माण की बात भी कही। कम वर्षा की संभावना को देखते हुए उन्होंने किसानों से धान के साथ साथ मोटे अनाज और कम पानी वाली फसलों की खेती पर ध्यान देने की अपील की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 27 अप्रैल 2026 को मंजूर की गई झारखंड अनाधिकृत रूप से निर्मित भवन नियमितीकरण नियम 2026 को टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने आम जनता के लिए काफी लाभकारी बताया है। धनबाद में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि वर्षों से लोग भवन नियमितीकरण की समस्या से परेशान थे, जिसे राज्य सरकार ने दूर करने का प्रयास किया है।
2: जो भवन बन के तैयार था क्षेत्र में, जिसका किसी तरह का उपयोग तैयार नहीं, कोई कानून नीति बना, वैसे लोगों को यह बताया गया है कि कम से कम वैसे लोगों को 2 महीने के अंदर अप्लाई अगर करेंगे तो उसको अस्थायीकरण का भी मान्यता उसको दिया जाएगा और उसका जो सरकारी राशि है उसको दिया जाएगा, उसको वैध माना जाएगा।
1: रांची जिला प्रशासन ने संवेदनशील कार्रवाई करते हुए 85 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक राधेश्याम नाथ को 24 घंटे के भीतर सर्वजन पेंशन योजना और आयुष्मान कार्ड का लाभ उपलब्ध कराया। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर समाहरणालय की टीम ने बुजुर्ग के घर जाकर पेंशन स्वीकृति प्रमाण पत्र और आयुष्मान कार्ड सौंपा, जिससे उन्हें स्वास्थ्य और आर्थिक सहायता तुरंत मिल सके। लाभ मिलने पर राधेश्याम नाथ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जिला प्रशासन का आभार जताया।
3: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सौजन्य से मुझे 12 घंटा के अंदर कार्ड आयुष्मान कार्ड तथा अन्य और कार्ड पेंशन प्राप्त हुआ। हम उनको तहे दिल से अपना धन्यवाद देते हैं।
1: केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया में चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की फैक्ट चेक यूनिट ने कहा है कि यह दावा फर्जी है। भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन पुल साइट पर फायरिंग और लूट की घटना सामने आई है। पुलिस ने मौके से अपराधियों द्वारा छोड़ी गई बाइक बरामद की है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। जानकारी के अनुसार एक बाइक से पहुंचे 3 अपराधियों ने मजदूरों के साथ मारपीट कर करीब 1 दर्जन मोबाइल फोन लूट लिए और दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग की। इस बीच मजदूरों का विरोध देख बदमाश घबरा कर अपनी बाइक मौके पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस का दावा है कि मामले में शामिल सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चतरा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाते हुए गिद्धौर थाना क्षेत्र से 1 अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया है। SP अनिमेश नथानी ने बताया कि उसके पास से करीब 4 किलो अफीम बरामद हुई।
4: सत्यापन में एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा और उसके पास से 2 थैला में सेमी लिक्विड पदार्थ अफीम जैसा बरामद हुआ, जिसकी हम लोगों द्वारा टेस्टिंग की गई तो पाया गया कि 3 किलो 972 ग्राम अफीम उसमें बरामद हुआ है। साथ ही 2 किलो गुड़ भी अलग से थैली में बरामद हुआ है, जिसको जब्त किया गया।
1: साहिबगंज जिले में 300 चोरी या गुम मोबाइल को उनके मालिकों को सौंपा गया। सिद्धो कानो सभागार में आयोजित कार्यक्रम में लोगों को पौधा देकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने कहा कि मोबाइल चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के साथ साथ इस तरह की घटनाओं में शामिल युवाओं को रोजगार से जोड़ने की भी पहल की जाएगी।
5: पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने समेकित एक कार्ययोजना बनाकर उस पर काम कर रहे हैं। एक पक्ष है उसको कि ऐसे सब लोग इस सामने में शामिल हैं, उनको रोजगार के अन्य अवसरों मुख्य धारा से जोड़ा जाए ताकि वो इस तरह के कार्य में सम्मिलित न हो। दूसरा पहलू है कि जो लोग इसके बाद भी, जो हम लोग मौका दे रहे हैं उसके बाद भी इस कार्य में लिप्त है, इस गलत कार्य में, उसको पकड़ा जाए, परेश किया जाए। इसी अभियान के तहत हम लोगों ने 300 मोबाइल रिकवर किया है।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 0.5% की गिरावट दर्ज की गई है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 321 अंक गिरकर 74,917, जबकि निफ्टी 113 अंक लुढ़ककर 23,530 पर था। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,46,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,74,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम विभाग ने अगले 1 से 3 घंटे में गुमला और लोहरदगा जिलों के कुछ भागों में मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ वर्षा होने की तात्कालिक चेतावनी जारी की है। चेन्नई में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई 6 स्थान पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री मोदी को मिला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा का बताया प्रतीक, कहा देशवासियों के लिए गर्व का विषय। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी।

रांची में प्रगतिशील किसानों को किया सम्मानित। खूंटी में पुल निर्माण साइट पर फायरिंग और लूट की घटना। मजदूरों के साहस से बाइक छोड़ अपराधी फरार। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। गुमला लोहरदगा समेत कई जिलों में अगले कुछ घंटों में मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ वर्षा की संभावना। रांची समेत कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। और चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद होंगे आमने सामने। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उपशास्त्रीय संगीत। आइए सुनते हैं अनुरंजनी। कार्यक्रम में हमारी आज की कलाकार है अनिता सेन।

दोस्तों, अभी आपने सुना कार्यक्रम अनुरंजनी, कलाकार थी अनीता सेन। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं सोनू निगम।

मेरी जान, मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: साथ बातचीत करेंगे।
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत, कलाकार थे सोनू निगम, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार बस कुछ ही देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा एआई गलियारे की शुरूआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
2: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आईं। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरूआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एआई कॉरिडोर यानी सीटैक का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र एआई, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन एसएमई और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी लीडिट के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की

0: दो दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
1: वडशेरी दामोदर मेनोन सतीशन नियम वी स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याजमाय विश्वस्तयुम।
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रूपये हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के 2 कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केन्द्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
2: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी।

0: रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्लीवासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
1: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले यह सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
2: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। यह हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरूणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 500

46.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और FM 100.5 मेगाहर्ट्स पर यह प्रसारण आप आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुन रहे हैं। दोस्तों, अब वक्त हो चला है हमारे फौजी भाइयों के कार्यक्रम जय भारती का। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म LOC के इस प्यारे से गीत के साथ। स्वर है अलका याग्निक के और साथियों के, गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार हैं अनु मलिक।

दोस्तों, हर देश की सुरक्षा में सेना का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारतीय सेना व्यवस्था बहुत ही अद्भुत है और विश्व की सबसे श्रेष्ठ सेना है। इनके पास संसाधनों की कमी है, लेकिन इनका हौसला और बहादुरी काबिले तारीफ है। भारतीय सेना के सैनिक देशभक्ति की सच्ची मिसाल हैं, जो कि अपने प्राण त्याग कर भी देश की रक्षा करते हैं। भारतीय सेना मौका आने पर दुश्मन के ईंट से ईंट बजा देते हैं। वो अपने अंतिम क्षणों तक डटकर खड़े रहते हैं। भारतीय सैनिक गर्मी हो या सर्दी, बिना मौसम की परवाह किए देशवासियों की रक्षा करते हैं।

दोस्तों भारतीय सेना तीन प्रकार की है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। भारतीय सेना आज के समय में विश्व के तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी सेना है। भारतीय सैनिक बहुत ही बहादुर होते हैं, जिस कारण वह तकनीकी हथियारों के अभाव में भी हर मुसीबत से लड़ जाते हैं। भारतीय सेना की हर जीत के पीछे उनका अनुशासन है और उनकी सूझबूझ। भारतीय सेना के सैनिकों का जीवन बहुत ही पीड़ादायक होता है, क्योंकि देश के लिए उन्हें अपने परिवार वालों से दूर रहना पड़ता है। उनके घर वाले भी हर समय उनकी सलामती की दुआ करते हैं और अपने जवान बेटों को मातृभूमि के प्रति उनका कर्तव्य निभाने के लिए सरहद पर भेज देते हैं।

दोस्तों, भारतीय सेना सिर्फ सीमा पर रहकर ही देश की रक्षा नहीं करते, बल्कि जब देश के भीतर कोई मुश्किल आती है तो वो वहाँ पर भी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। जब जब देश में बाढ़ आती है तब वायुसेना के लोगों की सहायता करती है और उन तक भोजन पहुँचाती है। जब जब दुश्मनों ने देश पर हमला किया, भारतीय सेना ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम जय भारती यहीं पे संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में एक समारोह में सहायक आचार्यों तथा महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि इससे राज्य के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था और मजबूत होगी। समारोह में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव भी मौजूद रहे।
2: नवनियुक्त हुए हैं

0: सरकार के अंग के रूप में अब आप काम करेंगे। यह चार महीने में ही शिक्षा विभाग में लगभग 9000 से अधिक लोगों की नियुक्ति हुई। विगत दो साल के अंदर हम लोगों ने लगभग 15-16 हजार लोगों की नियुक्तियां की और ये अनवरत जारी भी, अभी और भी तैयारी हो रही है। लगता है कि 2-3-4 महीने में और भी हजारों लोगों की नियुक्तियां होंगी, तो आज ये 300 आदमी हजारों के बराबर।
1: दुमका में बिजली और पानी का संकट गहरा गया है। इसके विरोध में भाजपा नेत्री सीता सोरेन ई रिक्शा से समाहरणालय पहुंची। उन्होंने उपायुक्त अभिजीत सिन्हा को ज्ञापन सौंपकर सुचारू आपूर्ति की मांग की। श्री सोरेन ने कहा कि बिजली कटौती से जलापूर्ति ठप है और लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। प्रदेश कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने के लिए जिला प्रभारियों की नई सूची जारी की है। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में राज्य के सभी प्रमंडलों में नियुक्तियां की गई है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और युवाओं से जुड़े मुद्दों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से उठाना है। टाटानगर रेलवे स्टेशन जल्द ही विश्वस्तरीय बनेगा। अमृत स्टेशन योजना के तहत 290 करोड़ रुपए की लागत से इसका पुनर्विकास कार्य तेजी से जारी है। यहां 6 मंजिला आधुनिक भवन, आधुनिक प्रतीक्षालय और 10,000 वाहनों की पार्किंग जैसी सुविधाएं मिलेंगी। रेलवे ने इस बड़ी योजना को अगले 3 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि गृहमंत्री अमित शाह ने नागरिकों से एक समय का भोजन न करने का आग्रह किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि गृहमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने नागरिकों से केवल सरकारी स्रोतों से ही सत्यापित जानकारी प्राप्त करने का आग्रह किया है। नागरिकों को केंद्र सरकार से संबंधित किसी भी संदिग्ध जानकारी, वीडियो या तस्वीर को पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई के सोशल मीडिया हैंडल पर भेजने की सलाह भी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से अब चतरा जिला सीधे रेल सेवा से जुड़ेगा। रेल मंत्रालय ने बिहार के परैया से चतरा तक 75 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को मंजूरी दे दी है। करीब 2500 करोड़ रुपए की इस विशेष परियोजना की जानकारी आज स्थानीय सांसद कालीचरण सिंह ने प्रेस वार्ता में दी।
2: चतरा और गया का रेल लाइन का अधिसूचना जारी हो गया, जो 75 किलोमीटर का रेल लाइन है। विशेष अधिसूचना के तहत चतरा गया रेल लाइन को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। स्पेशल स्टेटस के अनुसार 531 करोड़ जो अलॉटेड हुआ है, उसमें से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो जाए। जितने भी अड़चने हो, फॉरेस्ट का, NOC का हो, जितनी भी चीजें हो, उनसे जितने भी अड़चन का हो दूर हो जाए और समस्या की ओर जो समाधान करते हुए आगे के कार्य की प्रगति करे, इसलिए स्पेशल स्टेटस इसको दिया गया है।
1: सिमडेगा पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी मामले में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। DSP रणवीर सिंह ने बताया कि पूर्व में टुकुपानी से 42 किलो गांजा और 3 पिस्तौल के साथ तस्कर पकड़े गए थे। इसी मामले में SP श्रीकांत एस खोटरे की विशेष टीम ने बिहार और ओडिशा के 2-2 अन्य आरोपियों को दबोचा है। और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज दोपहर बाद गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए कई जिलों के लिए येलो और कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए तेज आंधी और वज्रपात की चेतावनी दी है। विभाग ने लोगों को खराब मौसम में सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। सरायकेला खरसावां द्वितीय जिला स्तरीय योगासन खेल प्रतियोगिता का समापन हो गया है। श्रीनाथ यूनिवर्सिटी और जिला योगासन खेल संघ द्वारा आयोजित इस स्पर्धा में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथियों ने विजेताओं को मेडल सौंपे। अब ये खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम नॉन स्टॉप अंत्याक्षरी। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म सिलसिला से। कार्यक्रम आप सुनेंगे इस संदेश के बाद।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

दोस्तों, इसी प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम नॉन स्टॉप अंत्याक्षरी यहीं पे संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कार्यक्रम रांची मेलोडीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को आपकी रेडियो दोस्त अमृता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं फिल्म नीलकमल का यह प्यारा सा गीत। मोहम्मद रफ़ी के स्वर में, बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने और सुरल से सवारा है।

किशोर कुमार के स्वर में आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म प्रेम पुजारी से। गीत के बोल लिखे हैं नीरज ने और धुन बनाई है एस डी बर्मन ने।

दोस्तों, फिल्म अभिमान का गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में। संगीत है एस डी बर्मन का और रचना मजरू सुल्तानपुरी की है।

सुनते हैं फिल्म दुल्हन वही जो पियामन भाई का गीत येसुदास के स्वर में और बंसारी सेनगुप्ता हेमलता के स्वर में। संगीतकार गीतकार हैं रविंद्र जैन।

दोस्तों, फिल्म शर्मिला का गीत आइए सुनते हैं किशोर कुमार के स्वर में। धुन बनाई है एस डी बर्मन ने और गीत के बोल लिखे हैं नीरज श्रीधर ने।

दोस्तों कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनते हैं फिल्म पत्थर के सनम से। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। जेटेट भाषा विवाद सुलझाने के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी की आज रांची में पहली बैठक हुई। मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के बाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद और दीपिका पांडे सिंह ने बताया कि शिक्षा विभाग से नई नियमावली में सुधार के लिए विस्तृत रिपोर्ट तलब किए गए हैं। रांची के प्रोजेक्ट भवन में आज आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 316 सहायक आचार्यों और 17 महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नवनियुक्त शिक्षक सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि राज्य के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। रांची की बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में महिला कैदी की कथित यौन शोषण मामले पर भाजपा ने राज्य सरकार को घेरा है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने आरोप लगाया कि जेल अधिकारियों की मिलीभगत से मामले को दबाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की जांच उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से करने की मांग की है। रांची जेल यौन शोषण मामले में कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने साफ किया कि महिला कैदी की मेडिकल जांच में गर्भावस्था की रिपोर्ट नकारात्मक आई है। श्री सिन्हा ने विपक्ष पर मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया है। पलामू जिले के छतरपुर में NH 98 पर आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सल्दा गांव के पास चलती बस किससे गिरकर एक युवक की मौके पर मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे और चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। राज्य में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आज रांची खूंटी और गुमला सहित दक्षिणी तथा मध्य भागों में 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने बारिश और वज्रपात की आशंका है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आओ साथ चलें। कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय होगा जनगणना, राष्ट्र निर्माण और विकास की आधारशिला। भेंट वार्ता जनगणना 2027 के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। भेंट वार्ताकार श्री राम नारायण सिंह, भेंटकर्ता सिंधु मिश्रा, प्रस्तुति नूतन प्रसाद की होगी।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम आओ साथ चले के साथ एक बार फिर मुखातिब हूँ। स्वीकार करें सिंधु मिश्रा का नमस्कार। श्रोता मित्रों, आज कार्यक्रम में हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे राष्ट्र निर्माण और विकास की आधारशिला जनगणना के संबंध में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनगणना 2027 के लिए प्रथम चरण आरंभ हो चुका है और अभी डिजिटल माध्यम से इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। श्रोताओं, किसी भी देश के समग्र विकास के लिए वहां की जनसंख्या से संबंधित सही और विस्तृत जानकारी होना बेहद जरूरी होता है। जनसंख्या की संख्या, शिक्षा, रोजगार, आयु, सामाजिक स्थिति, निवास, भाषा और आर्थिक स्थिति जैसी जानकारियां किसी राष्ट्र के विकास योजनाओं का आधार बनती हैं। श्रोताओं, इन्हीं जानकारियों को व्यवस्थित रूप से प्राप्त करने की प्रक्रिया को जनगणना कहा जाता है। यह किसी देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित आंकड़ों का सरकारी स्तर पर किया जाने वाला व्यापक सर्वेक्षण होता है। भारत में जनगणना का कार्य केंद्र सरकार द्वारा नियमित अंतराल पर कराया जाता है। यह केवल लोगों की गिनती भर नहीं बल्कि देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का विस्तृत अध्ययन भी है। श्रोताओं, किसी भी कार्य का एक प्रमुख उद्देश्य होता है, जनगणना का भी एक प्रमुख उद्देश्य है और वो है देश की जनसंख्या और उससे संबंधित विभिन्न जानकारियों का सही आकलन करना। इसके माध्यम से सरकार को यह पता चलता है कि देश में कितने लोग रहते हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या क्या हैं और किस क्षेत्र में किस प्रकार की योजनाओं की आवश्यकता है। क्रमबद्ध तरीके से अगर हम जानें तो जनसंख्या की सही जानकारी प्राप्त करना देश की कुल जनसंख्या, पुरुष एवं महिला अनुपात, बच्चों और बुजुर्गों की संख्या जनगणना से हमें प्राप्त होती है। सरकार जनगणना के आंकड़ों के आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और रोजगार जैसी योजनाएं तैयार करती हैं। फिर आर्थिक और सामाजिक स्थिति का अध्ययन जनगणना से लोगों की शिक्षा, रोजगार, आय और सामाजिक स्थिति की जानकारी मिलती है, जिससे समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाती हैं। किस क्षेत्र में कितनी आबादी है उसके अनुसार वहां स्कूल, अस्पताल, सड़क और अन्य सुविधाओं का विकास किया जाता है। देश की बढ़ती जनसंख्या और बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार भविष्य की नीतियां और योजनाएं बनाती हैं। श्रोताओं, एक बात बेहद महत्वपूर्ण है और वो है कि जनगणना क्यों कराई जाती है, इस बारे में हमें जानना बेहद जरूरी है। जनगणना इसलिए कराई जाती है ताकि सरकार को देश की वास्तविक स्थिति की स्पष्ट जानकारी मिल सके। यदि सरकार के पास सही आंकड़े नहीं होंगे तो विकास योजनाएं जरूर प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाएंगी। जनगणना से यह पता चलता है कि किन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आधारभूत सुविधाओं की कमी है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, गरीब, बेरोजगार, ग्रामीण और पिछड़े वर्गों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जनगणना के आंकड़े उपयोगी होते हैं। श्रोताओं, किस क्षेत्र में कितने युवा हैं और उनकी शिक्षा की स्थिति क्या है, इसके आधार पर रोजगार और शिक्षा से संबंधित योजनाएं बनाई जाती हैं। फिर जनगणना से ही हमें पता चलता है कि शहरों और गांवों में जनसंख्या का वितरण कैसा है। इससे आवास, परिवहन और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था बेहतर होती है। इसके अलावा देश की आर्थिक और सामाजिक नीतियों के निर्माण में जनगणना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। श्रोताओं, जनगणना किसी भी देश के विकास की मजबूत नींव मानी जाती है। इसके बिना योजनाबद्ध विकास संभव नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में जहां बच्चों की संख्या अधिक होती है, वहां नए स्कूल और कॉलेज खोले जाते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में जनसंख्या के अनुसार अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र और चिकित्सा सुविधाएं विकसित की जाती हैं। रोजगार सृजन में जनगणना के आंकड़ों से बेरोजगारी की स्थिति का पता चलता है, जिससे रोजगार के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई जाती हैं। इसके अलावा ग्रामीण विकास में गांवों में सड़क, बिजली, पानी और कृषि से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी बनाने में जनगणना सहायक होती है। महिला और बाल विकास की बात अगर हम करें, तो महिलाओं और बच्चों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए विशेष योजनाएं इसके माध्यम से तैयार की जाती हैं। डिजिटल और आधुनिक भारत के निर्माण में आज डिजिटल तकनीक के माध्यम से जनगणना को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है, जिससे योजनाओं का लाभ तेजी से लोगों तक पहुंच सके। इससे आमजन को सीधा लाभ पहुंचता है, लोगों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं, गरीब और जरूरतमंद लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचता है, रोजगार और स्वरोजगार की योजनाएं बढ़ती हैं, गांव और शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास होता है, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाती हैं। जहां यह आम जन को सीधा लाभ देती है, वहीं सरकार को भी इससे कुछ लाभ होते हैं। जनगणना सरकार के लिए नीति निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है। सरकार को देश की वास्तविक जनसंख्या का पता चलता है। योजनाओं के लिए बजट, संसाधनों का सही वितरण तभी संभव हो पाता है। विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करने में सहायता मिलती है और इसके अलावा आर्थिक और सामाजिक नीतियां प्रभावी ढंग से बनाई जाती हैं, ताकि राष्ट्रीय विकास की दिशा तय करने में मदद मिल सके। श्रोताओं, हम कह सकते हैं कि जनगणना केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं, बल्कि देश के भविष्य की योजना तैयार करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह राष्ट्र निर्माण, विकास और जन कल्याण की मजबूत आधारशिला है। सही और सटीक जनगणना से सरकार जनता की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझ पाती है और उसी के अनुसार योजनाएं बनाती हैं। श्रोता मित्रों, आज आवश्यकता है कि प्रत्येक नागरिक जनगणना के महत्व को समझे और सही जानकारी देकर इस राष्ट्रीय कार्य में अपना योगदान दे। जनगणना जितनी सटीक होगी, देश का विकास उतना ही मजबूत और योजनाबद्ध होगा। श्रोताओं, जनगणना 2027 से संबंधित कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको आज कार्यक्रम में करवाने जा रहे हैं। हमारे साथ आज कार्यक्रम में हैं श्री राम नारायण सिंह, एडिशनल कलेक्टर रांची। तो लेते हैं इनसे जनगणना 2027 के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। श्रोताओं, आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं एडिशनल कलेक्टर रांची। सर का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूं कार्यक्रम में। नमस्कार सर।
2: हाँ नमस्ते, और सभी आपके श्रोताओं को भी नमस्कार।
1: सर, आज मुख्य रूप से कार्यक्रम में हम आपसे बातें करना चाहेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे जनगणना के संबंध में। जो जनगणना 2027 के लिए आरंभ की गई है और अभी तो ये प्रथम चरण की शुरुआत इसमें हुई है, तो जनगणना का क्या प्रमुख उद्देश्य है, ये हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे।
2: जनगणना का उद्देश्य सरकार के स्तर से जो हमारे देश के सभी आंकड़े हैं, डाटा है, उसको इकट्ठा करना होता है और उस डाटा का उपयोग विकास के कार्यों में किया जाता है। यही जनगणना का मूल उद्देश्य होता है, जो सामाजिक आर्थिक स्थिति को अंदाजा करते हुए और प्रत्येक 10 वर्षों में हमारा कितना विकास हुआ उसका अंदाजा करते हुए फिर आगे की रणनीति तैयार करने के लिए आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं।
1: इन आंकड़ों को आपने बताया सर कि विभिन्न योजनाओं के विकास के लिए इसको किया जाता है, तो आंकड़े जो एकत्रित किए जाते हैं तो विकास के क्या मायने हैं? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इन क्षेत्रों में भी इन आंकड़ों का उपयोग होता है?
2: विकास के सभी क्षेत्रों में इन आंकड़ों का उपयोग होता है और ये सरकार के स्तर से ही इसका उपयोग होता है, किसी निजी स्तर से इसका उपयोग नहीं होता है, सभी क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है।
1: इसमें अब बारी आती है सर ये जानने की कि जनगणना हमारे भारत वर्ष में, जैसा कि आपने कहा कि 10 वर्षों में ये कराया जाता है, तो हमारे झारखंड राज्य में अभी इसकी शुरुआत मैं देख रही हूँ कि हो चुकी है, प्रथम चरण की शुरुआत है, तो इसमें किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है?
2: यह हमारी 16वीं जनगणना है और स्वतंत्रता के पश्चात 8वीं जनगणना है। यह पूर्ण रूप से डिजिटल जनगणना है। इसका सभी लोगों का के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसमें डिजिटल प्रचार है और पंपलेट के माध्यम से एवं अन्य जो ग्राम सभा के माध्यम से सभी जगहों से इनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि जनगणना में लोग स्वयं भाग लें। इसमें इस बार महत्वपूर्ण ये है कि मैंने स्वगणना करना है, तो ये अभी जो चल रहा है 16 तक का चल रहा है, अब जो सेल्फ कर सकते हैं सभी व्यक्ति, और फिर 16 तारीख से उसका जो प्रगणक जो है जो सेल्फ करेंगे उसके फिर प्रगणक जाके उसका जांच करेंगे
1: जी। तो ये डिजिटल जनगणना के बारे में थोड़ी सी और जानकारी मैं आपसे चाहूँगी सर।
2: डिजिटल जनगणना ये एक भारत सरकार का पोर्टल है, sesensus.gov.in। इस पे आप जाएंगे और इसके बाद आपका एक मोबाइल से आपका OTP के माध्यम से लॉगिन होगा और उसके बाद उसमें प्रश्नोत्तरी आता है कि विभिन्न 33 तरह के प्रश्न हैं जिसका कि प्रश्नोत्तरी आता है और आप उन प्रश्नों को भरेंगे और वो फिर उसको इंटर कर देने से वो जनगणना हो जाता है, मतलब कि अभी मकान गणना जो हमारा चल रहा है, गृह गणना वो हो जाता है।
1: ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कई विवादित मामले लोगों के बीच में रहते हैं, जैसे घर को लेकर, परिवार को लेकर, और ऐसे में परिवार के कुछ सदस्यों का पलायन भी अन्यत्र हो जाता है, तो ऐसे में स्वगणना अगर लोग कर रहे हैं डिजिटल माध्यम से तो क्या प्रक्रिया हो सकती है? क्योंकि कोर्ट में भी बहुत सारे विवादित मामले चल रहे हैं, तो वैसी स्थिति में लोग क्या करें?
2: जनगणना से विवाद का कोई रिलेशन नहीं है। जनगणना तो जिसे आप एक व्यक्ति का अभी जो मान ले 2 मकान है 3 मकान है तो वो अपना डाल सकते हैं, किसी का कोई 1 मकान है कोई 2 मकान है कोई, तो वो सभी चीज़ उसमें डला जाएगा और उस परिवार के हेड का नाम डला जाएगा, यही जनगणना है। विवाद का किसी प्रकार का इसमें कोई कनेक्शन नहीं।
1: यानी कोई भी व्यक्ति घर बैठे डिजिटल माध्यम से 15 मई तक ये इस कार्यक्रम में भाग ले सकता है, अपना योगदान दे सकता है, स्वगणना कर सकता है जी। और डिजिटल माध्यम से तो आपने बताया सर कि 15 मई तक इसका समय निश्चित किया गया है, और ऐसे लोग कैसे और कब तक कर पाएंगे?
2: उसके बाद फिर 16 मई से 14 जून तक प्रत्येक मकान पे, प्रत्येक गृह पे प्रगणक जाएंगे और उसकी गणना करेंगे, जो 33 तरह के प्रश्न

0: ने डिजिटल मोड में ही, वो जो प्रगणक हैं वो डिजिटल मोड में ही कार्य करेंगे, कंप्लीट काम डिजिटल मोड में ही होगा।
1: सबसे पहले अब मैं ये जानना चाहूँगी सर कि इन जनगणना का हमारी सरकार को क्या लाभ पहुँचेगा, हमारी सरकार कैसे इससे लाभान्वित होगी?
0: ये जनगणना एक प्रक्रिया है जो लगातार चलते आ रही है और सरकार के द्वारा ही इसको कराया जाता है, और सरकार जो ये जो डाटा इकट्ठा होता है विभिन्न प्रकार के जो डाटा 10 वर्षों के बाद जो डाटा मिलता है, उस डाटा का इस्तेमाल सरकार अपने जो नागरिक है उसके उन्नति के लिए और जो हमारे देश के प्रगति के लिए उसका इस्तेमाल सरकार करती है।
1: सरकार के बाद अब मैं जानना चाहूँगी आम जन को इससे क्या फ़ायदा पहुँचेगा और क्या लाभ उनको मिलेगा?
0: आम जन को बहुत फ़ायदा होता है, जो जो हमारी नीतियाँ, जो हमारी सरकार की नीति, जो हमारे सरकार का जो फोकस होता है वो इन्हीं तथ्यों के आधार पर तय किया जाता है कि हमारा कौन क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, कौन क्षेत्र हमारा कौन समाज आगे है, कौन, ये इन्हीं आधार पर सरकार का फोकस तय होता है। तो उससे उस क्षेत्र के विकास में सहायता मिलती है। लोगों को चाहिए कि बढ़ चढ़ के इस जनगणना में भाग लें और उसको पूरा करें।
1: सर, इस जनगणना के आंकड़ों से हमारे शहरी और ग्रामीण जीवन जो विकास से काफ़ी प्रभावित होता है, तो इन्हें क्या लाभ पहुंच सकता है?
0: शहरी और ग्रामीण जीवन में भी इन आंकड़ों का उपयोग होता है। जब हम जो शहर के विकास को देखते हैं तो उसमें भी ये जो कलेक्ट डाटा कलेक्ट होता है उससे इसका फ़ायदा होता है।
1: सर, इस जनगणना में मीडिया भी अहम भूमिका निभा रही है, तो आप अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे कि मीडिया के बंधु इसमें कैसे अपना सहयोग दें?
0: मीडिया के बंधु इसमें अपना सहयोग देते भी हैं और हम लोग समय समय पर उनको बुला के जो जो जनता को सूचित करना है उनके माध्यम से सूचित करते हैं। मीडिया के बंधु लगातार इस पर अपना जो, चूँकि स्वगणना का मामला है तो स्वगणना करते हैं या अन्य भी जो लोगों तक सूचना देते हैं, जिससे कि हमारे जो प्रगणक जाते हैं तो उनको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, लोग उनको एक सरकारी सेवक के तरह व्यवहार करें। तो ये सारे सूचना मीडिया के माध्यम से ही जाती है और मैं अनुरोध करता हूँ कि इसको और विस्तार से मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया जाए, जिससे कि इसका सभी लोग इसमें अपना भागीदारी निभा सकें।
1: एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ उठता है सर कि जब जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लोग स्वगणना भी कर रहे हैं और बाद में आपने कहा कि अधिकारी गण भी घर घर जाकर इसकी गणना करेंगे, तो अगर मान लीजिए किसी से अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती है, इसमें कहीं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन चला जाता है, तो क्या इसकी भूल सुधार की भी कोई प्रक्रिया है?
0: जब आप स्वगणना करते हैं तो उसमें किसी प्रकार का अगर भूल हो जाता है तो वो रिपीट करने, उसको चेंज करने का है, लेकिन आप एक बार इंटर कर देते हैं तो पुनः वो नहीं हो सकता है, पुनः वापस नहीं हो सकता है।
1: क्या कुछ अधिकारियों को कुछ कागज वगैरह भी जमा करना है या फिर ऐसे ही वो सहज रूप से ये गणना हो जाएगी?
0: इसमें किसी प्रकार का कोई कागज जमा नहीं करना है, सभी डाटा डिजिटल मोड में ही जाएंगे, वो जो बताएंगे वो उतना ही वो सही होगा। इसलिए अनुरोध रहता है सभी लोगों से कि इसमें सही बात को ही बताया जाए
1: जी। और अंत में जो श्रोता अभी कार्यक्रम के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, उन्हें आप संदेश के रूप में क्या कहना चाहेंगे सर?
0: आपके सभी श्रोताओं से आग्रह है कि इस जनगणना में भाग लें, जो स्वगणना करें और रांची जिला को अग्रणी बनाएं।
1: सर, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त हमारे कार्यक्रम के लिए निकाला और श्रोताओं को इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी मतगणना से संबंधित दिया, धन्यवाद सर।
0: धन्यवाद आपको भी।
1: श्रोताओं, अभी हम कार्यक्रम आओ साथ चलें के तहत जानकारी ले रहे थे जनगणना 2027 के संबंध में, और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ थे श्री राम नारायण सिंह, एडिशनल कलेक्टर रांची। सर के द्वारा जितनी भी बातें बताई गई ये बेहद महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो इन बातों को आप ध्यान में रखते हुए थोड़ी जागरूकता, थोड़ी सहभागिता इसमें निभाएं और सहयोग करें। श्रोताओं, इस बातचीत के बाद अब सुनवाती हूँ एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अंत में आप सबसे बस यही कहूंगी कि जनगणना केवल लोगों की गिनती भर नहीं है, बल्कि यह देश की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण दर्पण है। इसी के आधार पर सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी और जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं को बेहतर ढंग से तैयार करती है। वर्ष 2027 की जनगणना आधुनिक तकनीकी, डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शिता के साथ देश के विकास को नई दिशा देने का माध्यम बनेगी। ऐसे में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी और सही जानकारी बेहद जरूरी है। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम जनगणना 2027 विकसित भारत की मजबूत आधारशिला में आपने जाना कि जनगणना केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि देश के भविष्य की योजना तैयार करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। सही जानकारी देकर हम न केवल अपने अधिकारों और सुविधाओं को मजबूत बनाते हैं, बल्कि देश के विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते हैं। इसी आशा के साथ कि आप सभी जनगणना 2027 में सक्रिय सहयोग देंगे, कार्यक्रम की सहयोगी सिंधु मिश्रा को अब दें अनुमति। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ साथ चलें। प्रस्तुति स्वर था सिंधु मिश्रा का और प्रस्तुति थी नूतन प्रसाद की।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए हम आपको संक्षिप्त जानकारी दे दें हमारे आज के सांध्यकालीन प्रसारण की। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 4:35 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। मुख्य समाचार आप सुन सकते हैं शाम 5:00। युवा श्रोताओं को संबोधित होगा कार्यक्रम युववाणी, जिसे आज प्रस्तुत करेंगे आद्या शक्ति और प्रज्ञा। प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की। समय होगा 5:02। 5:30 पर होगा हमारा औद्योगिक प्रसारण श्रमिक लोक। आज आप इस कार्यक्रम में सुनेंगे चर्चा संस्कृति की संवाहक आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे योगेश्वर राम और जया श्रीवास्तव। प्रस्तुति होगी प्रशांत गौरव की।

मुख्य समाचार अब सुन सकेंगे। शाम 5:06 बजे और 6:02 से आरंभ होगा हमारा ग्रामीण प्रसारण हमारी दुनिया और खेती बारी। पहले आप सुनेंगे खेती बारी और उसके बाद 6:30 से हमारी दुनिया। प्रादेशिक समाचार होंगे शाम 7:00 और 7:11 पर जिले में आजकल। 7:15 का समय होगा हमारे दैनिक प्रसारण आदिवासी अखड़ा के लिए, जिसे आज आप सुनेंगे उरांव भाषा में। प्रस्तुति होगी प्रदीप कुमार की। 7:45 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद और 8:00 से फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीकंधा। सुर्खियों में सुन सकते हैं 8:30 पर और 8:45 पर समाचार संध्या का आज का अंक। 9:00 News@9 और 9:15 से उर्दू में समाचार। इन्हें रिले करेंगे हम अपने दिल्ली केंद्र से।

पब्लिक स्पीक का समय होगा 9:30, इसे भी आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, और 10 बजे से होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनहरी यादें। 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत में वायलिन में राग श्याम कल्याण। कलाकार होंगे वीजी जोग। पुनः हिंदी में समाचार होंगे रात्रि 11 बजे, और 11:05 पर आप सुन सकते हैं समाचार अंग्रेजी में। मीडियम वेव पर हमारी सभा समाप्त हो जाएगी रात्रि 11:10 पर, लेकिन एफएम पर हमारे प्रसारण का आनंद आप सुबह 6 बजे तक उठा सकते हैं। तो श्रोताओं, ये था संक्षिप्त विवरण हमारे आज के संध्याकालीन प्रसारण का।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4:35 हो चुके हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम।

कार्यक्रम सांझ सरगम में आप सभी का स्वागत है। इस ढलती हुई सुनहरी शाम में हम समझते हैं कि आपको गीतों को सुनना काफी पसंद आता है, तभी तो हमारे कार्यक्रम में इस तरह से रखा गया है कि हर शाम आपकी सुनहरी हो जाए। हम हर दिन आपके लिए अच्छे अच्छे गीत लेकर आते हैं। आज भी उसी श्रृंखला में कुछ चुनिंदा गीतों को हमने आपके लिए चुना है। उम्मीद करते हैं कि आप उन्हें पसंद करेंगे। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं महालक्ष्मी अय्यर और लकी अली की आवाज में फिल्म सुर का ये गीत, जिसे लिखा है निदा फाजली ने और संगीतबद्ध किया है MM किरावनी ने। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

शाम ढले मेरी ज़िंदगी में आ जाना। सचमुच किसी का ज़िंदगी में आना काफ़ी सुखद होता है। अगर कोई इस सुरमय शाम में आपके साथ हो तो ये शाम और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी ना। आइए सुनते हैं फिल्म फुटपाथ का ये गीत तलत महमूद की आवाज़ में। मजरूह सुल्तानपुरी और अली सरदार जाफरी ने लिखा है इसे, जिसे संगीत से सजाया है खयाम ने।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे।

0: ಸ್ವಯಂ ಹಿ ಕಟ್ಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: कार्यक्रम सांझ सरगम में आपका एक बार फिर से स्वागत है. अब आइए हम आपको सुनाते हैं फिल्म सिलसिला का ये गीत, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में. हसन कमाल के बोल हैं और शिव हरि का संगीत.

अभी आप सुन रहे थे फिल्म सिलसिला का ये गीत, और इसके साथ ही कार्यक्रम सांझ सरगम यहीं समाप्त हुआ।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स तथा FM 100.5 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नक्सलवाद का अंत होने के बाद भी हमें चैन से नहीं बैठना है। छत्तीसगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह का हवाला देते हुए कहा कि अगले 5 वर्षों के भीतर सभी प्रभावित गांवों को जीवंत आदिवासी समुदाय में बदला जाएगा ताकि नक्सलवाद के कारण हुए नुकसान की पूरी भरपाई की जा सके। सरायकेला खरसावां में आज किसानों की समस्याओं और सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ भाजपा ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3200 रुपए प्रति क्विंटल करने और बकाया भुगतान की मांग को लेकर वीडियो के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। हजारीबाग के युवाओं की संस्था अर्थ एक प्रयास ने सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में चुप्पी तोड़ो अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत चूरचू प्रखंड के नगड़ी बिरहोर टोला में किशोरियों और महिलाओं को मासिक धर्म और व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना में पुलिस ने सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। SP अनुदीप सिंह ने बताया कि 5 बालिग आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है जबकि और 2 नाबालिगों को निरुद्ध किया गया है। देवघर में आज उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक हुई। उपायुक्त ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन और स्वास्थ्य सहायता योजना का लाभ 100% पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। पलामू के जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में आज उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने अवैध खनन पर सख्त निर्देश जारी किए हैं। अप्रैल माह में संयुक्त कार्रवाई के दौरान अवैध परिवहन में संलिप्त 50 से अधिक वाहन जब्त किए गए हैं और 32 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। इसके साथ ही अब तक

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 5:02 हो चुके हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। आज की युववाणी प्रस्तुत कर रही हैं प्रज्ञा क्रांति और आद्या शक्ति। प्रस्तुति है गौरव पांडे की।

0: हेलो दोस्तों, आज के युवाणी कार्यक्रम में मैं हूं आपकी दोस्त आद्या
1: और मैं आपकी दोस्त प्रज्ञा।
0: हम करते हैं आप सभी का स्वागत आपके अपने युवाणी कार्यक्रम में। आप सभी को हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार। दोस्तों, आज हम करेंगे आपसे ढेर सारी बातें और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी हम आपको देंगे और साथ ही सुनेंगे कुछ प्यारे प्यारे से गीत। आज 18 मई को हम मना रहे हैं इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन डे, जो हमें इस बीमारी के खिलाफ अवेयरनेस और रिसर्च की इम्पोर्टेंस समझाता है।
0: दोस्तों, इमेजिन करिए, आप बिल्कुल हेल्दी हों, फुल एनर्जी में हों, लेकिन धीरे धीरे आपकी बॉडी वीक होने लगे, छोटी छोटी बीमारियां भी आपको परेशान करने लगे और जल्दी ठीक भी ना हो। डरावना लगता है ना? यही होता है एड्स में।
1: बिल्कुल आद्या, एड्स यह एक गंभीर बीमारी है जो HIV के कारण होती है। ये वायरस हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को धीरे धीरे कमजोर कर देता है, जिससे शरीर छोटी छोटी बीमारियों से भी लड़ नहीं पाता है।
0: अब बात करें ये फैलता कैसे है। HIV मेनली इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड नीडल्स या सिरिंजेस और अनसेफ फिजिकल कॉन्टैक्ट के जरिए फैलता है।
1: लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात, ये छूने, गले मिलने, साथ बैठने या खाना शेयर करने से बिल्कुल भी नहीं फैलता।
0: बिल्कुल दोस्तों, एड्स आज भी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। लाखों लोग HIV के साथ जी रहे हैं, हालांकि अवेयरनेस कैंपेन्स और मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से हालत पहले से बेहतर हुए हैं।
1: हाँ, लेकिन अभी भी कई जगहों पर सही जानकारी की कमी है। सच ये है कि आज भी कई लोग एड्स के नाम से भी डर जाते हैं, लेकिन सही नॉलेज हो तो डर नहीं, समझ पैदा होती है।
0: आज मेडिकल साइंस काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। ऐसी मेडिसिन्स मौजूद हैं जो HIV को कंट्रोल में रखती हैं, जिससे इंसान नॉर्मल लाइफ जी सकता है।
1: लेकिन ट्विस्ट ये है, अभी तक इसका परफेक्ट क्योर या वैक्सीन नहीं है और इसी वजह से आज का ये दिन बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है।
0: बिल्कुल प्रज्ञा, ये दिन उन साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स के लिए है जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि एक दिन एड्स की प्रॉपर वैक्सीन बन सके और ये बीमारी पूरी तरह खत्म हो जाए।
1: तो दोस्तों, जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक हमारी सबसे बड़ी ताकत है अवेयरनेस एंड स्मार्ट चॉइसेस।
0: तो ये तो बातें हो गई हेल्थ अवेयरनेस से जुड़ी। अब बात करते हैं एक बेहद ज़रूरी टॉपिक पर। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे दिन की जो हमें हमारी पहचान से जोड़ता है।
1: दोस्तों, आज ही के दिन यानी 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे भी मनाया जाता है। म्यूजियम एक ऐसी जगह होती है जहां हमारे हिस्ट्री, कल्चर और हेरिटेज से जुड़ी चीज़ों को संभाल कर रखा जाता है।
0: ये सिर्फ पुरानी वस्तुओं का कलेक्शन नहीं बल्कि हमारी अतीत की कहानी होती है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है।
1: अच्छा आद्या, तुमसे एक ऑनेस्ट सवाल, आखिरी बार तुम म्यूजियम कब गई थी? मतलब सीरियसली एक्सप्लोर करने, बस घूमने नहीं।
0: गई तो हूँ प्रज्ञा, लेकिन सच कहूँ तो बहुत कम ही, और ऑनेस्टली जब भी गई जल्दी जल्दी देख के निकल गई, डिटेल में कभी भी समझा ही नहीं।
1: सेम हियर, हम सब म्यूजियम गए तो हैं लेकिन कभी उसे फील नहीं किया। हम बस देखते हैं पर समझने की कोशिश करते ही नहीं हैं।
0: बिल्कुल, और बचपन से ही हमें लगता है कि म्यूजियम यानी कि बोरिंग प्लेस, लेकिन सच कहा जाए तो म्यूजियम एक टाइम मशीन है
1: जहाँ बिना कहीं और जाए हम सेंचुरीज पीछे जा सकते हैं और अपने पास्ट को समझ सकते हैं। इजी लैंग्वेज में कहा जाए तो ये हमारी हिस्ट्री का लाइव वर्जन है।
0: लेकिन एक सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि आज के डिजिटल जमाने में जब सब कुछ गूगल पर है तो म्यूजियम जाने की क्या जरूरत है?
1: बिल्कुल, बहुत बड़ा फर्क है। ऑनलाइन हम बस इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, लेकिन म्यूजियम में हम उसे देखते, महसूस करते और कनेक्ट करते हैं।
0: और दोस्तों, अब तो म्यूजियम्स अपग्रेड भी हो गए हैं। अब वहाँ सिर्फ साइलेंस और बोर्ड्स नहीं बल्कि इंटरैक्टिव चीज़ें भी हैं, वर्चुअल डिस्प्लेस, ऑडियो गाइड्स, वर्चुअल एक्सपीरियंसेस। मतलब लर्निंग अब बोरिंग नहीं बल्कि एक फन एक्सपीरियंस बन चुका है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत का सबसे बड़ा और पुराना म्यूजियम कोलकाता में स्थित है?
1: बिल्कुल, तो दोस्तों हम कहेंगे कि अपनी हिस्ट्री को एक्सप्लोर करिए क्योंकि वहीं से हमें अपनी आइडेंटिटी मिलती है।
0: और अंत में मैं बस यही कहूंगी कि इस साल कम से कम एक म्यूजियम जरूर विजिट करें और इस बार थोड़ा टाइम देकर समझने की कोशिश भी करें।
1: चलो यहाँ लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: கட்டுப்பாடு பாரதிய சேனா.
1: दोस्तों चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इतिहास में आज का दिन क्यों है खास. 1974 में आज के दिन भारत ने राजस्थान

0: के पोखरण में अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था, जिसे स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम दिया गया और इसने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देशों में शामिल किया।
1: साथ ही 1933 में भारत के 11वें प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का जन्म हुआ था। उन्हें मुख्य रूप से एक धरती पुत्र और किसानों के मसीहा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, अब हम अपने प्रोग्राम के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आ गए हैं, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार रहता है।
0: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेजिंग फैक्ट्स की। तो आद्या, चलो अपने फैक्ट्स का पिटारा खोलते हैं और शुरुआत करते हैं उस चीज़ से जो हमें सबसे प्यारी है, नींद और हमारे सपने। क्या तुम्हें पता है कि हम जब गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो हमें सपने नहीं आते?
1: रियली प्रज्ञा, मैंने तो कभी इस फैक्ट पर ध्यान ही नहीं दिया था।
0: हाँ, चलो अब सपनों की दुनिया से बाहर निकलकर थोड़ी पढ़ने लिखने की बात की जाए। और जब बात पढ़ने की हो तो दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताब का जिक्र तो बनता है।
1: बिल्कुल, दरअसल इतिहास में एक ऐसी किताब है जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। इसका नाम है वॉयनिच मैनुस्क्रिप्ट। 15वीं सदी की इस किताब में ऐसी अजीबोगरीब भाषा, चित्र और लिपियां हैं कि दुनिया के सबसे बड़े कोड ब्रेकर्स और वैज्ञानिक भी आज तक इसका एक भी पन्ना डिकोड नहीं कर पाए हैं।
0: दोस्तों, किताबें तो पन्नों और स्याही से बनती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक ऐसी रहस्यमयी स्याही भी थी जो कागज़ पर दिखती ही नहीं थी?
1: वाओ प्रज्ञा, रहस्यमय किताब के बाद रहस्यमय स्याही।
0: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इनविजिबल इंक यानी अदृश्य स्याही की, जिसका इस्तेमाल प्राचीन काल में जासूस गुप्त संदेश भेजने के लिए करते थे। वो कागज़ पर नींबू के रस या सिरके से लिखते थे जो सूखने के बाद बिल्कुल गायब हो जाते थे। लेकिन ट्विस्ट ये है कि जब उस कागज़ को हल्की सी आग के गर्मी के पास लाया जाता था, केमिकल रिएक्शन की वजह से वो छिपे हुए शब्द अचानक भूरे रंग में चमकने लगते थे। है ना कमाल की लिखावट?
1: अमेजिंग। दरअसल दोस्तों, नींबू के रस में कार्बन कंपाउंड्स यानी कि साइट्रिक एसिड होते हैं। जब आप इसे कागज पर लिखते हैं तो सूखने के बाद यह पूरी तरह से रंगहीन हो जाता है, लेकिन जैसे ही कागज को हीट दी जाती है तो वो कार्बन कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं और उनका रंग बदलकर ब्राउन हो जाता है, जिससे लिखावट साफ हो जाती है।
0: एग्जैक्टली आत्या, और जब बात छिपे हुए राज और चमकने की आई है तो हमारी धरती का आसमान भी कम जादुई नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह भी है जहाँ कांच की बारिश होती है? अंतरिक्ष में एक ऐसा प्लैनेट है जिसका नाम HD189733b। यह दिखने में शांत नीले समंदर जैसा खूबसूरत लगता है, लेकिन असल में यहाँ सिलिकेट से बने बादलों के कारण शीशे यानी कांच की बारिश होती है, और वो भी 7000 किलोमीटर प्रति घंटे की जानलेवा रफ्तार से।
1: थैंक गॉड प्रज्ञा कि हम लोग अर्थ पर रहते हैं। वैसे हमारी धरती का आसमान भी कम जादुई नहीं है, खासकर तब जब वहाँ ऑरोरा चमकती है। ध्रुवीय इलाकों में आसमान जो हरी गुलाबी रोशनी से चमकती है उसे ऑरोरा कहते हैं।
0: पर क्या आपको पता है कि ये खूबसूरत सी रोशनी असल में एक शील्ड है? जब सूरज से आने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स हमारी धरती के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं तो यह रोशनी पैदा होती है, जो इस बात का सबूत है कि हमारी धरती हमारा बचाव कर रही है। ऑरोरा हमारी धरती के प्राकृतिक सुरक्षा कवच का सबसे शानदार प्रमाण है।
1: दोस्तों, हमें बातें तो आपसे और भी करनी है, पर उससे पहले ले चलते हैं आपको मनोरंजन की ओर और सुनते हैं एक और गीत।

0: चलो अब करेंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। आत्या, क्या तुम्हें पता है हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने के लिए भारत का पहला एल्गी ट्री स्थापित किया गया है?
1: हाँ प्रज्ञा, और साउथ कोरिया ने गाबी नामक अपना पहला मानवाकार यानी ह्यूमनॉइड रोबोट मॉन्क इंट्रोड्यूस किया है।
0: रोबोट मॉन्क, इंटरेस्टिंग। रोबोट से याद आया, भारतीय न्यायपालिका के डिजिटल आधुनिकीकरण के लिए वन केस वन डेटा पहल और एआई आधारित चैटबॉट सुसहायक को भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने लॉन्च किया है।
1: वहीं कृष्णा स्वामीनाथन को भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है।
0: हाँ, और वहीं मई 2026 में सोमा मंडल को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स 2026 से सम्मानित किया गया है।
1: साथ ही मई 2016 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले फंक्शनल पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन तेलंगाना के वारंगल में किया।
0: वहीं त्रिनिदाद और टोबैगो भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश बन चुका है।
1: दोस्तों, जाते जाते अब हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बिना फ्यूचर डेवलपमेंट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है।
0: जी हाँ, और वो टॉपिक है रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड्स एंड यूथ। दोस्तों, रिसर्च एक ऐसा फील्ड है जो सोसाइटी की ग्रोथ, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट का बैकबोन माना जाता है। और सबसे एक्साइटिंग बात यह है आद्या कि यूथ नेचुरली क्यूरियस होते हैं, इसलिए रिसर्च उनके लिए परफेक्ट फील्ड है।
1: अच्छा प्रज्ञा, सबसे बेसिक क्वेश्चन से शुरू।

0: दिमाग में वही पुरानी इमेज आती है, सफ़ेद लैब कोट पहने, चश्मा लगाए कोई गंभीर सा इंसान जो दिन रात टेस्ट ट्यूब लेकर बैठा हो।
1: पर दोस्तों, आज की रियलिटी बिल्कुल बदल चुकी है। आज रिसर्च का मतलब सिर्फ लैबोरेटरीज नहीं है।
0: एग्जैक्टली आद्या, आजकल तो नए नए सेक्टर्स आ रहे हैं, जैसे AI, डेटा साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी। ये सब पूरी तरह से रिसर्च ड्रिवन है। अगर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट है तो इन फील्ड्स में स्कोप ही स्कोप है।
1: और प्रज्ञा, एक और कमाल की फील्ड है जो हमारे यूथ को बहुत अट्रैक्ट कर रही है, और वो है साइकोलॉजी एंड बिहेवियरल रिसर्च। आजकल लोग मेंटल हेल्थ और काउंसलिंग को लेकर बहुत अवेयर हो रहे हैं। इस फील्ड में भी आगे बढ़ने के लिए और नए ट्रीटमेंट प्लान्स डिज़ाइन करने के लिए रिसर्च की बहुत ज़रूरत है।
0: आद्या, तुमने तो मेरे दिल की बात ही कह दी। काउंसलिंग और थेरेपी जैसे फील्ड्स में रिसर्च करके हम सोसाइटी में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। और सिर्फ साइंस ही क्यों, सोशल साइंसेज और हिस्ट्री में भी रिसर्च के इतने बेहतरीन एवेन्यूज़ खुल गए हैं। हमारे देश का जो रिच कल्चर और इतिहास है, उस पर नए पर्सपेक्टिव से रिसर्च करना भी आज के यूथ्स काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो आद्या, चलो अब अपने दोस्तों को ये बताते हैं कि यूथ के लिए रिसर्च आखिर क्यों इम्पॉर्टेंट है।
1: देखो, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि रिसर्च से क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन स्किल्स डेवलप होती हैं।
0: हाँ, और इसके साथ ही यूथ को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के इंटर्नशिप्स, फेलोशिप्स और हायर स्टडीज़ के अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलते हैं।
1: इसके अलावा यूथ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जैसे वाटर स्कार्सिटी, मेंटल हेल्थ, विमेन सेफ्टी जैसे इश्यूज़ को साइंटिफिकली सॉल्व करने में रोल प्ले कर सकते हैं।
0: और मुझे ये भी लगता है कि रिसर्च यूथ को इंडिपेंडेंट थिंकर बनाती है। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन कंज्यूम नहीं करते बल्कि क्रिएट भी करते हैं।
1: प्रज्ञा, अगर तुम्हें एक फील्ड चूज करना हो रिसर्च के लिए तो वो क्या होगा?
0: आई थिंक बिहेवियरल साइंस। मुझे समझना पसंद है कि लोग कैसे थिंक करते हैं, रिएक्ट करते हैं और सोसाइटी किस तरह चेंज होती है।
1: दैट्स इंटरेस्टिंग। मेरी तरफ से मैं AI एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च चूज करूंगी, बिकॉज फ्यूचर लार्जली टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा और AI के एथिकल यूज पर काम करना मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है।
0: एग्जैक्टली, यही डाइवर्सिटी यूथ को रिसर्च के लिए परफेक्ट बनाती है। अलग अलग इंटरेस्ट, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स। दोस्तों, आपसे बातें तो और भी करनी थी, पर क्या है ना, वक्त का थोड़ा तकाजा है, तो लेते हैं आपसे विदा। हम फिर मिलेंगे ढेर सारी जानकारियों के साथ। तब तक अपनी दोस्त प्रज्ञा
1: और आद्या
0: को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है हमारा औद्योगिक प्रसारण श्रमिक लोक, जिसे आज प्रस्तुत कर रहे हैं योगेश्वर राम और जया श्रीवास्तव। प्रस्तुति है प्रशांत गौरव की।

0: नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम श्रमिक लोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर शाम की तरह आज की शाम हम हाजिर हैं। मैं हूं जया।
1: और मैं हूं योगेश्वर। आप सभी को मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जी हाँ श्रोता मित्रों, ये आदर्श वाक्य है आकाशवाणी का, जो अपनी स्थापना का 90 गौरवशाली वर्ष पूरा कर जश्न मना रहा है।
0: जन जन की वाणी आकाशवाणी, जी हाँ, 8 जून सन 1936 को स्थापित यह राष्ट्रीय प्रसारक देश के 90% हिस्से तक पहुंचता है और 23 भाषाओं और 179 बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है। आकाशवाणी का भारत का सबसे पुराना और विश्वसनीय सार्वजनिक सेवा प्रसारक है योगेश्वर।
1: साथियों, 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का आधिकारिक नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR कर दिया गया।

0: यह ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण के इतिहास में एक विशेष क्षण को दर्शाता है।
1: और साथियों, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सिद्धांत पर चलते हुए इसने देश के कोने कोने तक मनोरंजन, शिक्षा और समाचार पहुंचाने का काम भी किया है।
0: यह विभिन्न समुदायों को जोड़ते हुए लोक कला, संगीत और संस्कृति का संरक्षण कर रहा है।
1: और आज डिजिटल युग है योगेश्वर, आप देख रहे हैं, इस डिजिटल युग में भी एफएम प्रसारण और विविध माध्यमों से आकाशवाणी देश की जनता से जुड़ा हुआ है। जी हाँ साथियों, आकाशवाणी जहाँ आवाजों को पंख मिले हैं और इतिहास को एक माइक मिला है, इन शांत दीवारों से ऐसी गूंज निकली है जिसने एक ऐसे राष्ट्र को आकार दिया जो तब से लेकर आज तक अपने भावपूर्ण और अविस्मरणीय बना हुआ है। अभी तक
0: आकाशवाणी इस विशाल देश में प्रत्येक निवासी को विभिन्न विभागों में 24 घंटे सातों दिन सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचार और विचार उपलब्ध कराने का प्रयास करता है।
1: और योगेश्वर, आकाशवाणी सिर्फ एक समाचार माध्यम नहीं बल्कि भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का सबसे बड़ा संवाहक है।
0: और अगर हम आकाशवाणी रांची की बात करें तो रांची आकाशवाणी ने स्थानीय कला, संस्कृति, मुंडारी, संथाली जैसी जनजातीय भाषाओं और संगीत परंपरा को संरक्षित करने में प्रमुख योगदान भी दिया है।
1: और ऐसे अगर देखा जाए तो हमारे आकाशवाणी से सुबह से लेकर रात तक बहुत सारे प्रोग्राम प्रसारित किए जाते हैं और हर वर्ग के ध्यान पे रखकर हम प्रोग्राम प्रसारित करते हैं। जैसे अभी हम अपने श्रमिक भाइयों के लिए प्रोग्राम प्रसारित कर रहे हैं, अगर हम हफ्ता में अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए भी प्रोग्राम प्रसारित करते हैं, शैक्षिक प्रसारण होता है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए भी जीवन धारा से प्रोग्राम आते हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है जो शिक्षा प्रद है।
0: और महिलाओं के लिए भी
1: गृह लक्ष्मी
0: कार्यक्रम, जहाँ की घर की महिलाएं काम करते हुए आकाशवाणी से कार्यक्रम को सुनती है और बहुत सारी जानकारी हासिल करती है, मनोरंजन भी करते हैं।
1: और आज भी जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में से लेकर महानगरों तक आकाशवाणी देश की सांस्कृतिक धड़कन के रूप में अपनी विश्वसनीय भूमिका निभा रहा है योगेश्वर।
0: तो चलिए साथियों, हम सभी मिलकर आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष पूरे होने का जश्न मनाते हैं और फिलहाल अभी सुनते हैं एक प्यारा संगीत।

0: हाँ योगेश्वर, बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुनवाया तुमने हमारे श्रमिक साथियों को, और हमें लगता है हमारे जो श्रमिक साथी होंगे ना, जो भी थके हारे आए होंगे, बिल्कुल इस गीत को सुनकर बिल्कुल फ्रेश तो हो गए होंगे।
1: बिल्कुल सही कहा जया। और चले कुछ आज हम खास बातें करते हैं, और खास बात यह है कि आज 18 मई है।

0: है ना?
1: जी हाँ
0: और साथियों, आज के दिन हर साल मनाया जाता है विश्व एड्स टीकाकरण दिवस।
1: जी हाँ साथियों, HIV एड्स के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि विश्व एड्स टीकाकरण दिवस है।
0: और इस दिवस का उद्देश्य HIV एड्स के बारे में जनता को जागरूकता बढ़ाना और इसे रोकने के लिए टीके की तत्काल आवश्यकता पर बल देना है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और यह टीके के अनुसंधान में जो भी नवीन प्रगति और मौजूदा चुनौतियों पर ध्यान आकर्षित करता है, जिससे जनता में जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। यानी कि आज के दिन का ये मेन मकसद होता है कि एक ऐसे टीका का यानी वैक्सीन का हमें इजाद करना है जो इस को पूरे मतलब जड़ से खत्म किया जाए, इस बीमारी को।
0: बिल्कुल, इस समस्या का समाधान हो सके इसके लिए टीकाकरण एक बेहतर विकल्प है। साथियों, विश्व एड्स टीकाकरण दिवस उन शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, चिकित्सा पेशेवरों, स्वयंसेवकों और अधिवक्ताओं की प्रतिबद्धता का सम्मान और स्मरण करता है जो एक सुरक्षित और प्रभावी HIV टीका बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं।
1: योगेश्वर, और साथ ही साथ साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये जो एड्स से आज हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है। और इस बीमारी के प्रति अज्ञानता के कारण समाज में HIV को संक्रमित लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, उन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता है।
0: बिल्कुल, भेदभाव तो कहीं नहीं करना चाहिए जिया, क्योंकि भेदभाव करने से जो है व्यक्ति के अंदर जो है हतोत्साह की भावना आती है और वह और भी बीमार पड़ जाता है। उस व्यक्ति को मनोबल बढ़ाना चाहिए ताकि वह रोग से लड़ सके और जो दवाइयां चिकित्सक के अनुसार चल रहा है उसे नियमित लेना चाहिए ताकि जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके।
1: और हमें ये समझने और दूसरों को समझाने की ज़रूरत है योगेश्वर, कि HIV छूने के साथ या बैठने से या एक साथ भोजन करने से नहीं फैलता है।
0: यह मुख्य रूप से संक्रमित रक्त, असुरक्षित शारीरिक संबंधों और संक्रमित सुई के इस्तेमाल से फैलता है।
1: इसलिए हमें अपनी सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत है। हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार व्यक्ति से नहीं। बस छोटी छोटी सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है, जैसे कि अगर आप इंजेक्शन या किसी अन्य कार्य के लिए हमेशा नई सुई का ही इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। और यदि आपको कभी भी किसी रक्त की आवश्यकता होती है ना, तो हमेशा प्रमाणित और लाइसेंस प्राप्त ब्लड बैंक से ही रक्त लें।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यदि आपको लगता है कि आप किसी भी रूप में संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं तो तुरंत अपना HIV टेस्ट जरूर करवाएं। यदि आप किसी भी कारण से वायरस के संपर्क में आ भी गए हैं तो 72 घंटे के भीतर डॉक्टर से संपर्क करके PEP से पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस दवाएं ले सकते हैं जो संक्रमण को रोक सकती है।
1: तो दोस्तों, कभी आप घबराएं नहीं, समय पर इलाज करवाएं और एक लंबा समय आप आराम से सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो आज मेन मकसद है कि हमें इसे जड़ से खत्म करने की ज़रूरत है।
0: बिल्कुल। और जिया, अभी वर्तमान में जो समस्याएं हैं उसे भी आप देख रहे हैं और वह समस्या है गर्मी के दिनों में जल संकट की। और ये समस्या आज की नहीं है बल्कि ये प्रत्येक वर्ष की समस्या है। और इस समस्या से निपटने की जो उपाय है उसे अपनाने की ज़रूरत है। तो चलिए आज हम बातें करते हैं जल संकट का उपाय, जल संरक्षण के बारे में। और इस बारे में हमें जानकारी देंगे वरुण श्रीवास्तव।
2: जल को जीवन का पर्याय कहा जाता है। यह पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, परंतु हम आज एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां जल जो कभी सहजता से उपलब्ध होता था अब संकट का विषय बनता जा रहा है। जल संकट न केवल वर्तमान प्रभावित कर रहा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। धरती पर जल संकट व्याप्त है, शायद मानव की बुद्धि समाप्त है। पानी की बूंद बूंद की भी बच जाए तो बचा हुआ पानी भी पर्याप्त है। यह पंक्ति जल की संकट की विभीषिका को बयां कर रहा है, क्योंकि औद्योगिकरण एवं विकास की राह पर बढ़ती दुनिया में जल संकट कोने कोने में पसर चुका है, जिसने अब विकराल रूप ले लिया है। निसंदेह दुनिया विकास के मार्ग पर अग्रसर है, लेकिन स्वच्छ जल मिलना कठिन हो रहा है। एशिया में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से लेकर अफ्रीका, केन्या, इथोपिया, सूडान और इजिप्ट जैसे देश जल संकट से जूझ रहे हैं। जल संकट क्या है? एक क्षेत्र के अंतर्गत जल उपयोग की मांगों को पूरा करने हेतु उपलब्ध जल संसाधनों की कमी को ही जल संकट कहते हैं। विश्व के सभी महाद्वीपों में रहने वाले लगभग 2.8 बिलियन लोग प्रत्येक वर्ष कम से कम एक महीने जल संकट से प्रभावित होते हैं। लगभग 1.2 बिलियन से अधिक लोगों के पास पीने हेतु स्वच्छ जल की सुविधा नहीं होती है। जल संकट की वैश्विक स्थिति पर विचार करते हैं। पृथ्वी का कुल जल संकट का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि कुल जल का 97.3% खारा जल है और पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल 2.07% ही शुद्ध जल है, जिसे पीने योग्य माना जाता है। अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो दुनिया के 2 अरब लोगों को पीने के लिए स्वच्छ जल नहीं मिल पाता है, जिससे उन्हें हैजा, आंतशोथ आदि जानलेवा बीमारियों के होने का खतरा रहता है। भारत में जल संकट की स्थिति इस पर विचार करते हैं। भारत में लगभग 2 वर्षों से कमजोर मानसून के कारण 330 मिलियन लोग या देश की लगभग 1/4 जनसंख्या गंभीर सूखे से प्रभावित है। भारत के लगभग 50% क्षेत्र सूखे जैसी स्थिति से जूझ रहे हैं। विशेष रूप से पश्चिम और दक्षिणी राज्यों में जल संकट की गंभीर स्थिति बनी हुई है। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2030 तक भारत में जल की मांग उसकी पूर्ति से लगभग दोगुनी हो जाएगी। आपको यह भी बता दें कि देश में वर्ष 1994 में पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 6000 घन मीटर थी, जो वर्ष 2000 में 2300 घन मीटर रह गई है और अनुमान यह भी है कि 2025 तक घटकर 1600 घन मीटर रह जाने का अनुमान है। आज स्थिति यह हो गई है कि कुछ इलाकों में लोगों को प्रतिदिन कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। कुछ स्थानों पर तो पानी पैसे से भी अधिक कीमती हो गया है। ग्रामीण इलाकों में पानी सूख रहे हैं, नदियों का जलस्तर घट रहा है और भूजल भंडार तेजी से खाली हो रहे हैं। भारत में जल संकट के कारण क्या हैं? भारत में जल संकट की समस्याओं को मुख्यतः दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी भागों में इंगित किया गया है। इन क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर कम वर्षा होती है। चेन्नई तट पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं हो पाती है। इसी प्रकार उत्तर पश्चिम में मानसून पहुंचते पहुंचते कमजोर हो जाता है, जिससे वर्षा की मात्रा घट जाती है। भारत में मानसून की अस्थिरता की जल संकट का महाकारण है। हाल के वर्षों में एलनीनो के प्रभाव के कारण वर्षा कम हुई, जिसकी वजह से जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। श्रोताओं, जल संकट के और भी कारण हैं, जो प्राकृतिक के साथ साथ मानव निर्मित भी हैं, जैसे जल का अत्यधिक दोहन। हमने बिना सोचे समझे जल का अत्यधिक दोहन किया है, चाहे खेती के लिए हो, उद्योगों के लिए हो और घरेलू जरूरतों के लिए हो। हमने अंधाधुंध जल का उपयोग किया है, लेकिन उसके पुनर्भरण पर ध्यान नहीं दिया। वर्षा जल का अपव्यय। भारत में कुल वर्षा का लगभग 80% भाग कुछ ही महीनों में होता है। यदि हम इस जल को संरक्षित न करें तो वह व्यर्थ बहकर समुद्र में चला जाता है। दुर्भाग्यवश हमारे देश में जल संचयन की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। वनों की कटाई और शहरीकरण। वन हमारे जल स्रोतों के प्राकृतिक रक्षक हैं। पेड़ों की जड़ जल को जमीन में संग्रहित करने में मदद करती हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई और तेज शहरीकरण ने प्राकृतिक चक्र को बाधित कर दिया है। साहित्यकार श्री शिवनारायण निर्मोही जी की इस पंक्ति से मैं आपको आगाह करना चाहूंगा कि इनके कटे तो कुदरत की सौगात जाएगी, कि रंगीन नजारों से भरी रात जाएगी, कि रेत ही रेत नजर आएंगे हिंदुस्तान में, जब देखते ही देखते बरसात जाएगी, कि नाश आ रहा है पास चेत जाइए, धरती की जान पेड़ है घर घर लगाइए, धरती की जान पेड़ है घर घर लगाइए। जहाँ दोस्तों जल संरक्षण में ये वृक्षारोपण पौधारोपण अवश्य करें तो यह बहुत बड़ा कदम होगा। प्रदूषण, नदियों, झीलों और अन्य जल स्रोतों में उद्योगों के अपशिष्ट रसायन, प्लास्टिक, घरेलू कचरा डालने से जल प्रदूषित हो गया है। साफ पानी की उपलब्धता घटती जा रही है। बदलते मौसम का चक्र, अनियमित वर्षा और ग्लोबल वार्मिंग ने जल संकट को गहरा दिया है, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों पर भी नजर डालें। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार भारत के बड़े शहरों जिनमें दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में 2030 तक भूजल समाप्त हो सकता है। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार भारत जल संकट जोखिम वाले देशों में सबसे ऊपर है। आज भी हमारे देश में लगभग 60 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में जल संकट से जूझ रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि जितना पानी हम एक दिन में इस्तेमाल करते हैं उसका अधिकांश भाग व्यर्थ चला जाता है, जैसे नल खुला छोड़ देना, लीक होते पाइप, असमर्थित सिंचाई प्रणाली, ये सब हमारी आदतों का हिस्सा बन गए हैं। सरकार और समाज ने इस दिशा में कई प्रयास किए हैं, जैसे जल जीवन मिशन। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर में नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत वर्षा जल संचयन, पाइपलाइन मरम्मत, जल संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। अटल भूजल योजना, भूजल स्तर में गिरावट को रोकने के लिए अटल भूजल योजना लागू की गई है। इसका उद्देश्य सहभागिता के साथ भूजल के संरक्षण और प्रबंधन में बढ़ावा देना है। नमामि गंगे, गंगा नदी के पुनरुद्धार के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें गंदे नालों को रोकना, जल शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित करना और जल जागरूकता फैलाना शामिल है। कई स्थानों पर सामाजिक संस्थाएं और स्वयंसेवी समूह भी वर्षा जल संचयन, तालाबों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण अभियान में सक्रिय हैं। श्रोताओं, केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। सरकार के भरोसे न रहकर हमें व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्तर पर भी जिम्मेदारी उठानी होगी, तभी हम किसी योजना को सफल बना सकते हैं। अब प्रश्न उठता है, हम व्यक्तिगत स्तर पर क्या कर सकते हैं? तो आइए कुछ सरल एवं प्रभावी उपायों पर विचार करें। पानी का मितव्ययी उपयोग करें। ब्रश करते समय नल को खुला ना छोड़ें। बर्तन धोते समय, कार धोते समय कम से कम पानी का उपयोग करें। वर्षा जल संचयन करें। अपने घरों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करें। आने वाले अपने जन्मदिन, अपने मैरिज डे पर एक पौधा अवश्य लगाएं। इससे भूजल स्तर बढ़ने में मदद मिलेगी। रिसाइकल और जल का पुनः उपयोग करें। जहां संभव हो जल का पुनः उपयोग करें, जैसे पौधों को नहाने या बर्तन धोने के पानी से सींचा जा सकता है। झारखंड में जल संकट उतनी भयावह नहीं है, क्योंकि यहां काफ़ी संख्या में प्रकृति में झरना, नदी, तालाब दे रखे हैं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या उतनी गंभीर नहीं है, मगर प्रकृति के दोहन की वजह से शायद आने वाले दिनों में जल संकट की स्थिति यहाँ भी उत्पन्न हो सकती है। वैसे रांची में जल संकट की समस्या गर्मियों में अब दिखने लगी है। राजधानी रांची में गर्मी के कारण अब भूजल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है। इस कारण शहर के विभिन्न मोहल्ले के लोग प्रभावित हो रहे हैं। जल संकट का सबसे ज्यादा असर रांची के स्वर्ण जयंती नगर मधुकम पर पड़ा है। इस मोहल्ले में घरों की संख्या 800 के करीब है और इनमें से 750 से अधिक घरों की बोरिंग पूरी तरह से सूख गई है। वहीं जिन घरों से पानी निकलता भी है तो वह सुबह के समय केवल आधा घंटा के लिए, इसके बाद दिन भर पानी नहीं आता। वैसे अगर निगम की ओर से टैंकर की व्यवस्था की गई है। झारखंड में जल संकट को देखते हुए झारखंड सरकार ने सुजलाम सुफलाम योजना की शुरुआत की है। झारखंड सरकार ने जल शक्ति अभियान को प्रयास तेज किया है। वर्षा जल संचयन एवं जल संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर जल शक्ति का खाका तैयार किया गया है। आपको बता दें कि जल शक्ति मंत्रालय की ओर से शुरू किए इस अभियान में पूरे देश में धनबाद को प्रथम स्थान मिला है। दूसरे नंबर पर तेलंगाना का महबूब नगर है। आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में जल संरक्षण के लिए रांची के

0: और मांझी प्रखंड के आरा केरम गांव का उदाहरण देकर देश के सामने उनकी काफी प्रशंसा की और ग्रामवासियों को धन्यवाद दिया। मेरी ओर से भी आरा केरम गांव के वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे झारखंड सरकार द्वारा संरक्षित जल और बेहतर कल के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन और वाटर मैनेजमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। जल संकट एक चेतावनी है और एक ऐसा चेतावनी जिसे गंभीरता से लेना अनिवार्य है। हमें यह याद रखना है चाहिए कि हम जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आइए हम सब आज प्रण लें कि जल की एक बूंद का मूल्य समझेंगे और उसे बचाएंगे, आने वाली पीढ़ियों को एक जल संपन्न भविष्य देंगे। हर छोटा प्रयास, चाहे घर पर नल बंद करना हो, वर्षा जल संचित करना हो या अपने आसपास के जल स्रोतों की रक्षा करना, एक परिवर्तन ला सकता है। जी हाँ, इस सोच एवं विचार के साथ आपसे विदा ले रहे हैं कि जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, जीवन है तो ये पर्यावरण है, पर्यावरण से ही धरती है और इस धरती से हम हैं।
1: श्रोता साथियों, इसी के साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। इसी कार्यक्रम में होगी फिर मुलाकात। तब तक के अपने मित्र योगेश्वर
2: और जया को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। शाम के 6 बजे हैं, प्रस्तुत है मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन और बकाया वेतनमान का लाभ नहीं मिलने पर राज्य सरकार के प्रति कड़ी नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने निर्देश दिया है कि आगामी 22 जून तक पेंशन और 5वें से 7वें वेतनमान का बकाया भुगतान सुनिश्चित किया जाए। ऐसा न होने पर उच्च शिक्षा निदेशक का वेतन रोक दिया जाएगा। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत आज बाबा नगरी देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा वैद्यनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। देवघर आगमन पर जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे ने उनका स्वागत किया। भाजपा नेत्री सीता सोरेन ने आज दुमका के फूलोझानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल परिसर में पसरी गंदगी और कुव्यवस्था को देखकर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को तुरंत बदलने की मांग की है। गढ़वा में जिला प्रशासन की ओर से आज से सप्ताह भर चलने वाले जनजातीय गरिमा उत्सव और जन भागीदारी अभियान की शुरुआत हो गई है। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने समाहरणालय में कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि सबसे दूर सबसे पहले नीति के तहत समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। खूंटी के बरसा कॉलेज में आज टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा जिला टॉपरों को सम्मानित किया गया। फाउंडेशन ने CSR के तहत कॉलेज को करीब 60 लाख रुपए के डेस्क बेंच भी उपलब्ध कराए। कार्यक्रम में सांसद कालीचरण मुंडा और टाटा स्टील के उपाध्यक्ष DB सुंदरम मौजूद रहे। हजारीबाग के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त हेमंत सत्ती ने आज कोलघट्टी स्थित EVM वेयरहाउस का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने EVM और VVPAT मशीनों की सुरक्षा, CCTV निगरानी और रखरखाव की व्यवस्था का जायजा लिया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। शाम के 6:02 हो चुके हैं। आरंभ होता है हमारा ग्रामीण प्रसारण। पहले सुनिए खेती बारी, उसके बाद आप सुनेंगे हमारी दुनिया। आज कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं सुनैना कुमारी और पूनम पुष्पा मिंज। प्रस्तुति है इसके लाल की।

0: गाछ लगाओ पर्यावरण बचाओ खेती बाड़ी कार्यक्रम सुनो या सब भाई बहन मन के सुनैना बहन बटले जमा जमा जोहार और पूनम बहन और कहूँ जोहार
1: जोहार सुनैना बहन और सब सुनैया भाई बहन मन के पूनम बहन बट से भी जोहार
0: कहो का हाल चाल है
1: एकदम हाल चाल तो सब बहुत बढ़िया है सुनैना
0: तो और दिस्ते में दिशा थी कि देख के भी लागत है कि एकदम मन पूरा हरियर है और आपने भी गोटा हरियर
1: हाँ मौसम भी तो इतना बढ़िया हो जाए
0: है, साथे है तो हरियर
1: गरम गरम कर मौसम और देखो कि इतना एकदम ठंडा
0: हाँ
1: मतलब
0: ठंडा गरम ठंडा मतलब पहिल बेरा में तो मुरुख रौद गरम से परेशान और फिर देखो एकदम सुपर तनी ठंडा होते होते तनी पानी भी आवत है तले गोटा काया गतर मने एकदम ठंडा
1: लेकिन लेकिन बहन ये जो ठंडा गरम जो हुआ थे नी सेकरे चलते हमार हालत भी कटे गड़बड़ात है सर्दी बुखार मन धरत है
0: हाँ, तो हमरे के ऊपर से बचे का दरकार है ये नहीं कि पानी आ गया मुरुख तखन गरम लागत रहे खन पानी चलो भिंजब ओसन भी ना के करे बचे खाए है कि नहीं ना ही ज्यादा गरम में रौद में रहे खाए ना ही ज्यादा पानी में रहे
1: खाए
0: अगर कहीं जात ही रौरे रौद है तो छाता मन के धैर के निकले
1: धैर के निकले है कि नहीं दूसरी बेला तो पानी
0: छाता मतलब सुपर काम करे अच्छा बहन हम देख लिए तखन छोट छोट छगरी मन के बकरी मन के ढेरे को एकदम सुपर बांध बांध के लेगत हैं तो हम वह सोच ली कि गेली हम ले छगरी मन के कहाँ लेगत है मैं छोट छोटी मन के बेचे लेगत है कि का करत है तो पूछ ली मन के आयदा ये छगरी कहाँ से लाना थे सो तो बेचे लेगत है इसकी कैसे तो कहा थे कि नहीं मैं अखन तो काम मन भी जल्दी नहीं भेटा रहा नौकरी चाकरी मने तो हमरे इखे जन पोस के अपन जीविका मतलब कैसनो में चला थी तो घर में और छगरी मने हैं तो हमरे बकरिये पालन करी ले
1: देखो बहन जे हमरे खेती हर आदमी मन ही हमरे खेती बाड़ी तो करबे करी ला और खेती के साथ में अगर हमरे पशुपालन कर थी छगरी पटरू पोसा थी मुर्गा मुर्गी पोसा थी तो हमारे लगिन बहुत फायदा है एक तो खेती हाँ खेती लगिन रौरे के खादो भेटाए जाई और ऊपर से जे हमें पशुपालन कर थी पटरू छगरी जे भी पोसा थी से कर से अलग से आमदनी
0: आमदनी होवा थे उकस तो हमरे मन देखा थे घन छुआ पोता मन के पढ़ाए लिखाए घर कर सब खर्चा पानी दवाई दारू सब उकर से होवा थे जिंदगी मने नहीं तब सब कुछ देखो एखन उ कहला को दादा की हमरे कर तो एखन छगरी मने एक ठो सेबरा कीन रही और उकरे से एखन बढ़ते बढ़ते हमरे कर कितना कितना कह रहे 15-16 गो हो गए
1: हाँ तो छगरी छगरी पटरू तो जल्दी बढ़
0: करे ना कि ये वाला अखन नया नस्ल कर है के तो से लेके लेगा थे और दाम भी हमरे के सुपर भेटायला और इकरे में हमरे घर गोटा परिवार निर्भर है अखन अखन छगरी भी है संगे संगे देखो अथी का कहे ना मुर्गी मन भी है हमले पा अगर आई दादा तो गाय भी रखो तो दूध पिए रखी
1: एकदम एकदम
0: तो रोबे का हम पे के हमले बा
1: और अगर घर के नजदीक अगर पतरा है चाहे जंगल है तब तो सोने पर सुहागा है
0: हाँ,
1: है
0: नहीं किया किया लोग के रहती है
1: सोच के
0: चारा उके भेटाए जाए हां
1: चारा भेटाएला बढ़िया से डहुरा पतरा सब चीज भेटाए
0: सब चीज
1: और उसन में छगरी मन ने एकदम बढ़िया एकदम बढ़े ना
0: तब
1: और वो क्वालिटी है मतलब जे उकर जे क्वालिटी जे रहेला सो बढ़िया रहेला
0: नहीं अगर
1: हाइब्रिड वाला नहीं रहेला एकदम बहुत बढ़िया
0: अगर उकर देखभाल उकर देखभाल रोरे अच्छा से कर ली ने तो एकदम मैं तो कहो जैसन कहले कि एक ठोसे एखन 16 गो हो गेल तो अगर उकर देखभाल बढ़िया से कर ली जैसे कि हमरे भी अपन छुआ मन कर कैसन देखभाल करे ला गोटा एकदम जीव जान लगा के सेहत है हमरे घर पशु मन के भी देखे कर दरकार है वो तो हम बोलता मन है कहनी से ले अगर उनका देखभाल अच्छा से करा थे तो के तब तो रौर के वो देबे करे फायदा
1: एकदम एकदम तो बढ़िया आमदनी
0: हाँ, तो चलो तब हमरे कर सब किसान भाई बहन मन जैसे अपनाए हैं एकदम बकरी पालन के सेहत हमरे के भी करे के बहन है कि
1: एकदम एकदम
0: और कार्यक्रम के भी आगे बढ़ा के नहीं तो खाली छगरी पटरू हमरे करते रह बोलते हमरे का भाई बहन ये दे ले
1: समय के बिता दे
0: अरे ढेर दिन बाद भेटाल से ऐसे
1: नहीं होगा
0: तो चलो कार्यक्रम हमरे आगे बढ़ाए ला और एक और करेला कृषि गीत से है कि नहीं जिके गाए हैं मुकुंद नायक और संगी मन
1: ले तब
2: सुनहु किसान भैया।

0: तो एखन हमरे नागपुरे में कृषि गीत सुनत रही जे के गा रहे मुकुंद नायक और संगी मन बहिन और गीत तो सुपर नगद रहे नी। अब यह गीत कर संगे हमरे के जानकारी भी करे है।
1: हाँ बहन, तो आज हमरे जानकारी करब कि गर्मी कर मौसम में जो दुधारू पशु मन है उकर हमें प्रबंधन कैसे करब और इकर बारे में बताबे डॉक्टर भरत महतो और बतियाबे संजीव कुमार लाल।
2: किसान साथियों जोहार नमस्कार। किसान साथियों अभी समय है गर्मी का, गर्मी शुरू हो चुकी है और ऐसे में हमारे पशुओं को भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। हमारे गाय में भैंसों में दूध उत्पादन की कमी देखने को मिल जाती है और पशु सुस्त भी रहने लग जाता है और बीमार भी हो जाता है। तो इन सारे विषयों पर आज हम बात करेंगे कि गर्मियों में दुधारू पशुओं का प्रबंधन किस प्रकार करें ताकि सही से दूध उत्पादन ले पाएं, पशु हमारे बीमार नहीं हो और यदि बीमार हो तो उसके लक्षण क्या है ताकि समय रहते उसका उपचार करें और बढ़िया उत्पादन हम अपने पशुओं से ले पाएं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक डॉक्टर भरत महतो साहब। डॉक्टर साहब स्वागत है।
3: जी किसान भाइयों नमस्कार।
2: डॉक्टर साहब गर्मी दस्तक दे चुकी है और इसमें जो हमारे दुधारू पशु हैं उसकी देख रेख कैसे करें, प्रबंधन किस प्रकार करें?
3: जी हाँ किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अभी गर्मी का मौसम आ चुकी है, इससे मनुष्य का जनजीवन तो थोड़े अस्त व्यस्त होता ही है, हमको भी विभिन्न प्रकार के प्रबंधन करने पड़ते हैं। उसी तरह से हमारे पशुओं में भी, विशेष करके हमारे दुधारू पशु हैं जैसे गाय भैंस, उसमें भी कहेंगे तो जो संकर नस्ल के गाय हैं या भैंस जो अधिक दूध देती हैं, उन सबों पर इस गर्मी का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उसके शरीर की जो क्रियाएं हैं वो अलग अलग तरह से काम करने लगती हैं। सभी क्रियाएं कहें तो शरीर की जो उपापचय क्रियाएँ हैं काफ़ी प्रभावित रहती हैं, जिसके कारण उनका उत्पादन बहुत नीचे आती है। इससे किसान भाइयों को काफ़ी आर्थिक हानि हुई का सामना करना पड़ सकता है। तो इन सब बातों को अगर हम छोटे छोटे वैज्ञानिक प्रबंधन पर ध्यान देंगे तो हम जो ये गर्मियों के मौसम में पशुओं से जो हमें हानि होती है उसको हम बहुत हद तक इतिहास कहते हैं उसको पाट सकते हैं। तो किसान भाइयों इसको हम लोग जानने के लिए पहले छोटे छोटे लक्षण को जानते हैं। इसमें सबसे पहले आता है कि जो हीट स्ट्रेस या जो लू लगने की जो संभावना होती है ये सबसे अधिक ये प्रबल होता है। खासतौर से किसान भाइयों ऐसे तो ये सभी प्रकार के पशुओं में होता है, जैसे मनुष्य में हुए या पशु के सभी तरह के प्रजातियों में, गाय भैंस भेड़ बकरी मुर्गियों, ये सभी तरह के चीजों पे पाया जाता है। पर सबसे अधिक प्रभाव हमारे दुधारू पशुओं में, खासतौर से संकर नस्ल के पशुओं में इसका और भैंसों में इसका प्रभाव अधिक पड़ता है। इसका प्रभाव देखने के लिए लू लगने का जो लक्षण होते हैं मुख्य रूप से थोड़ा बहुत तो जानना ही चाहिए। जैसे होता है कि सबसे पहले वो पशु में सांस की दर बढ़ जाती है, सांस तेजी से लेने लगते हैं, मुंह खोल के सांस लेंगे, कभी कभी वो जीभ निकालते हैं, आसपास के जगहों को चाटने लगते हैं, बुखार हो जाता है, खाना पीना घट जाता है, बेचैन रहते हैं पशु। तो इसके कारण क्या होता है, अल्टीमेटली हमारा जो उत्पादन है पशु का वो प्रतिदिन का उत्पादन घट जाता है। कभी कभी काफी तेज बुखार होने के कारण जानवरों की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस तरह के चीजों, यही सेम जो लक्षण हम अभी गायों के लिए बात कर रहे थे, ये भैंसों में भी दिखता है, बकरियों में भी इस तरह की प्रभाव दिखेगी। तो इन सबों का एक प्रभाव से बचने के लिए इसमें कई तरह के ऐसे प्रबंधन होते हैं। तो पहले हम लू लगने वाले की अगर बात करते हैं तो इसके साथ साथ आप देखेंगे इसमें, ये तो हम बात कर रहे थे लू लगने वाले प्रभाव का, इसके साथ क्या होता है ना कि इसमें प्रजनन क्षमता भी घटती है, पशुओं का जो प्रजनन क्षमता होता है ना ये भी काफ़ी घट जाता है। और उसमें जो रोग से लड़ने की क्षमता भी, जैसे ये लू की असर होता है तो उसमें रोग से लड़ने की क्षमता भी घटती है, तो तरह तरह की बीमारी भी आने की संभावना बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों इन सबों का प्रबंधन के लिए भी हमको थोड़ा थोड़ा चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत होती है। जैसे हम बात कर रहे थे लू लगने की, अभी जो हीट स्ट्रेस की है सबसे बड़ी समस्या अभी के समय में यही आएगी। तो इससे बचाव के लिए सबसे पहले आप सभी तरह के किसानों की बात करें, जो गांव स्तर में कर रहे हैं या जो छोटे स्तर में कर रहे हैं या जो बड़े स्तर में कर रहे हैं, सभी को इस तरह के प्रबंधन पे ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। जैसे गांव में हम करते हैं तो उन सबों पर यह ध्यान रखें कि जो हमारे पशु आवास बने हुए हैं उन सबों पर जो अभी गर्म हवा के जो झोंके पड़ रहे हैं ये सीधे तौर पे पशु आवास पे ना आ पाए, इसका आप ध्यान विशेष करके रखेंगे। और अगर आप अपने आवास के ऊपर में कोई एस्बेस्टस या टीना का छत वगैरह लगा रखे हैं तो उसके ऊपर में कोई मोटी परत, अगर 2 से 3 इंची का कोई घास फूस या पत्तों का भी नहीं होता है तो कोई बोरे या फटे पुराने कपड़े भी ऊपर दे दें तो उसका असर को थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं। साथ साथ जो खिड़की दरवाजे आप हवा के लिए छोड़े हुए रहते हैं उन सबों में फटे पुराने अगर बोरे आपके पास होते हैं वह रखें, नहीं तो कोई कपड़े आजकल सस्ते दामों में पर्दे भी आते हैं, उन सबों को देख के आप दो से तीन बार अगर भिंगा देते हैं तो उससे जो हवा अंदर आएगी उसमें नमी भी रहती है अलग, और अंदर का जो अपशु आवास का जो अंदर का भाग है ना उसको ठंडा करने में काफ़ी मदद मिलती है। इससे आप थोड़ा बहुत गर्मी से निजात पा सकते हैं। साथ साथ तो आप दूसरा प्रबंधन आपको करने की जरूरत पड़ेगी पीने के पानी पर। पीने के पानी एक जान भाइयों, ऐसे हम एक बार नाद में दे देते हैं तो यहाँ का जो वातावरणीय तापमान है उसको लेके पानी काफ़ी गर्म हो जाता है, तो उससे बचाव के लिए

0: कोशिश करें कि अपने जो पीने का पानी पशु को दे रहे हैं वो साफ तो रहे ही, साथ साथ 2 से 3 बार आप उसको बदल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आपके पास पानी माने धोने के लिए, पशुओं को धोने के लिए अगर पानी उपलब्ध है तो कोशिश करना चाहिए कि पशुओं को 2 या 3 बार आप धो दें दिन में, तो ज़्यादा अच्छा होता है। जो अच्छे फार्म होते हैं, जो ऑर्गेनाइज फार्म होते हैं, जिन सेक्टर्स में जो अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, वहाँ पर तो हम फोगर का भी इस्तेमाल करते हैं या हाई स्पीड वाले जो फैन होते हैं, जहाँ पर मॉइस्चर को भी मेंटेन करता है साथ साथ टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, इस तरह की व्यवस्था भी हम लोग करा सकते हैं। कहीं कहीं कूलर जो अच्छे संसाधन जिनके पास है वे ही इस तरह के चीज़ें पर जाएँ, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, थोड़ी सी पैसों का लागत भी और थोड़ा सा अधिक होने लगता है, तो इससे आपका जो लाभांश है वो भी घटने की संभावना रहती है। तो छोटे छोटे प्रबंधन को आप देखें, अधिकतर समय पे पशुओं को आप छाया पे रखें, अगर आपको इस तरह की व्यवस्था नहीं है तो पेड़ का जो घना घने पेड़ों की छाया होती है वहां पर भी आप दोपहर का समय में पशुओं को खोद सकते हैं। जो किसान भाई चराने के लिए ले जाते हैं अपने पशुओं को, वो थोड़ा सा जल्दी जैसे ही धूप तेज होने लगता है तो आप उसको घर में ले आए, और जो सेकेंड दूसरे बेला में भी जो चराने के लिए ले जाते हैं उनको भी कोशिश यही रहना चाहिए, जैसे जैसे सूर्य की किरण की तीव्रता मतलब तीक्ष्णता कम होती है उसके बाद ही अपने पशुओं को घर से बाहर चराने के लिए ले जाएं। तो ऐसे करके आप लू से बच सकते हैं। और किसान भाइयों, अगर किसी कारण से लू लग जाती है तो आप जितनी जल्दी हो सके उनको इलेक्ट्रोलाइट, बहुत सारे पशुओं के लिए भी आते हैं और नहीं होता तो आप घर में भी जैसे आप नमक गुड़ जैसे पौधों को घोल के या सोडा इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके बहुत हद तक उससे आप मैंने उसकी जो प्रभाव है उसको कम कर सकते हैं। और अगर ये भी ना बुखार आ रहा है, खाना पीना काफी छोड़ दिया है, उत्पादन घट गया है, तो आप जितना जल्दी हो सके पशु चिकित्सकों से संपर्क करें। वहां पर बहुत समय ऐसा होता है कि उनको नस में पानी भी चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, तो जिससे आपके पशुओं को जो जान माल की क्षति होने वाली है उससे आप बच सकते हैं। तो ये रही किसान भाइयों लू से लगने की बातें। ऐसे भी जो अभी गर्मी के दिनों में जो हमारा एक है, तो साधारणतः जो किसान भाइयों को प्रबंधन करना चाहिए उसमें सबसे पहले जैसे अभी हम आवास की बात कर रहे थे, आप सब आवास पे बात पे जरूर जाएं। इसके साथ आता है दूसरा जो जगह लेता है वो होता है आहार प्रबंधन। यहाँ पर पशुओं का आहार ऐसे भी घट जाती है, और अगर आप यहाँ पे जो रेसे युक्त आहार ज्यादा देते हैं तो उनके शरीर में ऊष्मा अधिक जनरेट होता है, इससे शरीर का जो तापमान है उसके नियंत्रित करने की जो पद्धति होती है वो भी उसको पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाता और पशुओं के शरीर का तापमान अधिक बढ़ने लगता है। तो आप किसान भाई कोशिश करें यहाँ पर कम रेसे वाले जो आहार हैं उनके पास जो चारा है उसका प्रयोग करें, और हरा घास अगर ज़्यादा मिल पाता है तो अधिक से अधिक आप हरा घास दें, क्योंकि उसमें नमी माने जो मॉइस्चर की मात्रा रहती है कहीं कितनों भी कम रहे तो 70 से 80% तक होती है, खाने के साथ साथ उसके शरीर में पानी की भी मात्रा जाती है, तो इससे वो लू से बच सकते हैं। जो किसान भाई के पास ये हरा चारा उपलब्ध नहीं है और सूखा चारा ही खिलाना है तो कोशिश करें आप रात को सूखा चारा अधिक खिलाएं दिन की अपेक्षा। किसान भाइयों जो संकर पशु संकर नस्ल की गाय पाले हुए उनमें दूध उत्पादन अधिक लेने की भी एक हमारी बाध्यता रहती है, तो उसको बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं ना कि वो दाना मिश्रण पर अधिक जोर देते हैं, तो दाना मिश्रण को भी थोड़ा सा आप और सघन बना सकते हैं, उसकी जो डेंसिटी है उसको आप बढ़ा सकते हैं, जैसे प्रोटीन रिच कर सकते हैं, थोड़ी उसमें मिनरल मिक्सचर की मात्रा जनरली हम लोग 2% तक देते हैं, तो आप उसको 3 से 4% तक मिनरल मिक्सचर को भी ले जा सकते हैं। जैसे कोई अगर रिकमेंडेशन किसी गाय के लिए अगर आप दे रहे हैं 30 से 40 ग्राम तो इन सबों में जो 2 महीना अभी जो अप्रैल और मई का समय चल रहा है यहाँ पे आप 50 से 60 ग्राम भी बड़े पशुओं को दे सकते हैं। जो हमारे देसी पशु हैं उन पे आप 30 40 ग्राम दे सकते हैं, साथ साथ विटामिन की मात्रा विशेष करके विटामिन और प्रोबायोटिक की मात्रा अगर आप नहीं देते हैं तो खाने के साथ साथ में कुछ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मल्टीविटामिन्स और प्रोबायोटिक्स, कहने का मतलब बहुत सस्ते आते हैं प्रोबायोटिक्स भी जानवरों के लिए, उन सबों को भी थोड़े बहुत देते हैं तो उनका पेट रूमेन का जो इकोलॉजी है रूमेन का जो वातावरण है उसको अगर हम सही बनाए रख सकते हैं तो ऐसे समय में जानवरों में एसिडिटी नहीं होगी, पाचन क्षमता बनी रहेगी, तो बाकी सब चलता रहेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे इन सबों का प्रबंधन अगर आप करते हैं तो उनकी जो प्रजनन क्षमता भी है ना वो भी बनी रहती है। नेक्स्ट में आप दूसरा जाते हैं कि अगर किसान भाइयों इस समय पे मेस्टाइटिस होने की, जो खासतौर से हीट मेस्टाइटिस की हम बात करते हैं इस सीजन पे, जो थनेला रोग जिसको कहते हैं थनेला रोग होने की भी संभावना काफी होती है, क्योंकि बाहर में देखेंगे कि आप जो मक्खी मच्छर ये जो बाहरी परजीवी हैं इनकी संख्या काफी बढ़ जाती है, खासतौर से रक्त चूसने वाले मक्खियां वो जिसमें अठेल कहते हैं जिसको टिक्स होती है उनकी संभावना ज्यादा हो जाती है, मच्छरों की रात को काफी ज्यादा हो जाती है, तो ये बढ़ने के कारण पे हमारे पशुशाला में जो दूसरे कीटाणु होते हैं, यंत्राणु होते हैं, उनकी भी संख्या बढ़ते लगती है। ऐसे स्थिति में थन में भी इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है, तो आप मेस्टाइटिस पर विशेष ध्यान देंगे। जैसे ही आपका कुछ भी अगर दूध में बदलाव आता है, जैसे शुरू में थन फूल जाता है, थन का दूध का दूध में जैसे छटके आने लगते हैं, दिक्कत पानी आने लगता है या खून दिखने लगता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप जितना जल्दी हो सके डॉक्टर से परामर्श लेके आप मेस्टाइटिस का कंट्रोल के लिए दवा चलाना शुरू करेंगे। नहीं तो ये क्या होता है कि मेस्टाइटिस में धीरे धीरे पूरा थन बेकार हो जाता है और गाय आपकी बड़ी होने के बावजूद भी आप दूध नहीं ले पाएंगे, तो ये स्थिति किसानों के लिए काफी हानिकारक होता है। साथ किसान भाइयों, जो इस समय पे अगर हम बीमारी से बचाव की भी कुछ बात कर लें, तो विशेष करके आप अगर HSBQ का टीकाकरण नहीं करा पाए हैं तो HS और BQ का भी टीकाकरण अवश्य करा लें। इसके अलावा आप खुरा चपका के भी होने की भी संभावना रहती है। तो किसान भाइयों, जो आपने विशेष करके संकर नस्ल के पशुओं में अगर खुरा चपका का टीकाकरण नहीं करा पाए तो बहुत देर नहीं है, इन सबों को सालों भर में किसी भी महीना पे आप शुरू करा सकते हैं। तो यहाँ पे आप FMD मतलब खुरा चपका का टीका आप जरूर कराएं, साथ साथ HSBQ की कंबाइंड टीका आती है, मिश्रित टीका आती है, जिसमें HS और BQ दोनों बीमारी का मिला हुआ टीका होता है, आप उसको भी दे सकते हैं। और इस स्थिति में आप देखेंगे अगर बहुत गर्मी से आने के बाद पशुओं को अचानक आप ठंडा पानी पिला देते हैं तो आफरा जैसी बीमारी भी होने की संभावना रहती है, जिसको आप पेट में गैस होने की तरह से जानते हैं। तो इन सब बीमारियों का भी ध्यान रखेंगे। जैसे ही इस तरह के लक्षण आते हैं आप जितनी जल्दी हो सके पशु चिकित्सक से संपर्क करेंगे, तो आप अपने इस गर्मी के मौसम में पशुओं में होने वाली जान माल की क्षति को भी बचा सकते हैं, साथ साथ इसके आपके उत्पादन में जो दुष्परिणाम प्रभाव होता है उसको भी आप बचा सकते हैं।
1: जी, तो किसान साथियों, यदि इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं जैसा डॉक्टर भरत महतो ने बताया, तो आपकी पशु स्वस्थ रहेगा, बढ़िया दूध उत्पादन दे पाएगा और इस गर्मियों में कोई बीमारी नहीं हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भरत महतो, वैज्ञानिक दिव्यान कृषि विज्ञान केंद्र रांची, आज आप इस कार्यक्रम में, बहुत बहुत आभार।
0: नमस्कार।
2: तो एखन हमारे जानकारी करत रहे कि गर्मी में दुधारू पशु मनकर कातर प्रबंधन करल जाए सके, इके बतात रहे विशेषज्ञ डॉक्टर भरत महतो और इनकर से बातचीत कर रहे संजय कुमार लाल।
3: बहुत बढ़िया जानकारी रहे बहन, और अब मन कर अति कटिक रिज रंग भी कर लेती
2: एकदम। नहीं बहन देखो, काम कर संगे संगे नहीं रिज रंग होल से नहीं थकान कर पता नहीं चले
3: एकदम,
2: काम सपोर्ट एकदम हो जाए। चलो
3: चलो, तो कृषि गीत है शहाबुद्दीन अंसारी और संगीत बनकर कावल गीत है।

0: तो रोरेदम सुपर जो गाड़ी के रहे ने
1: एकदम एकदम हाँ।
0: कृषि गीत नागपुरी में जिके गाय रहे शहाबुद्दीन अंसारी और संगी मन ने
1: और इकर साथे खेती बाड़ी कर रही है सिरायला और अब हमरे और करेला
0: हमारी दुनिया करने तो एक बार हमारी दुनिया कार्यक्रम सुनिए सब भाई बहन मन कर फिर से स्वागत है और कर भी स्वागत है बहन
1: एकदम एकदम बहन रोर होकर स्वागत है
0: हाँ एकदम समय के हमरे के बड़े ध्यान देवे खनी
1: हाँ एकदम
0: देखो कोनो भी काम अगर हमरे समय से रे करी लनी तो हमरे के सफलता भेटायला
1: एकदम
0: और वह काम के ढील देव हमरे मने जा अरे करबे करब नहीं छोड़ निकाल कर परसु करब नहीं ओसन कर करे ना के हमरे के जे काम के तनिक देरी में करे खा सके एखन करो जेके काल करे खा सके आइजे करो
1: एकदम एकदम
0: नहीं तब
1: हाँ और समय सन है एकदम गतिशील है
0: एकदम
1: समय कहियो नहीं रुकेला ऊ चलते रहेला
0: नहीं रुके बहन
1: और रुकी तो हम रहे रुक जाब
0: रावरे रुक जाब लेकिन समय नहीं रुके जे घड़ी है नहीं टुक टुक टुक चलते है रहला ने
1: एक और हमरे के समय के साथ है आगे बढ़े के और अगर हमरे समय के साथ है अगर चलब और मेहनत करब तो कोई भी मुसीबत हमर सामने नहीं आवी और मुसीबत आवी भी तो टिके नहीं पारी और हमरे उके सफलता पूर्वक उकर सामना हमरे कर सकेला
0: सहेले तो एखन हमरे दुई जन ई जगह भेटा ही नहीं तब समय के ध्यान नहीं देते रोले हे बाबा के खन जाब जाओ तब तोहरे तो पीछे रहा समय तो बात चलते रहत लगने ये समय के हमरे ध्यान दिली से लेखन ई जगह ही बहिन और अच्छा से हमरे एकदम भेटा ही और काम मन करत है नहीं तब
1: और समय से नहीं बहन की हाँ? पैसा से भी बगरा कीमती है
0: एकदम सुपट कहती बहन
1: पैसा के तो अगर हमरे हिजवाए भी देब तो उके दोबारा हमरे कमाए सकेला लेकिन अगर
0: समय के पर गवाए देब नहीं तो फिर उस समय के हमरे नी लाने पारब नहीं तब
1: बीतल समय, समय के कहियो नहीं लौटेला
0: जाने खे हमरे के और ओहे समय कर संगे हमरे के चले खे
1: और बहन इसन भी बात है कि अगर समय हमर जान भी बचाए देवेला
0: एकदम एकदम सुपर
1: अगर समय से अगर कुछ दुर्घटना हो जाते अगर समय से हमरे उके अस्पताल नहीं पहुंचाती तो एक दो मिनट एक दो सेकंड लगे ना आदमी कर जान भी चल जाए सेकर चलते आदमी के समय कर कीमत के बुझे चाहिए
0: से ले कहल जाएला नहीं कि समय कर सही सदुपयोग करो है कि नहीं
1: एकदम एकदम और ये भी कहल जाए है कि समय सफलता कर कुंजी
0: लागे
1: और जे भी आदमी जे सफल हुई है जे समय कर कीमत के बुझ है और उकर उपयोग सही समय पर कर रहे हैं से चलते उमन कहां सफल भी हुई है
0: तो बहन गोट तो हमरे कर चलते रहे नहीं लेकिन तने गीत गोविंद भी हॉल से मजा लगा
1: एकदम हां
0: तो चलो तब हमरे एगो पच परगनिया लोकगीत सुनिले जे के गाए सुभाष कोरी और संगी मनी तब
1: लाए तब

0: गावल रहे।
1: हाँ बहन, ये तो गीत हो गेलक गीत गोविंद कर संगे संगे हमरे के जानकारी भी करे है कि नहीं। तो चलो हमरे पचपरगनिया में एक वाता सुनीला कि पचपरगनिया भाषा कर संस्कार गीत गाते रहे हो वेला सके। इके बतात है वार्ताकार डॉक्टर अंबिका स्वासी।
2: पांच परगना क्षेत्र ऐतिहासिक झारखंड प्रदेश रांची जिला के कुरूप बटे खाना महान बसल सिल्ली बुंडू बरेंदा राहे आर तमाड़ मिलकन पांच परगना कहायला। इस क्षेत्र टा भाषा साहित्य और संस्कृति के नजर महान महत्वपूर्ण है के इस क्षेत्र महान आर द्रविड़ और अग्ने तीन रकम के भाषा कहल जायला। खास करकन इस क्षेत्र महान कहल जाए वाला भाषा टाके पंचपर्गनिया भाषा के नाम महान जानल जायला। पंचपर्गनिया वासी झारखंड राज्य के अलावा बाहर राज्यो चाइरो बटे छित्री जाए हैं। पांच परगना महान बसल असंतो सब रकम के जायत गिला रहेला आर सब के अपन अपन भाषा आहे। होलो उमन पंचपर्गनिया भाषा टाके संपर्क भाषा के रूप में व्यवहार करेला। पंचपर्गनिया कोनो जायत विशेष कर भाषा ना लगे, इटा तो हिया के रोहिया गिला के संपर्क भाषा है के जेटा किसिम किसिम जायत गिला के बोली गिला के भाषा होय कौन बनल जाए एक अल्लाह भाषा है के। पंचपर्गनिया आर्स परिवार के भाषा है के हिया के अन्य भाषा गिला के रकम इकरो सही मूल्यांकन नहीं होया है। पंचपर्गनिया भाषा पांच परगना के सदान गिला के मातृभाषा है के आर आदिवासी गिला के संपर्क भाषा है के हिया के सब परगना के राजा गिला राजभाषा के रकम व्यवहार करत रहे। पंचपर्गनिया भाषा के अच्छे भाणार अपन तहां सुरक्षित आहे, यही कारण है के कि हिया बैसल आदिवासी आर आदिम जाति के खातिर इटा मातृभाषा के रूप माने व्यवहार होयला। पुरना युग लेके पंचपर्गना लोक साहित्य के अंतर्गत हिया के संस्कार गीत अपन लय आर गति महान फरत फुलते रहे, मिंतु पंचपर्गनिया संस्कार गीत के विपुल भाणार हिया हुआ चित्रल आहे। ऐसे तो प्रचलित संस्कार 16 किस्म के आहे, मिंतु भिन्न भिन्न ग्रंथ गिला महान उगलाक संख्या भिन्न भिन्न आहे, मिंतु एखन के युग महान ई संख्या टके मानल जाय आहे। काहे कि पांच परगना महान भिन्न भिन्न किस्म के जायत गिला रहेला आर उमन के भिन्न भिन्न संस्कार आर लोकाचार आहे आर उमन अपन अपन संस्कार गिला के बेस रकम निभाएला। जेकर महान सबलेख प्रमुख तीन संस्कार है, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार आर मरण संस्कार। इकर संगे संगे ई संस्कार गिला लगातार चलेला। जन्म संस्कार छोटी नामकरण मुजुठी मुड़न पैता कानवेदना एमएन ओहे रकमे विवाह संस्कार महान कन्या देखा लगन हरदी तेल माड़वा माटी सहा तेल सहा आम मुकुल एमाइन अंतिम संस्कार महान मरण संस्कार घाट करम सरात करम एमाइन। पांच परगना महान मनाल जाए वाला संस्कार महान मात्र बिहा संस्कार के रही गीत पवायला। जन्म संस्कार और मरण संस्कार के कोनो रकम के गीत के प्रचलन हिया नहीं पवायला। पांच परगना महान जन्म संस्कार और मरण संस्कार के नियम गिला तो करल जायला, मिंतु उगला के कोनो गीत नहीं पवायला। बिहा संस्कार के गीत भरल पड़ल है। असल महान बिहा एक सामाजिक संस्कार है के आर इटा एकटा सामाजिक जरूरत है के वंश बढ़ा लेकर मानुष धर्म के पालन करना ई संस्कार टाकर उद्देश्य के ओहे ते हैं। पंचपर्गना क्षेत्र महान किसिम किसिम के जायत गिला रहेला आर सब के भिन्न भिन्न रीति रिवाज आहे। होलो एकटा जिनिस समान भावे मिलेला आर उटा है के पंचपर्गना बिहा गीत। इटा महान कन्या पक्ष आर वर पक्ष के भिन्न भिन्न गीत है जेटा के हमरे हिया के संस्कृति के नाम महानो जानीला। पांच परगना महान कन्या पक्ष महान बिहा के प्रथम अनुष्ठान आदिवासी लेख होयला। अलग अलग जायत महानो इटा के अलग अलग ढंग महान कहेला, केउ तो पान चंदन केउ कन्या देखा लगन बिहा के ठीक 3, 5, 7 चाहे 9 दिन पहिल निभाल जायला आर पंचपर्गनिया बिहा गीत के प्रचलन हिया लेके शुरू होयला। ई गीत गिला बहुत ही मार्मिक होयला। ई गीत गिला महान जहाँ बेटी के प्रति अलग होय केर दर्द माए बाप के होयला, हुआ बेटी के हृदय माए बाप संग लेक भिन्नु होय के दर्द महान छटपटाए लगेला। एकटा ई गीत टाके देखू। बेटी ऊपर कुल ही नानो बेटी खेले जावे आवत तो ससुरारी लोगो रे, माँ गो आवे दे माँ ससुर घर एक लोगो के डोली चापी जाऊ गो, बेटी तोहे तो बेटी डोली चापे जाओ बे काके देखी रहमू गो, माँ गो मरे लखे दादा बहु आनो बे ताके देखी रहबे गो। ई गीत रखे अर्थ है के की बेटी तो एबार ऊपर कुल्ही खेले ना जाबे, काहे की ओहे डोहर लेके तो ससुर घर के लोग गिला आबोए। तखन बेटी कहेला ससुर घर आवला के आए दिन मा मोए पालकी महान चाइब कोन ससुर घर चल जामु। फिर माए हारी सवाल करेला बेटी तोय तो बेटी पालकी महान चाइब कोन ससुर घर चल जाबे, तखन माए के देख कोन रहमू। तखन बेटी कहेला माए तोय मोर रकमे दादा के खातिर পুতৌলে আনবে আর ওকে দেখবে। এই গীতটা হাসি আর দুঃখের মেশাকষা গীত হেকে।

0: बाटे जहां माय हारी के बेटी के छिनगे के दर्द आहे तो दोसर बाटे बेटी के पालकी चापे खुशी। प्राय देखल जाय है कि पंचपर्णी अभिया संस्कार गीत गिलाए प्रत्येक नेक महान गीत गीत गायक के प्रथा आहे और अतिक गीतो मौजूद है। लगन अनुष्ठान महान गीत गायक एकटा गीत के झलक टके देखे पारा जेटा महान बेटी के विवाह के खातिर कार को खुशियाली है। चार कोना कोना पोखरे मा फुटल सालू के फूल कोन फुटे लगन धरा ऐसो है कुटुम्बेर बेटा वैसो विधि साले हो लगन रु लेहु गोपान कोन फूले लगन धरा कोन फूले बिहागो कोन फूले हो तो विदाई सालू फूले लगन धरा आकन फूले बिहागो परास फूले हो तो विदाई। की गीत महान सवाल जवाब दुयो लुकोल है संगे संगे इटाए लगन अनुष्ठान के गीत है के सवाल है के पोखर के चाइरो कोना महान सालू फूल फुटल है कौन फूल महान शुभ लगन बांधाल जाय उकर बादे दामाद जी के जे कुटुम के बेटा है के उके इशारा कर कौन मारवा महान हाकाल जायला आर पान आर सुपारी झोंके कहल जायला। सवाल है के कौन फूल महान लगन बांधायला कौन फूल लेक बिहा होयला आर कौन फूल महान विदाई होयला। जवाब है के सालू फूल लगन बांधायल जायला आकन फूल महान बिहा होयला आर परास फूल महान विदाई होयला। इसने लगन के गीत के बाद लगातार हरदी लगाए के गीत माड़वा गाड़े गीत माटी सहा गीत पानी सहा बारात पर छे गीत कांकन बांधे गीत महुल बिहा के गीत गहना चढ़ाए गीत विदाई गीत और आखिर महान सॉन्ग छाड़ा गीत के प्रश्न होयला। ई सब गीत गिला कोनो गीत आघू पिछू नाई गीत काल जायला यही रकमे बर पछ बाटे के नेक नियम होयला। लगन के दिन लेके बिहा गीत के प्रचलन है ई पछ के गीत मानव जन जीवन के झलक स्पष्ट भावे देखे पवायला लगन के ई गीत टाके देखे पारा। सोने केरा अमरी रे अमरी रूपे केरा लगन के बार तहाँ चढ़ी वैसे वर रे कुंवर माँ ही वैसे ही लगाए उठुगो बेटा जागुगो बेटा लगन लेहुगु अपान अर्थात जहाँ सोना के घर आहे और चांदी के द्वार उकर उपरे चेघल कोनो कुंवरा बेटा बैसल है कोनिया के घर ले लगन आनल बादे माय हारी उके जगायला और लगन के शगुन के ग्रहण करे कहेला। एह रकम लगन के गीत के बाद माड़वा गाड़े गीत बोड़ी बनाए गीत माटी सहा पानी सहा आम बिहा के गीत बारात जाए गीत डमकोज गीत कोनिया वर के परछे गीत और आखिर महान लोटा लुकाए गीत पंचपनिया भाषा महान इके घटी लुका ने कहल जायला। इटा एक रकम के बर कोनिया के माझे हार जीत के खेल होयला उमने दिमाग और बुद्धि के परीक्षा होयला। ई नेग महान लोटा के कोनो बांध चाहे नदी महान लुकाल देल जायला और उके खजुआल जायला। मूल बात इटा है के कि ई खेल महान उमने के आपसी संकोच टके मेटायला और एक दूसर के प्रति प्रेम टके उजागर करना होयला। इटा के संबंध ई गीत टके देखू एको हाथे देलेक बाटी एको हाथे झरीगो चले कोनिया जबुना सिनान सिनाईते सिनाईते प्रभु घटी जे डूबी गेल खोजते सेवाल वर्ण जल। इटा के अर्थ है के एक हाथ तेल के छिपी दूसर हाथे लोटा लेकिन कोनिया जबुना नहाए जाते है नहात नहात के लोटाटा जे डूब जायला उटा के खोजत खोजत के जमुना नदी के पानीटा सिमाल रंग के हो जायला। आखिर महान यह टाके कहे पारी की पंचपुरी में बिहा गीत लेख हमरे के इटाई पता लगेला कि दुयो पोछ बाटे के गीत गिलाए संबंध सीधा सीधा जन जीवन लेखा है कोनो ऐसन गीत नाइखे जे आम जन मानस के हृदय के मन मस्तिष्क लेख नाई निकुल हो चाहे उगला कोनिया पोछ के हो चाहे बर पोछ के। पांच परगुना के बिहा संस्कार मात्र एक संस्कार नाल लगे हिया बेटी गिला घर के बोझ ना लगे बल्कि शोभा है के कोनिया घर के लक्ष्मी है के पंचपर्णिया बिहा संस्कार गीत हिया के आदर्श है के कहा उनाई लगेला कि इटा मात्र नेग नियम है के प्रत्येक गीत उगला चाहे विदाई केर हो चाहे हंसी मजाक के एकदम जनजीवन के इतिक पासे आहे जहाँ ले इके हटाए चाहे दूर करे नहीं पराय पारे। ई गीत गिला महान ई क्षेत्र के लोग गिला के प्रत्येक नेग नियम संस्कार गिला के अपन छाइटा झलकेला ओहे खातिर इटा कहे महान तनिको संकोच नहीं की पंचपर्णिया बिहा संस्कार गीत गिला महा पंचपर्णिया जनजीवन मूर्त रूप लेकिन उ गीत गिला संग एक हो जाय है।
1: तो एखन हमरे बहुत बढ़िया जानकारी कर ली पंचपर्गनिया में कि पंचपर्गनिया भाषा कर संस्कार गीत के बारे में हमरे जानकारी कर ली और इकर जानकारी देवत रहे डॉक्टर अंबिका स्वासी। तो बहिन जानकारी तो हमरे बहुत बढ़िया कर ली लेकिन मन करत है कि रौर से हमरे गोटे गीत सुन लेती।
2: अच्छा।
1: अगर रौरे गा देती तो बहुत मेहरबानी हो जाता।
2: मेहरबानी कर का बात है बहन रौरे कहा थी तो देखा थी कोशिश कर ला है कि नहीं
1: एकदम
2: तने कुन गीता कर। चलो तब
3: पियत पियत काया
2: टूटी।

ছোয়া পুতা, ছোয়া পুতা শুইতে গেলে

0: बहुत बढ़िया। और देखो रौरे गीत से हमरे के बताली कि जे नशा खोरी है वो
1: हाँ।
0: शरीर के बर्बाद कर दे वाला,
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: परिवार के बर्बाद कर देला और इन यार हमार परिवार पूरा टूट जाएला।
1: हाँ बहन देखी रहा आजकल आके बड़ा देखा थी एकदम आवा थी खने डहरे में एगो आदमी मुरुक डोड़माए चला थे एकदम कातरी हिने गिरते हुने गिरते एकदम आवा थे मुके देख के बड़ा खराब लगलक। और उकर बोहरिया पीछे से कितने चिल्ला थे रुकू हो गिर जाब रुकू, मतलब ये पियल है तो इके कुछ बुझाबे नहीं करा थे और बोहरिया हर बेचारी एकदम कूदते आवा थे।
0: अरुकर
1: तो में चलते जैसे रौरे कहली गीत गा तो मोर ध्यान हुए चल गया था चल तने सुनखे याद करके गालो की
0: हां बहुत बढ़िया गीत
1: है हाँ। और दूध मन के पियो और हाँ, अपन काया गत के बनाओ सवांग बनाओ और हाँ, काम करो नहीं हाँ,
0: काम करो मेहनत करो अरुकर फल हमरे के भेटाई। तो बहन और भी कुछ जोगाड़ी कह रही का?
1: हां हां जोगाड़ी है नहीं एगो नागपुरी लोकगीत है जिके गाए हैं जसोदा देवी और संगीमान।

0: तो एखन हमरे नागपुरी लोकगीत सुनत रही जसोदा देवी और संगीमन कर गावल गीत।
1: हाँ बहिन, तो यह गीत कर संगे हमरे कर बेरा है जगह सिरात है बहिन। तो लेकिन जायक से पहले बताए चाहे आपके एक कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लालगर। तो चलो बहिन, अगला दिन यह बेरा में हेठिन फिर से भेटा, तब तक ले सबके जोहार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्री
2: तुम्हें मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना?
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी,
1: फीस तो देखो।
3: क्या हाल है? क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन।
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
4: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
3: वो कहाँ है?
4: मिठाई।
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस की यात्री,
8: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
9: दिमाग चार्ज कर अपना।
5: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
9: देखा
8: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
5: अब क्या करोगे?
8: तेरी वाइफाई है ना?
9: बुद्धू सुधर जा।
5: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
8: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में 316 नव नियुक्त सहायक आचार्यों और 17 महिला पर्यवेक्षिकाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, दो चार महीनों में होंगी हजारों बहालियां। जेटेट भाषा विवाद पर गठित उच्च स्तरीय कमेटी की रांची में पहली बैठक संपन्न। शिक्षा विभाग से मांगा गया क्षेत्रीय भाषाओं का विस्तृत डेटा। उच्च शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर झारखंड हाईकोर्ट नाराज। सेवानिवृत्त कर्मियों को 22 जून तक बकाया भुगतान न होने पर निदेशक का वेतन रोकने का आदेश। राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में दोपहर बाद हुई तेज बारिश। मौसम विभाग ने आगामी 21 मई तक जारी किया येलो और ऑरेंज अलर्ट। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमकी रांची की राशि सिन्हा। कोलंबो में आयोजित एशिया केक ऑस्कर 2026 में जीता प्रतिष्ठित पुरस्कार। और अब समाचार विस्तार से। रांची के प्रोजेक्ट भवन में आज आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 316 सहायक आचार्यों और 17 महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नवनियुक्त शिक्षक सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि राज्य के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समारोह में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और श्रम मंत्री संजय यादव भी मौजूद रहे।
1: अभी और भी तैयारी हो रही है, लगता है कि 2-3-4 महीने में और भी हजारों लोगों की नियुक्तियां होंगी। ये नियुक्तियां सिर्फ हम तनख्वाह पाए इसके लिए नहीं है, हम नियुक्त इसके लिए भी कर रहे हैं, इस अपेक्षा के साथ भी कर रहे हैं कि राज्य का समग्र विकास हो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे में अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। ओस्लो में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाला 32वां अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक सम्मान है, जो विश्व मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नक्सलवाद का अंत होने के बाद भी हमें चैन से नहीं बैठना है। छत्तीसगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह का हवाला देते हुए कहा कि अगले 5 वर्षों के भीतर सभी प्रभावित गांवों को जीवंत आदिवासी समुदायों में बदला जाएगा, ताकि नक्सलवाद के कारण हुए नुकसान की पूरी भरपाई की जा सके।
2: सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आग्रह रखा है कि नक्सलवाद समाप्त हो गया ऐसा मानकर चैन की नींद नहीं सोना। नक्सलवाद तभी समाप्त माना जाएगा जब नक्सल

0: नक्सलवाद ने जो नुकसान किया है वो हम 5 साल के अंदर भरपाई कर इस सभी गांवों को हमारे ऊर्जावान आदिवासी गांवों में बदले।
1: जेटेट भाषा विवाद सुलझाने के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी की आज रांची में पहली बैठक संपन्न हुई। मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के बाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद और दीपिका पांडे सिंह ने बताया कि शिक्षा विभाग से नई नियमावली में सुधार के लिए विस्तृत रिपोर्ट तथा तथ्य तलब किए गए हैं।
2: कई तथ्यों कई साक्ष्यों के आधार पर आगे निर्णय लेना है। अभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि तथ्यों और साक्ष्यों को जुटान करें, तत्पश्चात उस पर निर्णय किया जाएगा। समिति अधिकृत किया है आदरणीय चेयरमैन साहब को। इसके जल्दी हमको लगता है कि फिर फ्राइडे या सैटरडे को बैठक होगा, उसका फिर आगे की रिपोर्ट।
1: भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषाओं को बाहर किए जाने से उपजे इस विवाद पर अगली बैठक अब 22 मई को होगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कल भुवनेश्वर में पूर्वी क्षेत्रीय भाषा कृषि सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाना और केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय मजबूत करना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन के दौरान विभिन्न योजनाओं की समीक्षा और कृषि क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन और बकाया वेतनमान का लाभ नहीं मिलने पर राज्य सरकार के प्रति कड़ी नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने निर्देश दिया है कि आगामी 22 जून तक पेंशन और 5वें से 7वें वेतनमान का बकाया भुगतान सुनिश्चित किया जाए। ऐसा न होने पर उच्च शिक्षा निदेशक का वेतन रोक दिया जाएगा। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत आगामी 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि राज्य में अब तक 73% मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि शेष मतदाताओं की सूची 23 मई से सभी मतदान केंद्रों पर प्रदर्शित की जाएगी, जहां लोग बीएलओ से संपर्क कर मैपिंग करा सकेंगे। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के बीच देश में कच्चे तेल और एलपीजी के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश की रिफाइनरियां सामान्य रूप से काम कर रही हैं और ईंधन की कोई कमी नहीं है।
3: हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर है और हमारे पास सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज हैं, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं और किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर या रिटेल आउटलेट पर ड्राई आउट नहीं है। लेकिन कई जगह पर अफवाहों के चलते पैनिक बाइंग देखी जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि जो बल्क सेल था वो पंप सेल पर भी शिफ्ट हो रहा है।
1: गुड्डा जिले को आज स्वच्छ ईंधन की बड़ी सौगात मिली है। सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने गुड्डा भागलपुर मुख्य मार्ग पर सीएनजी पीएनजी स्टेशन का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का लाइव संदेश भी सुनाया गया। सांसद ने कहा कि सीएनजी से प्रदूषण घटेगा और स्थानीय वाहन चालकों को किफायती ईंधन का विकल्प मिलेगा। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में महिला कैदी के साथ यौन शोषण मामले पर भाजपा ने राज्य सरकार को घेरा है। रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज प्रवक्ता अजय शाह ने प्रेस वार्ता कर दावा किया है कि जेल में बंद एक महिला कैदी का कथित यौन शोषण के बाद गुप्त रूप से गर्भपात कराया गया और सबूत मिटाने की कोशिश की गई।
4: रांची में बिरसा मुंडा जेल में एक महिला कैदी, उसके साथ कई महीनों में पहले यौन शोषण हुआ। यौन शोषण के बाद जब वो प्रेग्नेंट हो गई, केवल जेल सुपरिटेंडेंट कुमार चंद्रशेखर जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि जेल आईजी सुदर्शन मंडल, जिनकी जानकारी में आने के बाद कार्रवाई करने के बजाय उन्होंने इस पूरे मामले को रफा दफा करने का

0: फाइलों को रफा दफा किया, सबूत को मिटाया।
1: रांची जेल यौन शोषण मामले में कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा इस मामले में मुख्यमंत्री को पत्र लिखने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि महिला कैदी की मेडिकल जांच में गर्भावस्था की रिपोर्ट नकारात्मक आई है।
2: बिना कोई जानकारी बाबूलाल जी पत्र लिख देते हैं, पोस्ट कर देते हैं एक्स पे। जानकारी रखा कीजिए, आप इस राज्य के प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप जो बोलते हैं वो राज्य की जनता सुनती है। इस मामले में निगेटिव रिपोर्ट आई है और जब मामले में निगेटिव रिपोर्ट आई है तो उसके बाद आप हाथी पीट रहे हैं।
1: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने पलमा गुमला खंड के अंजनधाम टोल प्लाजा परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। क्षेत्रीय अधिकारी MT अतरदे ने कल्पतरु का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास का संदेश दिया। NHAI ने कहा कि ग्रीन हाईवे अवधारणा के तहत राजमार्गों के किनारे हरित आवरण बढ़ाने के लिए निरंतर वृक्षारोपण किया जा रहा है। और अब मौसम का हाल। राज्य में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आज रांची, खूंटी और गुमला सहित दक्षिणी व मध्य भागों में 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, बारिश और वज्रपात की आशंका है। मौसम विभाग ने आगामी 21 मई तक राज्य के अधिकांश हिस्सों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। रांची की राशि सिन्हा ने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित चौथे एशिया केक ऑस्कर वर्ल्ड एडिशन 2026 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतकर देश का मान बढ़ाया है। उन्हें व्हिप्ड क्रीम वेडिंग केक श्रेणी में उत्कृष्ट कला और क्रिएटिविटी के लिए ट्रॉफी और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के चेहरे वाली कस्टमाइज केक बनाने के बाद वे देश विदेश में सुर्खियों में आई थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में 316 नवनियुक्त सहायक आचार्यों और 17 महिला पर्यवेक्षिकाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा 2-4 महीनों में होंगी हजारों बहालियां। JTET भाषा विवाद पर गठित उच्च स्तरीय कमेटी की रांची में पहली बैठक संपन्न। शिक्षा विभाग से मांगा गया क्षेत्रीय भाषाओं का विस्तृत डेटा। उच्च शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर झारखंड हाईकोर्ट नाराज। सेवानिवृत्त कर्मियों को 22 जून तक बकाया भुगतान न होने पर निदेशक का वेतन रोकने का आदेश। राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में दोपहर बाद हुई तेज बारिश। मौसम विभाग ने आगामी 21 मई तक जारी किया येलो और ऑरेंज अलर्ट। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमकी रांची की राशि सिन्हा, कोलंबो में आयोजित एशिया केक ऑस्कर 2026 में जीता प्रतिष्ठित पुरस्कार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: प्रस्तुत है जिले में आजकल

0: इस अंक में आप सुनेंगे जामताड़ा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे जामताड़ा संवाददाता।
1: जामताड़ा जिले में केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं का सशक्त अनुसरण, स्थल निरीक्षण एवं जांच वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में किया जा रहा है। इस दौरान जमीनी स्तर पर योजनाओं की स्थिति, प्रगति, खामियां, समन्वय का अभाव आदि बिंदुओं का आकलन कर रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। यह अभियान 16 मई से 24 अक्टूबर तक प्रत्येक शनिवार को चलाया जाएगा। इस संबंध में उपायुक्त आलोक कुमार ने निरीक्षण के दौरान कहा कि
2: बेसिकली निरीक्षण का जो मेन पर्पस यही है कि हम लोग ग्राउंड लेवल पे जाके देखें क्या क्या पब्लिक को समस्याएं फेस हो रही हैं, उसको निराकरण कैसे करना है, और एक एविडेंस बेस्ड हम लोग प्लानिंग और एविडेंस बेस्ड जो एग्जीक्यूशन है किसी भी योजना का वो कैसे किया जा सकता है, उसी के लिए हम लोगों ने बाकायदा शेड्यूल निकाला हुआ है। हर शनिवार हमारे वरीय पदाधिकारी हमारे सहायक पदाधिकारी के साथ हर एक पंचायत का निरीक्षण करेंगे और उस क्रम में जो जो इश्यूज आ रहे हैं उसको हम लोग कैसे टेकअप करने वाले हैं, इसी के लिए हम लोगों ने पूरा प्लान अगले 3-4 महीने चलेगा।
1: जामताड़ा जिले के सभी प्रखंडों में जिला प्रशासन एवं बैंकों की पहल पर चरणबद्ध कृषि ऋण सशक्तिकरण अभियान चलाया जा रहा है।

0: दौरान सरकार की किसान हितैषी योजनाओं एवं बैंकों से वित्तीय सहायता का लाभ लेने के लिए किसानों को जागरूक एवं प्रेरित किया जा रहा है। इस संबंध में अग्रणी बैंक प्रबंधक बालादित्य कुमार ने बताया कि
1: किसान इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और वो कैंपेन के माध्यम से उनको जो भी केसीसी रिलेटेड लोन है उसके बारे में विस्तार से बताया जा रहा है, उनको ऋण प्रदान किया जा रहा है जिससे वो लाभान्वित हो रहे हैं। सभी किसान बंधु जो भी कैंप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आ रहे हैं तो कृषि से संबंधित सारी जानकारी उनको प्रदान की जा रही है हमारे बैंक मित्रों द्वारा और सरकारी कृषि अधिकारी द्वारा।
0: बिजली पानी सहित अन्य जन सुविधाओं की मांग को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 12 मई को समाहरणालय के समक्ष धरना एवं जोरदार प्रदर्शन किया। इस क्रम में भाजपा विधायक राज सिन्हा ने कहा कि जन सुविधाओं एवं समस्याओं को लेकर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से उदासीन बनी हुई है। उन्होंने कहा कि
2: मेन मूल्य हमारा डिमांड है पानी दो बिजली दो। उसी क्रम में आज जामताड़ा उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना एवं प्रदर्शन आक्रोश प्रदर्शन किया गया, जिसमें आपने देखा कि जब वहां गई महिलाएं मिलने के लिए तो गेट बंद कर दिया गया और आक्रोशित महिलाओं ने वहीं पे खाली घड़े को उनके गेट के पास छोड़ दिया, तोड़ दिया।
0: जामताड़ा जिले में साइबर अपराध पर विराम लगाने को लेकर जामताड़ा पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान पुलिस को सफलता भी मिल रही है। इस क्रम में पुलिस अधीक्षक शंभु कुमार सिंह ने कहा कि
3: मेरे द्वारा एक टीम का गठन किया गया था। इस टीम के द्वारा कल छापेमारी की गई नारायणपुर थाना अंतर्गत दखनी डी के पास, जहां से 3 संदिग्धों को पाया गया। कुल 8 मोबाइल जब्त हुआ है। जब उसका सत्यापन किया गया तो ये पाया गया कि उसमें ये लोग इनके द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में फोन करके साइबर ठगी की कार्रवाई की जा रही है।
0: जनगणना 2027 को लेकर जिला प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संगठनों के द्वारा भी आवश्यक पहल की जा रही है। लोगों को जनगणना के महत्व के प्रति जागरूक एवं पंजीकृत कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा।
4: अभी आप सुन रहे थे जामताड़ा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

अभी आप सुन रहे थे ज़िले में आजकल, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। शाम के 7:15 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा। आज का यह कार्यक्रम आप सुनेंगे उराव भाषा में, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं चंदा कुमारी और प्रियंका उराव। प्रस्तुति है प्रदीप कुमार की।

0: नारी का उत्था एक मुकरिन सुरक्षित टीकाकरण नंताना और मुंद रही गिच्छा गिच्छा जे टुड़ंग परता तरा जे एड़पा गुठी रही पद्दा गुठी रही आ गिच्छा स्वास्थ्य सेवन अर्स्ताना। हाँ और मुंद्रई का टीकाकरण जे रही अधिक ही प्रतिशत दरन बढ़वा आना। हाँ कि इस तो कि नमाय खद्दाय बीमार गुठी मलमनोर और चाड़े कोड़े गुठी मनोर कालोर
1: मिशन इंद्रधनुष उद्देश्य से पुना कुंद्र का खतर इन 12 जन लेवा बीमारी थी बचा आना रही मींस की रदी
0: माला दी
1: तबे तपेदिक पोलियो हेपेटाइटिस बी डिप्थीरिया काली खांसी टेटनस खखरा खसरा रूबेला इनने ढेर बग्गे बीमारी रे अदिति बच्चा पाना इधी ही मेन उद्देश्य है कि
0: अच्छा
1: गेच्छा गेच्छा डनु जहाँ स्वास्थ्य सेवा माल अड़सी
0: हाँ।
1: अधीन हूँ सारस्ताना एकदम मुश्किल रही आसन अधीन बग्गे ध्यान या कि टीकाकरण नंताना इमिशन ही उद्देश्य है
0: उद्देश्य रे और टीकाकरण नंतानम चाहिए
1: बाय नंतानम चाहिए।
0: हाँ हाँ दी ई मिशन गई खोखा और उनका मिशन गई ओरे बंजा अधी गई आ मिशन गई नामे है कि तीव्र मिशन और ईद ने ई गेम ओरे नंजाय इंद्रगे का अमर का खद्दे गही टीकाकरण मनागे
1: अच्छा
0: इदी
1: अच्छा
0: गही हो महबाराचा खद्दे गही जियान मन्नन जुक्की नन्ना जे खेनाय कनाय अरगी जनसंख्या जुक्की नन्ना नन्ना रही बीमारी गही बढरनन जुक्की नन्ना और फिर दूसरा रही का स्वास्थ्य और उनटा खुड़हा गही मतलब उनटा खुड़हान खुंदरती अगर नाम स्वास्थ्य रहो तो नाम उनटा खुड़हा कुंदरता अंगदत
1: सही बात की
0: आयंगरेर अरा खद्दाई गही स्वास्थ्य दाउमनी इदिगे
1: अच्छा।
0: ई मिशन जे रही तीव्र मिशन अधिन ओरे
1: हाँ,
0: नंतारा
1: दोनों ही उद्देश्य से
0: सेम
1: एकदम
0: रही हाँ उन्टेम रही उन्टेम
1: उन्टेम रही।
0: किसी में
1: हाँ
0: हाँ
1: इन्ना गजम दो दो जानकारी कथा मंजा और नमे मिनुर्गे ही ई जानकारी गही कथा उपयोगी रहचा होतन।
0: माने
1: हाँ अरे इंगा लग्गा ली के नमे मिनु रिज रंग नना बिद्दा ने तो गुच्चा मिंदा तरासन उराव अरा संगेर ही पायड़ का डंडी।

0: ये देख कैसे
1: हैप्पी बर्थडे भाई
0: दिखा।
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट।
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: दीदी नौकरी लग गई।
8: अरे वाह बधाई हो तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
7: हाँ जी नया मोबाइल।
8: अरे रुको शहजादे सैलरी से पहले खर्चे।
7: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
8: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
7: प्रदीप
8: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
7: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
8: अच्छा
9: RBI कहता है
10: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
11: अजम दाव डंडी मेंताज की दई इदिगी खोखा नाम उन्टे अखना गही कथा मेनोत इदिन तेंगोस डॉक्टर माया उरावेस और बिसैतली बच्चों में होने वाली प्रमुख बीमारी मतलब खद्दर नू मनने वाला बीमारी।
12: खद्दर मैया आम बीमारियां कारण लक्षण और बचना गही उपाय डेंगू चिकनगुनिया ई बरसात उल्लानू खद्दरीन किसिम किसिम गही बीमारी मनी सर्दी खुखे नड़ी पुतरना कोल नुंजी पनियस मनी सर्दी खुखे मौसम बदलारी होले खद्दरीन सर्दी खुखी नाड़ी मणिकाली ई दोनटे वायरल या संक्रमण ती मनी या मुई ती अम बरी नाड़ी बरी खनलाल मणिकाली खुखी मनी काली अकुंता नाड़ी नू अगर नाड़ी बग्गे मंजा केरा होले खुखी गई साथ साथ निमोनिया मणिकाली खद्दर सांस होआ पोलनर छाती घर घर आवाज मनी मुसो आम लेखा बरी मुई बंद मनी काली अगर संक्रमण बग्गे मनी काली होले तुरंत अस्पताल होना चाहिए या स्वास्थ्य केंद्र नू डॉक्टर रिन रिन येदना चाहिए बग्गे मनी होले ऑक्सीजन या निमुलाइजर चीना मनी होले सांस लंबा लंबा होना कम मनी काली ईदीती बछरा गे खद्दारीन विशेष ध्यान चीना मनी खद्दारीन उन्ताना मोक्ताना और एमताना नू विशेष ध्यान चीना मनी बरसात नू चाइना।

0: अजम दौडंडी मिन्ताज की दई अरा इन्ना तनम है आदिवासी अखड़ा गही प्रस्तुति राजा प्रदीप कुमार सरिस्तते एम असरा नंदम का निमागे मेनागे अजम दाव लगिया हुतंग अरा इन्ना ता बेड़ा ईशानो मुंजरा लगी तो दगे ए मन बिदा चिया एन प्रियंका उराव
1: अरा चंदा कुमारी तरते
0: निमन होरमारिन दाव माखा
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।

0: इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के सात शाम के 7:45 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से आप सबों के घर आंगन में आ गया। जैसा कि जानते हैं आप कि आज है सोमवार का दिन और आज के दिन हम कार्यक्रम लेकर आते हैं पूरे बिहार और झारखंड के एक बहुत बड़े हिस्से में युवा साथियों के लिए बुनियाद। हम चाहते हैं कि टेक्निकल पढ़ाई से उनकी बुनियाद इतनी मजबूत हो जाए जीवन की ऊंचाइयों को वो आसानी से छू सकें। भैया, आज तो टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, अपनी मर्जी का क्षेत्र चुनने का समय है, क्षेत्र भी बहुत ज्यादा है। हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। अगर आपने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है तो बहुत सारे ऑप्शन है, मेडिकल है, एग्रीकल्चर है, पैरामेडिकल है, नर्सिंग है, फार्मेसी है। ओ माई गॉड, कितने रास्ते खुल जाते हैं। इसके अलावे टेक्निकल पढ़ाई में आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, लॉ कर सकते हैं, जर्नलिज्म कर सकते हैं। ढेर सारे क्षेत्र हैं जहां आप अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकते हैं। और बिहार में जिनकी तरफ से ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, हमने कहा गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार। जी हाँ, ये विश्वविद्यालय है जहां टेक्निकल पढ़ाई कराई जाती है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि तीन नए कोर्स आए हैं, खास करके जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है, उसमें पहला कोर्स है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी। दूसरा कोर्स है बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, हमने कहा बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। और तीसरा है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। लगातार आने वाले एपिसोड्स में इसकी जानकारी देंगे और सीट बहुत कम है। आपको अगर इसमें दाखिला लेना है तो तेजी दिखानी होगी। अपना नंबर यानी गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय का नंबर हम बता रहे हैं। हाँ, आप जो है चाहे तो इस पर बातचीत कर सकते हैं। नोट कीजिए, नंबर है 94318-99002, 94318-99002। और दूसरा नंबर है 1800120051।

0: 1800121051 ये नंबर है, इन दोनों नंबरों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल हमारे साथ हाँ बैठे हैं इस विभाग बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी पर बातचीत करने के लिए प्रोफेसर साहब क्या हैं यहाँ गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में, बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में क्या जानकारियां देंगे। आइए सबसे पहले उनका परिचय लेते हैं और फिर सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं।
1: मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार है, मैं नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज का डायरेक्टर हूँ।
0: सर जी सबसे पहले आप इसके विषय में बताइए, बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: जी ये बीएससी इन कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी ये एक अलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज का एक कोर्स है, स्पेशल कोर्स है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा एक नेशनल कमीशन बना था सेंट्रल लेवल पे, उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज को उन्होंने हाईलाइट किया है, जिसके अंदर एक हमारा यह कोर्स भी है बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी। यह एक 4 साल का कोर्स है जिसमें 3 साल की पढ़ाई और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। इस कोर्स के जो बच्चे इस कोर्स को करने के बाद वो जैसे आजकल जैसे आपको पता है कि बहुत सारे हार्ट की समस्या हो रही है, ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इससे रिलेटेड सर्जरीज भी बढ़ रहे हैं, तो उन सारे सर्जरी में ऑपरेशन के दौरान उनको असिस्ट करना सर्जन को, ये इनका रोल है। और साथ ही साथ उनको उसकी टेस्टिंग करनी, काइंड ऑफ हार्ट में या लंग ब्लड वेसल्स में कोई अगर परेशानी है उसको जांच करना, यह भी इनका पार्ट आ जाता है।
0: नीरज जी मुझे जहां तक समझ में आया तो ये बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी ये जो कोर्स है, मैं इतना समझ पा रहा हूं कि जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, जो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं, जब वो ऑपरेशन करते हैं या किसी पेशेंट के साथ होते हैं, तो ये बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी किए हुए जो बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, वो उनको असिस्ट करते हैं। जैसे ऑप्थेल्मोलॉजी में आई सर्जन को जो लोग असिस्ट करते हैं तो वो पढ़ाई किए हुए होते हैं। आप अपनी तरफ से बताइए तो ज्यादा हमें समझ में आएगा और लोगों को समझ में आएगा, क्या यही सच है?
1: ये बिल्कुल, क्योंकि आजकल आपको जैसे पता है ये बहुत सारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और आप हर गली नुक्कड़ पे देखेंगे तो कार्डियक सर्जरी के पेशेंट्स आपको बहुत मिल रहे हैं, कार्डियक नर्सिंग होम्स भी खुले हुए जहां कार्डियक सर्जरी हो रही है, तो ऐसे केसेस में इनकी डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई हुई है, ताकि उनको ड्यूरिंग देयर ऑपरेशन ऑफ द पेशेंट्स दे कैन असिस्ट द सर्जन।
0: कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, जी हाँ बुनियाद कार्यक्रम है युवा साथियों, टेक्निकल पढ़ाई के विषय में जानकारी इस कार्यक्रम में हम देते हैं और आज इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ जिन्होंने किया है उनके लिए जानकारियां हैं बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में। जी हाँ नंबर नोट करें, अगर कार्यक्रम के बाद आपको ऐसा लगे कि हमें जानकारी लेनी चाहिए तो आप ये नंबर डायल करें 9431899002 और दूसरा नंबर है 1800121051 ये नंबर है। अच्छा नीरज जी एक बात बताइए, ये जो है बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी, क्या आप ऐसा समझते हैं कि इसको कर लेने के बाद रोजगार की अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी या रोजगार है, ऐसा आपका मानना है? आप बताइए पहले, क्योंकि रोजगार मिलना पढ़ाई के लिए पहला ऑप्शन होता है, एंड ऑफ द डे हमें क्या मिला ये जरूर हम देखते हैं।
1: जी क्योंकि जैसा मैं पहले बताया है कि बहुत ही ज्यादा प्राइवेट नर्सिंग होम्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल में इनकी डिमांड तो है ही है ही, साथ ही साथ सरकारी अस्पतालों में भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। और जो बच्चा ये कोर्स करने के बाद अगर विदेश में अपना करियर का ऑप्शन ढूंढ रहा है उनके लिए भी बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होती है, क्योंकि विदेशों में भी इसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड।
0: बहुत खूब बहुत खूब, एंड ऑफ द डे रोजगार है कि नहीं यही जानना चाहते हैं लोग। हाँ लोग में माता पिता, छोटे भाई बहन और युवा जिन्हें पढ़ना है उन्हें तो जानना ही है। कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, मैं हूँ राजेश और इस वक्त बातचीत चल रही है बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में। कार्डियक सर्जन के साथ इनकी बहुत आवश्यकता होती है और बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में आया है। ये गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय का नंबर हम बता रहे हैं 9431899002 9431899002 और दूसरा नंबर है 1800121051। नीरज जी एक सवाल सहज, ये लोग भी पूछते रहे हैं कि क्या गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में तरह तरह के कोर्स को इनोवेट किया जाता है, जैसे अभी बीएड स्पेशल एडुकेशन की पढ़ाई शुरू हुई है और बहुत ही उम्दा कोर्स है वो भी, और अब तीन तरीके के ये जो कोर्स हैं आज चर्चा हो रही है, बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी पर, दूसरा कोर्स है हमारा यहाँ जो अभी आया है बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडी पर, और तीसरा है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी पर। तो क्या आपको नहीं लगता है कि गोपाल नारायण सिंह लगातार ये यूनिवर्सिटी जो है स्टूडेंट के बिहाफ में, स्टूडेंट के लिए कुछ न कुछ करते रहती है?
1: सर बात यह है कि बहुत सारे कोर्सेस ऐसे भी हैं जो रोजगार वाले रोजगार परक कोर्सेस ऐसे हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं होती है, और उस वैसे वैसे कोर्सेस को हमारे मैनेजमेंट वो हमारे को वैसे वैसे कोर्सेस लाकर हमारे को बोलते हैं कि दिस काइंड ऑफ कोर्सेस वी कैन स्टार्ट विच अदर पीपल्स डू नॉट नो। और ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है कि हमें अपने मैनेजमेंट को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ ये सारे कोर्सेज भी हैं जिसको कि हमें स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑलरेडी कन्विंस्ड कि उनको पता है ये सारे कोर्सेज की बहुत ही ज्यादा डिमांड है हमारे।
0: ये तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, और खास करके हेल्थ सेक्टर में तो गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, दूसरे सेक्टर में भी, लेकिन यहाँ तो अपना जो हॉस्पिटल है ना उनमें इन बच्चों के लिए भी क्या स्कोप होता है क्या या अपॉर्चुनिटी मिलती है?
1: हमारे पास अपना एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए हमारे बच्चों को कहीं और भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो जितने भी कोर्सेज रिलेटेड टू मेडिकल एंड अलाइड हैं वो सब अगर हमें स्टार्ट करते हैं तो हमारे बच्चों को कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, साथ ही साथ उनको सीखने को सब कुछ मिल रहा है प्रैक्टिकल, और करियर अपॉर्चुनिटीज उनकी डबल हो जाए,
0: करियर अपॉर्चुनिटी दूसरे जगह की तुलना में दुगनी हो जाएगी गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में। जी हाँ, बात चल रही है टेक्निकल पढ़ाई की इस कार्यक्रम बुनियाद में, और हमेशा से सालों से बुनियाद कार्यक्रम आ रहा है, और इसे सुनकर न जाने कितने युवाओं ने टेक्निकल पढ़ाई चुना है, चाहे वो गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में या बाहर। हाँ, हम ये कभी नहीं कहते हैं कि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, यूनिवर्सिटी में ये है ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं, आपको कहते हैं कि ये नंबर है जो हमारा 9431899002 और 1800121051 डायल करें, या गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जो है जमुहार सासाराम रोहतास बिहार में है वहां आए, देखे पढ़के समझें और फिर दाखिला लें, हम ये कहते हैं। लेकिन एक बात तो एकदम डंके की चोट पर कहता है राजेश, और आज नहीं वर्षों से कहता रहा है, बीसियों साल से, हाँ, कि युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप टेक्निकल पढ़ाई कीजिए, जिंदगी आराम से आगे बढ़ेगी। चलिए आगे बातचीत का सिलसिला नीरज जी से जारी रखते हैं। प्रोफेसर साहब, ये बातें तो हो रही हैं, लेकिन हम लोग युवाओं को कहते हैं, ढेर सारी बातें होती हैं कि कहीं भी अगर जो आप एडमिशन लेने जा रहे हो, हाँ, तो दो तीन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। पहली ये कि वो कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, इसको जरूर देखना चाहिए। तो इसका जवाब तो मिल गया कि अपना गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय खुद का, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हाँ, जहां पढ़ाई होगी, और तीसरा कि टीचर्स यानी प्रोफेसर शिक्षक गण के विषय में जानकारी जरूर ले लेनी चाहिए, क्या कहेंगे आप?
1: सर, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वेल इक्विप्ड है, और फैकल्टी जो हमारे हैं अपने जो प्रोफेशनल है कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी के, उसके अलावा मेडिकल कॉलेज के हमारे जो प्रोफेशनल फिजिशियन हैं वो भी हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, तो इसलिए हमारे को अपने फैकल्टी के साथ साथ एडवांटेज है मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी का भी जो हमारे बच्चों की क्लासेस लेंगे।
0: नीरज जी, समय भागता चला जा रहा है और मेरी निगाहें स्टूडियो के घड़ी पर हैं, ज्यादा वक्त नहीं है। एक नया कोर्स जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी की, इसके विषय में अभी जानकारी आज हमने विस्तार से आपके साथ दी है। अगला एपिसोड भी आप ही के साथ बातचीत होगी जो लोग हमें सुन रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे सवाल आएंगे, खास करके कि एक बार फिर बताया जाए कि कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी होती क्या है और ये सारी चीजें, तमाम चीजें हमारे युवा साथी, उनके गार्जियन जरूर पूछेंगे, ये भी पूछेंगे

0: की रोजगार की क्या संभावनाएं, हालांकि आपने अभी जवाब दिया है बीते मिनट्स के अंदर, लेकिन हम एक बार चलते चलते एक बार फिर से कहेंगे कि रोजगार की क्या संभावनाएं हैं, जवाब दे दें, क्योंकि लोग इसके विषय में ज्यादा चिंतित होते हैं।
1: जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सरकारी में भी इसकी वैकेंसी निकल रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल में तो चाहिए ही चाहिए इनको, बहुत सारे छोटे छोटे नर्सिंग होम भी हैं जो कार्डियक सर्जरी कर रहे हैं, वहां भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है, और कई दफा तो ये लोग अब इस कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स को ऑन कॉल भी बुलाते हैं, लाइक दे कैन अटैच विद मोर देन 10 or 20 हॉस्पिटल्स एंड ऑन कॉल दे कैन गो देयर एंड डू देयर ड्यूटीज। और इसके अलावा बाहर भी विदेशों में भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, और अगर ये एकेडमिक्स में आना चाहते हैं तो दे हैव द स्कोप टू गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन MSc करके फिर दे कैन कम इन टू एकेडमिक्स।
0: थैंक यू नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से कार्डियो वैस्कुलर टेक्नोलॉजी BSc इन कार्डियो वैस्कुलर टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। अगले एपिसोड में भी आपसे ही बात होगी क्योंकि सवाल आएंगे मुझे पता है। चलने से पहले हम नंबर बता दें 9431899002 और दूसरा नंबर है 1800121051। टेक्निकल पढ़ाई को चुनिए। थैंक यू गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय की आपने बुनियाद जैसा कार्यक्रम लेकर आने को राजेश को मौका दिया, तो राजेश को दें इजाजत, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।

कार्यक्रम रजनीगंधा में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम के शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म शराबी का ये गीत आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल स्वरों में। बोल हैं अनजान के और संगीत बप्पी लाहिरी का। उपहार लेना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें उपहार देना अच्छा लगता है। अगर ऐसे में कोई कुछ मांग बैठे फिर तो वो जान हाजिर कर देते हैं।

उपहारों का आदान प्रदान मोहब्बत को बढ़ाते हैं, लेकिन मोहब्बत चीज़ क्या है ये मोहब्बत करने वाले भी कहाँ समझ पाते हैं।

मोहब्बत है क्या चीज़। अभी आप सुन रहे थे फिल्म प्रेम रोग का ये गीत। आवाज़ें थी लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर और साथियों की। संतोष आनंद ने लिखा था इसे और संगीत सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब आइए सुनते हैं फिल्म कभी कभी का ये नगमा लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। नगमा निगार हैं साहिर और मौसीकी है खयाम की।

और अब पेश है कार्यक्रम का आखिरी नगमा, फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से। आवाज़ें लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, सुनिए सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम में आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निशित कुमार और आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा, नॉर्डिक देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों का नया युग पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट। प्रोफेसर सचदेवा, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी शुक्रिया।
2: प्रधानमंत्री अपने 5 देशों की चौथे चरण की यात्रा में आज नॉर्वे पहुंचे। प्रधानमंत्री ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनस गहर स्टोर से भी बातचीत की और कल 3rd India-Nordic Summit में भी भाग लेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए सुनते हैं कि संयुक्त प्रेस वार्ता में नॉर्वे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
4: आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी। इसरो और नॉर्वे स्पेस एजेंसी के बीच आज हो रहा MOU हमारे स्पेस कोऑपरेशन को भी नया आयाम देगा। भारत और नॉर्वे की ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए लाभदायक होगा। हमें बहुत खुशी है कि नॉर्वे आज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ रहा है। आर्कटिक से आउटर स्पेस तक, ग्रीन शिपिंग से ब्लू इकोनॉमी तक, एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर फूड सिक्योरिटी तक हमारा सहयोग नए फ्रंटियर्स को छू रहा है।
2: प्रोफेसर सचदेवा, जैसा कि आज हमने प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने खास करके ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर काफी बल दिया है। प्रोफेसर सचदेवा, हम यहां समझना चाहेंगे कि ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आखिर होता क्या है।
3: जी, ये इनफैक्ट जैसे आप देखें, ये पूरे दौरे के अंदर, इससे पहले प्रधानमंत्री स्वीडन में भी थे, उससे पहले नीदरलैंड में थे, अभी नॉर्वे में है, आज द्विपक्षीय बात हुई है, कल उनकी जो है इंडिया नॉर्डिक समिट होगी। इस सारे दौरे के दौरान बार बार ये जो बात उभर के आ रही है, ग्रीन ट्रांजिशन की, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी हमने जैसे नॉर्वे के जो हमारे संबंध है उनको एलिवेट करके ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे बदल दिया है। इससे पहले हमारी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेनमार्क के साथ भी थी, और पिछले 2 देशों में जहां इन्होंने दौरा किया था, स्वीडन में और नीदरलैंड में, वहां पे भी पार्टनरशिप को ऊपर करके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा वहां पे दे दिया गया है। तो इस पूरे संदर्भ में मुझे लगता है कि भारत का जो दृष्टिकोण है यूरोप की तरफ, वो पहले से काफी बदल गया है, और हमारा जो लक्ष्य है 2047 का, जब हम विकसित भारत बनना चाहते हैं, उसमें मुझे लगता है भारत एक यूरोप को और यूरोप के अलग अलग देशों में उनकी शक्ति को पहचानते हुए, किसकी कॉम्पिटेंसी किस चीज में ज्यादा है, उसमें उनके साथ उसी टाइप की साझेदारी हम बना रहे हैं। और उस पूरी जो आने वाले 20 साल में हमको खासतौर से जो व्यापार है, निवेश है, तकनीक है, ग्रीन ट्रांजिशन है, उसमें भारत, ये सारे यूरोप के जो देश हैं, मुझे लगता है वो काफी उसमें हमारी मदद कर सकते हैं। जैसे नॉर्वे की खास बात करें, नॉर्वे में हालांकि आप जानते हैं कि उनके पास बहुत ही तेल के और गैस के भंडार हैं, उसके बावजूद भी वहां पे जो उनकी अपना बिजली जो खपत है, 80% जो है वो सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक वहां से आता है। तो भंडार होने के बावजूद

0: भी वो काफी जो है अपनी ग्रीन एनर्जी की काफी तवज्जो दे रहे हैं और यही बात पूरे नॉर्डिक के देशों की भी है और पूरे यूरोप के देशों की भी है। तो इनफैक्ट जो अभी हमने 3 महीने पहले जब भारत और यूरोपीय संघ की जो समिट दिल्ली में हुई थी उसमें भी जो 2030 का हमने जो एक पूरा रोडमैप बनाया था उसके अंदर भी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा स्तंभ जो उसका 2030 का भारत में अपना रहे हैं। मुझे लगता है हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी लगता है कि उससे भारत काफी फायदा उठा सकता है और उन टेक्निक्स को अगर हम भारत में लाते हैं तो एक तो यह है कि वहां की कंपनीज को भी उससे फायदा होगा क्योंकि उनको एक बड़ा स्केल यहां पे उसको बढ़ाने के लिए मिल जाएगा और भारत उसको जैसे प्रधानमंत्री ने बोला कि हम नॉर्वे के साथ खासतौर से ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं और कई ऐसी चीजें हैं, उन्होंने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, अगर उनकी तकनीक और हमारे उसको बड़े तरीके से कैसे तीसरी दुनिया के देशों में वही तकनीक को हम यहाँ पे लागू कर सकते हैं तो उसको और देश भी इससे फायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह से पूरी जो ग्रीन ट्रांजिशन है जो बदल रहा है दुनिया और उसके अंदर भारत यूरोप को और खासतौर से नॉर्डिक के जो देश हैं उनको अपना एक अच्छा साझेदार मानता है और उनको भी लगता है कि भारत के साथ जो ये साझेदारी है ये काफी फायदेमंद है सबके लिए।
1: स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से हम बात करें अगर आर्थिक साझेदारी की तो इस पे भी प्रधानमंत्री ने काफी बल दिया है और हाल में ही इंडिया एफ्टा ट्रेड अग्रीमेंट जो साइन हुआ और टेपा अग्रीमेंट जो साइन हुआ इस पर भी प्रधानमंत्री ने बात की। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से प्रोफेसर सचदेवा अगर हम आर्थिक साझेदारी की बात करें तो आप कैसे देखते हैं कि भारत और नॉर्वे के बीच में किस तरह से और खास करके आने वाले दिनों में आने वाले वर्षों में अगर हम कहें तो किस तरह का एक सिनेरियो आप डेवलप होता देख रहे हैं?
0: भारत और यूरोप के बीच में जो संबंध हमारे रहे हैं दशकों से उसका सबसे बड़ा जो मुख्य बिंदु है कोर वो आर्थिक संबंध हमारे उनके साथ रहे हैं, इसीलिए जो है व्यापार का, निवेश का, तकनीक का एक बहुत बड़ा उसके अंदर हिस्सा है और 2007 से जो है हम लोग यूरोपीय संघ के साथ नेगोशिएशन कर रहे थे एग्रीमेंट के लिए और उसी तरीके से 20 साल के करीब हमने एफ्टा कंट्रीज के साथ भी नेगोशिएशन किया और सबसे पहला जो हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था वो एफ्टा कंट्रीज के साथ किया था 2024 में और उसके बाद यूके के साथ किया और अभी जो है नेगोशिएशन कंप्लीट हमने यूरोपीय संघ के साथ भी कर ली है। तो ये खासतौर से जो एफ्टा कंट्रीज के साथ हमने समझौता सबसे पहले किया था वो एक तरीके से टेम्पलेट बन गया हमारे बाकी दोनों समझौतों के लिए भी। तो उसमें एक तो ये है कि हमारा जो वस्तुएं हैं वहां पे उनको काफी मार्केट मिल जाएगी, ये ऐसा हमारा मानना है उसके तहत। और सबसे बड़ी चीज ये है क्योंकि इन देशों के पास और नॉर्वे के पास खासतौर से काफी निवेश की संभावनाएं हैं और उस समझौते के तहत ये भी एफ्टा कंट्रीज ने एक तरीके से वायदा भारत के साथ किया है कि $150 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आने वाले 10-15 साल में वो भारत में करेंगे। जो नॉर्वे के अंदर खासतौर से वहां का उनका जो अपना पेंशन फंड है बहुत बड़ा पेंशन फंड है, उसने ऑलरेडी भारत के अंदर भारत की कंपनीज में 27-28 बिलियन का इन्वेस्टमेंट उसने ऑलरेडी करके रखा हुआ है यहाँ पे। तो और भी संभावनाएं उनको लगती है कि भारत की जो मार्केट है खासतौर से जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर भी वो काफी निवेश कर सकते हैं। तो इस तरह से जो संभावनाएं इस पूरे एफ्टा के साथ बनी है दोनों नॉर्डिक के देशों के बीच में और एफ्टा कंट्रीज के बीच में और भारत के बीच में, और उसमें यह भी है कि भारत के अंदर जो सर्विसेज हैं उनको भी शायद वहां पे पहले से अधिक मिल पाएगा मार्केट और वहां की सर्विसेज भी भारत के अंदर आ पाएंगी। तो दोनों को लगा जो फायदेमंद है दोनों के लिए तो इसलिए उसी के ऊपर काफी बल दे रहे हैं। तो ये दोनों जो एग्रीमेंट हमने किए हैं उन दोनों एग्रीमेंट्स को नॉर्वे को भी और दूसरे देशों को फायदा उठाना चाहिए, यही शायद प्रधानमंत्री उनको बता रहे थे वहां।
1: जी जी जी, प्रोफेसर सचदेवा, प्रधानमंत्री कल स्वीडन में भी थे और आज नॉर्वे आए हैं। भारत और स्वीडन के बीच में भी काफी लॉन्ग स्टैंडिंग एक बहुआयामी एक रिश्ता रहा है काफी लंबा, लेकिन महत्वपूर्ण इस बार इसलिए भी है कि वो रिश्ता इस बार स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और जैसा कि हम समझते हैं कि ये चार बिंदुओं पे मुख्य रूप से आधारित है। प्रोफेसर सचदेवा, हम समझना चाहेंगे कि ये नॉर्मल जो पार्टनरशिप था उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एलिवेट करने का क्या अर्थ हुआ, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होता क्या है?
0: स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जैसे मैं बता रहा था कि यूरोप के अंदर हमारा सिर्फ यूरोपीय संघ के साथ ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं है, इससे पहले हमारा फ्रांस और जर्मनी के साथ था और जब यूके उसका हिस्सा था उनके साथ भी हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और पिछले कुछ सालों में हमने इटली और ग्रीस और पोलैंड के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाया था और अभी जो है इस दौरे के दौरान हमने देखा कि दो और देशों के साथ स्वीडन और नीदरलैंड्स के

0: साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एलिवेट किया गया है। इसका बेसिक मतलब ये है कि एक तो यह है कि जब आप किसी कंट्री को स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हैं तो इसका मतलब यह है कि मोटे तौर से हमारे हित जो हैं उनके साथ स्ट्रेटेजिक तौर से, चाहे वो आर्थिक स्ट्रेटेजी हो, चाहे एनर्जी की स्ट्रेटेजी हो हमारी, या हमारे दूसरे संबंध हो सुरक्षा के, उन सब में कहीं ना कहीं उन्हें हमारा कोई आपस में कोई मतभेद नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस करते हैं तो उसका एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाते हैं। मतलब यह कि कई जगह पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हर साल एक समिट मीटिंग होगा, कहीं पे फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे मीटिंग होगी और दूसरे जो है मंत्रियों के तौर पे या अधिकारियों के तौर से अलग से कुछ वर्किंग ग्रुप्स बनेंगे, कुछ डायलॉग्स चलेंगे। तो एक लंबा एक पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे स्वीडन के साथ हमने पहले जो है वो एक इंडिया स्वीडन टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर बनाया था, उसको और भी उसके अंदर बल दिया जाएगा। उसके अंदर कल जो है एक नया ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप भी वहां पे लॉन्च किया गया। तो ये है कि ये सब चीजें, नए चीजें लॉन्च की गई हैं, प्लस हमारी उनके साथ पहले से समझ बनी है और उसमें ये भी कहा गया है कि आर्थिक तौर से भी हम दोनों आपस में मजबूती बनाएंगे, और क्योंकि स्वीडन यूरोपीय संघ का हिस्सा है और हमारा उनके साथ एफटीए हो रहा है तो उसका फायदा भारत और स्वीडन दोनों को होगा।
1: स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और स्वीडन के संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी की साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और स्वीडन के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर क्या कहा।
2: भारत और स्वीडन के संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों, रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की मजबूत नींव पर आधारित है। हम दोनों इनोवेशन को विकास का माध्यम मानते हैं, सस्टेनेबिलिटी को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और डेमोक्रेसी को अपनी ताकत मानते हैं। आज की बैठक में हमने इन समानताओं के आधार पर आगे बढ़ने पर चर्चा की। हर क्षेत्र में हमारे बढ़ते सहयोग को देखते हुए हमने हमारे संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने का निर्णय लिया। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत हम ग्रीन ट्रांजिशन, रक्षा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी तथा पीपल टू पीपल टाइज जैसे मुख्य स्तंभों पर आगे बढ़ेंगे।
1: प्रोफेसर सचदेवा, प्रधानमंत्री की 5 देशों की ये यात्रा और खास करके नॉर्डिक देशों की यात्रा की बात अगर हम कहें तो आप इसे कैसे देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण है ये?
0: यूरोपीय देश आप जानते हैं कि पूरा उनका अपना एक समूह है 27 देशों का। उसके अलावा और दूसरे यूरोप के देश हैं जो दूसरे तरीके से इस यूरोपीय संघ के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम एक तरीके से पहले तो हमने यूरोपीय संघ के साथ अपने आप को मजबूत किया और उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट किया है। उसके बाद जो स्ट्रेटेजिक तरीके से जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, हमारे द्विपक्षीय संबंध है, तो उसको अलग अलग देशों के साथ उसको हम पहले से और एलिवेट कर रहे हैं। तीसरे तरीके से एक जैसे कोई ग्रुप है, समूह है, जैसे नॉर्डिक का अपना समूह है और प्लस के तौर पर हमने नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव भी करते हैं जिसमें नॉर्डिक और बाल्टिक के जो 3 देश हैं उनके साथ भी बातचीत करते हैं। इस तरीके से जो पूर्वी यूरोप के देश हैं उनके साथ अलग से भी, तो अलग अलग तरीके से कैसे सबके साथ कनेक्ट करें, जहां पे जिसकी जो कॉम्पिटेंसी जहां पे हम कर सकते हैं
1: जी।
0: तो यूरोप को इस तरह से समझते हुए हम अलग तरीके से, जैसे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है वो आपको यूरोपीय संघ के साथ करना पड़ेगा, अगर माइग्रेशन मोबिलिटी की बात है वो आपको बायलैटरली उसकी ट्रीटीज करनी पड़ेगी। भारत एक अच्छा साझेदार आने वाले सालों में हो सकता है।
1: प्रोफेसर सचदेवा, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी शुक्रिया।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में आप सुन रहे थे सुर्खियों में, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण आरंभ होगा जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: और श्रोताओं, इसी प्यारे से गीत के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम गीत मालिका अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
2: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
1: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई, ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
2: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
1: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
2: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
1: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 और 20 तारीख को इटली में होंगे। यह दौरा 5 देशों की यात्रा का अंतिम चरण है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुँच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे में अमरीकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमरीका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और

0: प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
1: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
0: इस बीच सरकार ने यूट्यूब के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। इनमें छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo. Agreed to elevate by

0: और आखिर में बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में नॉर्वे के अपने हम मनसब जॉनस घर स्टोर के साथ मुजाकरात किए। उन्होंने बाहमी ताल्लुकात को बढ़ाकर साफ तवनाई और नीलगू मईशत पर तवज्जो करते हुए ग्रीन कलीदी शराकत दारी तक पहुंचाने से इत्तफाक किया। वजीर आजम मोदी को किंग हराल्ड द फिफ्थ ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा। हुकूमत ने इस बरस $1 खरब बरामदाद का निशाना रखा है। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने भारत में न्यूक्लियाई तवानाई और प्राइवेट सरमायाकारी के मौके पर अमरीका के एक सनती वफ से मुजाकरात किए। मगरबी बंगाल की हुकूमत ने बदउनवानी और ख्वातीन के खिलाफ ज्यादतियों की छानबीन के लिए 2 इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिए हैं। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इन दिनों अगर आपके घर में जनगणना कर्मी आकर आपके मकान के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका सहयोग करें और पूरी जानकारी उन तक पहुंचाएं, क्योंकि देशव्यापी जनगणना 2027 के पहले चरण का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जा रही है। इस बार जनगणना कार्यों में पहली बार शुरू की गई है स्वगणना सुविधा, जिसे जनता से काफी उत्साहजनक रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। काफी राज्यों में स्वगणना का जो विकल्प है वो समाप्त हो चुका है और कुछ राज्य अभी बचे हैं। ये पहल जनगणना कार्यों के डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और इसे कैसे भरना होगा, किस तरह के सवाल इसमें पूछे जा रहे हैं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो तुरंत हमें कॉल कीजिए, क्योंकि आज के कार्यक्रम में हम मकान सूचीकरण और आवास गणना पर परिचर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूँ आपके साथ फरहत नाज, और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमने आमंत्रित किया है गृह मंत्रालय की महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप महापंजीयक रुशाली वराडे जी को। नमस्कार रुशाली जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: नमस्कार और धन्यवाद।
0: श्रोताओं, हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं, आप हमारे विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331 0481, 0112371717, 0112371706 और 0112331444 पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9289094044 पर आप सवाल भेजते रहिए। सोशल मीडिया एक्स पर #AskAIR का इस्तेमाल करके भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और रुशाली जी, सबसे पहला प्रश्न हमारा आपसे ही है कि पहले चरण का काम तेजी से शुरू हो गया है, मकान सूचीकरण और मकानों की गणना किस तरह की जा रही है इसमें, और किस तरह के सवाल इसमें जनता के लिए चुने गए हैं?
1: जी, जैसे अभी आपने कहा कि इस बार पहली बार हम स्वगणना की उपलब्ध फैसिलिटी उपलब्ध है पब्लिक के लिए, तो काफ़ी राज्यों में स्वगणना का पीरियड ख़त्म हो चुका है, जो कि हमने 15 दिन के लिए रखा था, और 1 महीने का समय है जो कि प्रगणक घर घर जाके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। तो कुछ 7 या 8 स्टेट में हमारी स्वगणना कंप्लीट हो चुकी है और HLO का काम भी कंप्लीट हो चुका है। कुछ राज्यों में स्वगणना अभी चल रही है। तो क्वेश्चन के बारे में अगर हम कहें तो जैसे नाम है इस फेज का, मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना, तो इसमें हम सिर्फ मकानों की गणना करेंगे और मकान की हालत कैसी है, घर कैसा है और घर में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे पीने का पानी कहाँ से आता है, पीने का पानी कैसे है, टॉयलेट की सुविधा है या नहीं, बाथरूम की सुविधा है या नहीं, घर में कितने लोग रहते हैं, कितने कपल्स रहते हैं, रूम्स कितने हैं घर पे, और घर में एसेट्स क्या है, जैसे जैसे कि रेडियो है या नहीं, टेलीविजन है या नहीं, 2-व्हीलर 4-व्हीलर है या नहीं, तो इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे।
0: जी रुशाली जी, और सबसे पहले हमारे लिसनर हमसे जुड़ गए हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी। जी धर्मवीर जी।
2: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार।
2: एक्सपर्ट को भी नमस्कार। मैं धर्मवीर गाने का दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरे सवाल में मैं ये पूछना चाहूंगा कि घर घर जाके आप इसके लिए इंक्वायरी करेंगे, जानकारी लेंगे, और कुछ घरों में जाने का मतलब ये है कि घरों में

0: महिला का ऑनर, क्या जो आपके जाएंगे वर्कर तो उसमें एक महिला भी होगी साथ, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, जो अगर कोई दिव्यांग है, दिव्यांग का मतलब ये है कि वो अगर उसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो कैसे अपने, जो पहले आपने कहा था कि इसमें खुद भी ये दर्ज कर सकता है, और इसके लिए हमें क्या क्या, हमें कित, अगर कोई फ्रॉड आ जाता है इंक्वायरी करने के लिए तो ऐसे में हम क्या पहचान करें कि ये आदमी फ्रॉड है कि ये सरकार के भेजा गया ये आपका वर्कर है। धन्यवाद।
1: धर्मवीर जी ने तीन सवाल पूछे हैं रुशाली जी। सबसे पहला सवाल उनका ये है कि अगर महिलाएं घर में मौजूद हैं तो क्या कोई महिला कर्मी भी जनगणना कर्मी के साथ मौजूद रहेंगी?
2: तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, महिला अलग से तो नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो प्रगणक होंगे वो जनरली होते हैं जो स्कूल के टीचर्स होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। हम लोग इंस्ट्रक्शन जरूर देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसमें अपॉइंट करें, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन एक फेथफुली अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। बट ये कंपलसरी नहीं है और हर घर में एक ही आदमी जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें पूरे इंडिया के लिए 31 लाख प्रगणकों की ज़रूरत है। तो इतने सारे लोगों के साथ मतलब और एक महिला जाना इट्स मतलब संभव नहीं है। लेकिन जो तीसरा सवाल है मैं इसी के साथ जोड़ देती हूँ, जो फ्रॉड वाली बात इन्होंने पूछी है धर्मवीर जी ने, तो फ्रॉड की कोई ये नहीं है, क्योंकि प्रगणक के पास अपना आई कार्ड होगा, उसके पास चार्ज ऑफिसर का सिग्नेचर होगा, उस पर स्टैम्प होगा, प्लस क्यूआर कोड होगा आई कार्ड पे, और अपॉइंटमेंट लेटर पे भी क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड स्कैन होने के बाद हमारी वेबसाइट उस पर आ जाएगी और वेबसाइट पे उसकी डिटेल्स आपको दिख जाएंगे, तो फ्रॉड की बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हालांकि हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप अपने चार्ज ऑफिसर को या लोकल ऑफिसर से बात कर सकते हैं।
1: और दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है कि दिव्यांग व्यक्ति फॉर्म कैसे भर सकते हैं?
2: जी, तो दिव्यांग व्यक्ति के लिए जैसे पहले ही बताया मैंने, स्वगणना एक अतिरिक्त फैसिलिटी हम दे रहे हैं, ये कंपलसरी नहीं है। प्रगणक हर घर जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, अगर आपने स्वगणना की है तो भी प्रगणक घर घर जाके फिर से वो वेरीफाई करेगा। तो अगर दिव्यांग कोई है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, प्रगणक वहां पे जरूर जाएगा और इन्फॉर्मेशन लेके आएगा।
1: और अब हमारे दूसरे लिसनर हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेंद्र जी। जी राजेंद्र जी
3: नमस्कार। जी जागृति जी को और विशेषज्ञ जी को नमस्कार।
1: नमस्कार, मैं फरहत नाज बात कर रही हूँ राजेंद्र जी,
3: सॉरी
1: लेकिन मैं आपका नमस्कार जागृति जी को भी पहुँचा दूंगी।
3: जी जी, और मैं ये जानना चाहता हूँ अगर कोई गलत जानकारी देता है या तो कोई उस पे कोई कार्रवाई होगी, या जैसे कोई नोटिस दिया जाएगा जनगणना के बारे में, मकान के बारे में, उस पे क्या कार्रवाई हो सकती है? और जो 33 सवाल पूछे जाते हैं उसमें कुछ ही मेरे से कुछ दो तीन ही सवाल पूछे गए थे, और मुझसे ये पूछा गया था कि आप टीवी देखते हो, तो मैंने उनसे मेरे को ये पूछ लिया था कि आप रेडियो सुनते हो, तो मैंने कहा रेडियो मैं पहला ऐसा शख्स कह रहे मिला है इसके बारे में भी।
1: तो इनका सवाल था कि रेडियो सुनते हैं कि नहीं, इस तरह के जो सवाल हैं वो पूछे गए थे।
2: जी, एक तो पहला मुझे लगता है इनका सवाल था गलत जानकारी के बारे में, तो पहले मैं बता दूं कि गलत जानकारी अगर कोई देता तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है कि उसे कोई पनिशमेंट मिलती है। बट उससे ऊपर जो इम्पोर्टेंट बात है कि सेंसस की इन्फॉर्मेशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, सेंसस एक्ट में ये मेंशन है कि उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन गोपनीय रखी जाएगी। तो जनरली लोग सही जानकारी देते हैं, और सेंसस एक्ट में ये भी प्रोविजन है कि लोग अपने बिलीफ से, अपने नॉलेज से सही जानकारी दे। जो डेटा रिलीज होता है वो एक एग्रीगेट लेवल पे रिलीज होता है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक होने की कोई भी संभावना नहीं है। तीसरा जो है, जो हमारे 33 सवाल है वो नोटिफाई हो चुके हैं, गवर्नमेंट के गैजेट में नोटिफाई हो चुके हैं, तो उसमें जो भी सवाल है वो सारे उतने ही एनुमरेटर को पूछने हैं और उनका ही जवाब रिस्पोंडेंट को देना है। ये बिल्कुल सही कहा कि टीवी का सवाल उसमें है, रेडियो का सवाल उसमें है, रेडियो आप किस पे सुनते हैं ये भी उसमें पूछा गया है कि आप मोबाइल पे सुनते हैं या आपके पास रेडियो सेट है या फिर आप कार में सुनते हो। उसी तरह टीवी का भी अलग अलग आप कैसे देखते हो, मतलब दूरदर्शन है आपके पास, फ्री डिश या डीटीएच है या फायर स्टिक है,
1: जी
2: केबल कनेक्शन है, तो अलग अलग सवाल उसमें है।
1: और अगर किसी भी तरह की हमारे श्रोता दिक्कत उठा रहे हैं तो आप मकान सूचीकरण और मकान गणना अनुसूची के लिए वेबसाइट जो पोर्टल दिया हुआ है se.census.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं और आप सारे सवाल जो है वो इसमें आपको शो हो जाएंगे किस तरीके के

0: सवाल जो है जनगणना कर्मी पूछ रहे हैं, ताकि आपको आसानी होगी उस समय आपका सवालों का जवाब देने में। और रोशाली जी, एक और प्रश्न हमारे पास आया है कि क्या जनगणना में सभी के लिए शामिल होना आवश्यक है?
1: बिल्कुल, जैसे जनगणना का पहला ही जो मोटो है कि
0: जी
1: हम किसी को छोड़ेंगे नहीं या किसी को दोबारा गिनती करेंगे नहीं, तो हर एक को इंक्लूड होना है जनगणना में। और जो बार बार मैं जिक्र कर रही हूँ, जनगणना अधिनियम के सेंसस एक्ट 1948, उसके हिसाब से हर एक व्यक्ति
0: जी
1: को या हर एक परिवार के मुखिया को ये कंपलसरी है कि सही सही जानकारी प्रगणक को दे। और ये प्रगणक की भी जिम्मेदारी है कि जितने सवाल गैजेट में पब्लिश हुए हैं उतने ही सवाल पूछे, उसके बिना और कोई भी सवाल ना पूछे, और जो भी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहा है वो उसको गोपनीय रखे।
0: जी अच्छा, अगर कोई व्यक्ति दूसरे मतलब जॉब की वजह से यहाँ पर रह रहा है, दिल्ली शहर में रह रहा है, लेकिन वो बिलोंग करता है किसी दूसरे राज्य से, तो वो क्या दोनों जगह का जो है उसके लिए भरना जरूरी होगा सेल्फ एनुमिनेशन?
1: बिल्कुल नहीं, जैसे मैंने कहा सबको जैसे हम इंक्लूड करते हैं तो डुप्लीकेट भी नहीं करते हैं। तो जहाँ पे जनगणना की ये कंसेप्ट है, जो जहाँ पे नॉर्मली रिसाइड करता है, यानी
0: जी
1: जहाँ पे मैक्सिमम टाइम रहता है, अगर काम के सिलसिले में वो दिल्ली में रहता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दिल्ली में कलेक्ट होगी। उसके अदर फैमिली मेम्बर्स अगर गांव में रहते हैं तो अदर फैमिली मेम्बर्स की गिनती गांव में होगी, लेकिन जो जहाँ पे रहता है वहीं पे उसका काउंटिंग होता है।
0: जी और अब दिल्ली से ब्रह्मदत्त जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी ब्रह्मदत्त जी
2: जी नमस्कार मैडम जी,
0: नमस्कार।
2: हमारे विषय विशेषज्ञ जी को प्रणाम।
1: नमस्ते, प्रणाम।
2: जी ना, मेरे दो जिज्ञासाएं हैं। पहली है कि जो हमारे दस्तावेज हैं दूसरे शहर के बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के, और हम दिल्ली में निवास कर रहे हैं, तो क्या हम दिल्ली की जनगणना में सम्मिलित हो सकते हैं? प्रथम प्रश्न। दूसरी है मैडम, यह है कि अगर हम घर पर नहीं मिलते हैं तो क्या जनगणना स्टाफ को हम अपने समय के हिसाब से बुला सकते हैं? भाई छुट्टी वाले दिन आ जाना आप, तो क्या ऐसा संभव है? एक अन्य प्रश्न है ना, जो लोग जनगणना में शामिल नहीं होना चाहते, क्या उन लोगों के लिए कोई दंडात्मक कार्यवाही का भी प्रावधान है? धन्यवाद मैडम जी।
1: धन्यवाद ब्रह्मदत्त जी। तो तीनों सवाल आपके बड़े ही अच्छे थे। पहला तो ये है कि जनगणना में कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, आप जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे वो प्रगणक को नोट डाउन करनी है। इसीलिए हालांकि हम लोग सब सबसे अपील करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन सही है वही इन्फॉर्मेशन दे दे, और आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गोपनीय रहेगी, किसी के साथ वो साझा नहीं की जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताती हूँ कि आरटीआई में भी हम इन्फॉर्मेशन देते नहीं हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। कोई कोर्ट में अगर सबूत के तौर पर देने के लिए मांगता है तो उसको भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती एज पर सेंसस एक्ट। दूसरा जो सवाल था आपका, अगर आप घर पर नहीं मिलेंगे तो इसके लिए भी हमारे प्रगणक को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि अगर घर लॉक मिलता है तो 2 या 3 बार वहाँ पे जाए, छुट्टी के दिन जाए या सुबह जल्दी जाए या शाम को देर से जाए, ताकि घर पे कोई ना कोई मिलेगा। तीसरा जो आपका सवाल था दंडात्मक कार्रवाई का, तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है सेक्शन 11 में कि अगर कोई गलत जानकारी देता है तो उसको पनिशमेंट दी जा सकती है।
0: तो यानी कि पूरा सहयोग आपको जनगणना कर्मी के साथ करना है और सही
1: बिल्कुल
0: सही और सटीक जानकारी उन तक उपलब्ध करवानी है। और अब त्रिपुरा से अविनाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अविनाश जी
3: जी, नमस्कार
0: नमस्कार।
3: जी, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश अली बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल है कि जब जनगणना टाइम पे सरकारी कर्मचारी हमारे घर पे आते हैं तो हम अपना जानकारी उनको प्रदान करेंगे, तो लेकिन हम उनको पहचानेंगे कैसे कि वो सही व्यक्ति आए हैं मेरे घर पे? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ठगी व्यक्ति भी आ सकते हैं हमारे डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो हम उनको पहचानेंगे कैसे?
1: जी धन्यवाद अविनाश जी। और उसको पहचानेंगे कैसे, तो उनके पास आई कार्ड होगा और अपॉइंटमेंट लेटर होगा, जो कि लोकल चार्ज ऑफिसर, हमारे जो चार्ज ऑफिसर होते हैं वो तहसीलदार या मामलतदार होता है आपके एरिया का, या कोई बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये इनका स्टैम्प और सिग्नेचर के साथ प्रगणक के पास एक आई कार्ड होगा, अपॉइंटमेंट लेटर होगा, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके ऊपर क्यूआर कोड होगा, क्यूआर कोड स्कैन करके आप देख सकते हैं, उसमें आपको हमारी वेबसाइट से सारी डिटेल मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कोई फ्रॉड हो रहा है तो आप अपने चार्ज ऑफिसर से या एरिया के कोई भी ऑफिसर से उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं।
0: रोशाली जी, एक और प्रश्न मेरे पास आया है कि खाली मकान, बंद मकान या फिर निर्माणाधीन मकान की गिनती किस श्रेणी में होगी और इन्हें कैसे चिन्हित किया जाता है?
1: जी तो हमारे जो मैंने कहा हर एक क्वेश्चन के अलग अलग कोड है, तो जो हमारा जनगणना मकान के कोड है उसमें
0: जी
1: कुछ कोड है वैकेंट के लिए, कुछ कोड है अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए, कोड तो नहीं है बट अगर अंडर कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग है उसका छत डाला हुआ है तो उसको हम मानते हैं, क्योंकि मेन जो हमारा है सेकंड फेज जो फरवरी
0: जी
1: 2027 में होगा, तो हो सकता है अभी जो घर आपका अंडर कंस्ट्रक्शन हो फरवरी 27 तक वहां पे कोई रहने के लिए आ जाए, तो ऐसे इसीलिए उसको हम गिनती अभी कर लेते हैं, उसको नंबर देते हैं और उसको इन्फॉर्मेशन एज अ वैकेंट कर देते हैं और एक रिमार्क डाल देते हैं कि इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, और जो खाली है उसको एक वैकेंट हम मानते ही है। कुछ ऐसे घर भी मिलते हैं कि घर लिया हुआ है लेकिन लॉक है, रहते कहीं और है, तो उसको भी लॉक के कैटेगरी में हम इंक्लूड करते हैं ताकि सेकंड फेज में वो छूटे
0: जी
1: नहीं।
0: अच्छा, इसमें जनगणना मकान नंबर कौन देता है और दीवार पर लिखने का क्या नियम है?
1: ये प्रगणक देता है और
0: जी
1: नियम है कि एक प्रगणक को एक जो एरिया देते हैं एनुमरेशन ब्लॉक
0: जी
1: हम जिसको कहते, छोटा सा एरिया होता है 700 से 800 पॉपुलेशन या 150 घरों का, तो वो पूरे अपने एरिया में सीरियली जनगणना मकान नंबर
0: जी
1: देता है, एक से लेकर जो भी लास्ट
0: जी
1: उसके एरिया में होगा तो वो खुद लिखता है। उसके लिए हमने कुछ स्टेशनरी उसको प्रोवाइड की है, मार्कर पेन्स वगैरह दिए।
0: ठीक है। और अब शिमला से हमारे साथ राकेश जी जुड़ गए हैं। जी राकेश जी,
4: जी नमस्कार।
0: नमस्कार।
4: जी मेरा प्रश्न ये है कि जो घर में रहते थे उनकी तो होती है, जो किराए के मकान पे रहते हैं क्या वो भी जनगणना में आता है? उनको क्या जनगणना करानी पड़ती है जो किराए पे रहते हैं?
1: जी बिल्कुल, जैसे फिर से मैं कह रही हूँ कि जनगणना में किसी को छोड़ा नहीं जाता, किसी को दोबारा गिना नहीं जाता, तो अगर आप किराए के भी घर में रह रहे हैं तो जनगणना का पहला जो रूल है कि जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे उसकी गिनती होती है, तो आपका घर खुद का हो, किराए का हो या और किसी का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जहाँ पे रह रहे वहीं पे आपकी गिनती होगी। आपका घर किराए का है या खुद का है ये जानने के लिए हमारा क्वेश्चन है कि घर आपका खुद का है या किराए का है। किराए का है तो उसके लिए भी आपका कोड है कि आपका घर किराए का है, लेकिन आपका खुद का घर कहीं और है तो उससे हमारे पास ये एक नंबर्स आ जाएंगे कि कितने मतलब पूरे कंट्री में या पूरे देश में कितने लोगों के पास खुद के घर है या कितने लोग किराए पे रह रहे हैं।
0: और अब रवि जी जुड़ गए हैं हमारे साथ हरिद्वार से। जी रवि जी।
5: हाँ जी नमस्कार मैम जी, मेरा ग्वालियर गढ़मीरपुर हरिद्वार से हूँ जी।
0: जी नमस्कार।
5: हाँ जी माँ जी, विशेषज्ञ को भी मेरा नमस्कार जी।
1: नमस्ते
5: जी मैम, मैं जानना चाहता हूँ जी, जो हम जनगणना है हमें सहयोग करेंगे, अपनी जानकारी देंगे, वो कितनी गोपनीय रखी जाएगी मैम?
1: जी बिल्कुल, ये पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, और कितनी रखी जाएगी इसके लिए मैं एक ही जवाब दे सकती हूँ कि आप भी मांगेंगे बाद में तो आपको भी नहीं दी जाएगी, इतनी गोपनीय रखी जाएगी, क्योंकि पूरी जानकारी एज पर सेंसस एक्ट या सेंसस अधिनियम जो है उसके हिसाब से किसी को दी नहीं जाती, आरटीए में भी दी नहीं जाती, कोर्ट में भी दी नहीं जाती और इंडिविजुअल भी को भी दी नहीं जाती। एक बार फिल होने के बाद वो कॉन्फिडेंशियल रह जाती है और हम सिर्फ एग्रीगेट लेवल पे डेटा रिलीज करते हैं।
0: और अब एक और लिस्नर हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से, महेंद्र जी। जी महेंद्र जी।
6: जी नमस्कार।
0: नमस्कार
6: मैम, मेरा सवाल ये है कि अगर पुत्र या पुत्र वधू अगर माता पिता के साथ जीवन यापन करते और उनका भोजन एक ही रसोई में तैयार होता है तो वो अलग परिवार माना जाएगा या उसी में जॉइंटर किया जाएगा?
1: जी देखिए, जनगणना के लिए एक ही कंसेप्ट है, अगर एक परिवार मानने के लिए कि वो एक ही चूल्हे पे खाना पकाते हैं या नहीं, या एक ही किचन में खाना पकाते हैं या नहीं, तो इसमें कोई भी हो अगर वो एक ही किचन से खाना खा रहे हो, खाना पका रहे हो, तो उसको एक ही परिवार माना जाएगा, चाहे वो अनरिलेटेड हो, उनका कोई आपस में रिलेशन भी ना हो। जैसे आजकल हम देखते हैं तीन चार दोस्त मिलके एक छोटा सा फ्लैट लेके रहते हैं और अपना अपना खाना बनाते हैं या मेड को रख के खाना बनाते हैं, तो ऐसे में भी उनको हम एक ही परिवार मानते हैं।
0: अच्छा, इसी से जुड़ा एक और प्रश्न मेरे पास आया था कि अगर मेरी बेटी की शादी हो गई और वो किराए पर रहती है तो क्या वो अपने घर में उसको सदस्य के रूप में शामिल कर सकते हैं?
1: नहीं बिल्कुल नहीं, वो जहां पे रहती है वहां पे
0: जी
1: उसको गिना जाएगा।
0: अच्छा, और अब गुरुग्राम से सुभाष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुभाष जी।
7: जी नमस्ते मैम।
0: जी नमस्कार।
7: और आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय आपको नमस्कार।
1: जी नमस्ते।
7: जी मेरा सवाल ये है मैम कि जो स्वगणना का जो भूमिका है जैसे केवर स्वगणना आपने जिक्र किया था अभी, तो उस स्वगणना में उसकी

0: इसकी भूमिका को सत्यापन के रूप में जाना जाएगा उसको, मतलब कौन सा ऐसा प्रमुख बिंदु रहेगा जो उसके व्यक्ति के प्रमुख कार्यों को बताकर वह सुकृष्ट से स्वीकारा जाए, उसका सत्यापन करने के क्या तरीके हैं, यही मैं पूछना चाहता था। धन्यवाद जी।
1: जी, तो जैसे मैंने कहा, स्वगणना इस बार पहली बार हम लोग ये फैसिलिटी दे रहे हैं। 2011 तक ये फैसिलिटी नहीं थी। ये इस बार इसलिए इंट्रोड्यूस की कि काफ़ी लिटरेसी भी बढ़ी है, प्लस आजकल बड़े बड़े शहरों में ये देखा जाता है कि घर के सारे सदस्य कहीं ना कहीं काम पे जाते हैं, सुबह से लेकर रात तक वो बाहर रहते हैं, तो प्रगन को देने के लिए उतना टाइम उनके पास नहीं होता। लेकिन उसकी वो जो इन्फॉर्मेशन भरेगा वो सत्यापित करने भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ हमारे कंसेप्ट्स है जैसे पानी कहाँ से मिलता है या घर में टॉयलेट की फैसिलिटी क्या है, इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है कभी कभी रिस्पोंडेंट को खुद पता ना चले, क्योंकि प्रगणक को काफ़ी अच्छे से हम ट्रेन करते हैं। 3-4 दिन का उसका ट्रेनिंग होता है, उसको वीडियोस दिए जाते हैं, ट्रेनिंग मटेरियल दिया जाता है। तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन अगर कभी रिस्पोंडेंट या जो खुद भर रहा है स्वगणना की इन्फॉर्मेशन कुछ गलत अगर करे तो वो प्रगणक एक बार देख के उसको बता के उसको सही करके सत्यापित कर सकता है।
2: अच्छा, एक और प्रश्न हमारे पास आया है रुशाली जी की। स्लम और जे जे कलस्टर, बेघर आबादी की गिनती मकान जनगणना में कैसे सुनिश्चित की जाती है?
1: जी, स्लम के एरिया के लिए तो हम जैसे मैंने कहा एक प्रगणक के लिए छोटा सा एक एरिया होता है, तो स्लम के हम अलग से एरिया बनाते हैं, उसको अलग से कोडिंग करते हैं ताकि हमारे पास स्लम का डेटा भी आ जाए, क्योंकि उनके घर होते हैं, कच्चे हो चाहे पक्के हो, घर होते हैं, उसकी गणना की जाती है, घर नंबर भी दिया जाता है।
2: जी।
1: जो बेघर होते हैं, बेघरों की गणना पहले फेज में नहीं होती, उनको सेकंड फेज में गिना जाता है, जो कि सेकंड फेज हमारा कंप्लीट होने के बाद लास्ट डेट में जो 28 फरवरी का दिन होता है उसको रात को हम उनकी गणना करते हैं, क्योंकि जनरली ये लोग रात को ही मिलते हैं अपने किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे या किसी ब्रिज के नीचे या इस तरह के जगह पे, तो बेघरों को सिर्फ सेकंड फेज में गिना जाता है।
2: जी, तो श्रोताओं, अब आपके सवाल जो हैं वो कुछ कम हो रहे हैं, तो हम आपका इंतजार कर रहे हैं कॉल का। आप परिचर्चा सुन रहे हैं और मकान सूचीकरण आवास गणना पर विषय आज हमने रखा है, क्योंकि जनगणना 2027 जारी है और बहुत तेजी से ये काम चल रहा है। जनगणना कर्मी जो है दिन भर लगे हुए हैं, आपके सवाल का जवाब जो है आप दे रहे हैं, और इसी पर आप कॉल कर सकते हैं 0112331 0481 और प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से। किसी भी तरह का डाउट अगर आपके मन में है और आप इससे रिलेटेड कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 0112371717 पर। हम कर रहे हैं आपके कॉल का इंतजार। रुशाली जी, एक और प्रश्न मेरे पास है कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधता वाले राज्यों में प्रश्नावली को समझाने की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है?
1: सबसे बड़ी चुनौती तो है उनको अपनी भाषा में समझाना, उनको अपनी भाषा में सारा मटेरियल उपलब्ध कराना, और प्रश्न भी उनके भाषा में होने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा एक ट्रेडिशन है जनगणना का कि जनगणना के सारे मटेरियल 16 भाषाओं में उपलब्ध है, जो सारे हमारे मोबाइल ऐप है या पोर्टल है या स्वगणना का वेब पोर्टल है, ये भी 16 भाषा में उपलब्ध है। जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स है ये तो 19 भाषा में उपलब्ध है, क्योंकि हर एक स्टेट की या हर एक रीजन की अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है, तो उन सारे लैंग्वेज में ये सारा अवेलेबल है।
2: जी, अच्छा, 2011 में जो है अगर बात की जाए तो डेटा की एंट्रिंग, स्कैनिंग और वेरिफिकेशन में लगभग बताया जा रहा है कि 2 साल लग गए थे, लेकिन 2026 में रियल टाइम डेटा अपलोड से रिजल्ट कितने जल्दी आने की उम्मीद है?
1: बहुत अच्छा सवाल है। जैसे 2011 में पहला हमारा पब्लिकेशन आने में 2 साल लगे
2: जी।
1: लेकिन आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन पे हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो सेकंड फेज में आती है, तो एक एक सीरीज या एक एक पैरामीटर पे डेटा रिलीज करने में 6 से 8 साल लगे थे। जो हमारा लास्ट टेबल रिलीज हुआ था माइग्रेशन पे, वो हमारा 2019 में रिलीज हुआ था, क्योंकि हमारे जो पेपर पे होता था तो देश के हर कोने से पेपर कलेक्ट करना, मतलब इन्फॉर्मेशन भरने के बाद वो कलेक्ट करना, वो स्कैन करना, इसी में हमारे पूरे 2 साल निकल जाते थे। अब हालांकि हमारा डिजिटल हो रहा है, रियल टाइम डेटा आ रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट पहला जो हमारा पब्लिकेशन है वो 8 से 9 महीने में रिलीज हो जाए, और बाकी सारी डेटा 2 से 3 साल के अंदर अंदर डेटा पब्लिश हो जाए।
2: जी बिल्कुल, क्योंकि जनगणना केवल जनसंख्या की गिनती नहीं है बल्कि

0: राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी है, तो मुझे लगता है कि इसमें अगर सब लोग मिलकर भागीदार बनेंगे तो देश प्रगति की राह पर बढ़ेगा। और अब दिल्ली से विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विकास जी।
1: हाँ जी, हमारे दो मकान एक तो गांव में है राजस्थान में और एक दिल्ली में है, तो हमारी जनगणना कहाँ होगी?
0: जहाँ पे आप रहते हैं हमेशा के लिए या ज़्यादा वक्त जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आपकी जनगणना होगी। और यहाँ पे बिल्कुल डरने की बात नहीं है कि अगर आपकी जनगणना यहाँ पे होगी तो गांव के मकान का क्या होगा। जनगणना का उससे कोई भी संबंध नहीं है, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आपकी गणना होगी।
1: अनुशाली, ये प्रश्न वैसे देखा जाए तो बहुत लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो है रोजगार के लिए बाहर आते हैं और गांव का जो घर है उनका या तो खाली पड़ा होता है, लेकिन वो होता है, वो कहीं ना कहीं जाकर जो है उनसे जुड़ा हुआ होता है। तो वो लोग ये
0: बिल्कुल
1: सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पर हम लोग वो भर देते हैं, जैसे दिल्ली में अगर रह रहे हैं तो दिल्ली का अगर भर जाता है तो क्या गाँव का भरना जरूरी होगा, और अगर छूट जाता है तो क्या होगा?
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो जनरली जनगणना की यही कंसेप्ट है कि जो आदमी जहाँ पे रहता है, क्योंकि देखिए अगर वो शहर में रहता है तो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक मतलब शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें
1: जी
0: मजबूत बनाना है, इसलिए जनगणना का जो कंसेप्ट है जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे उसकी गिनती होगी। हालांकि मैंने फिर एक बार कहती हूँ कि इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपका गांव में भी घर है, गांव में दो घर है, यहाँ पे एक घर है, तो इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप जहाँ पे रहते वहाँ पे आपकी गिनती होगी।
1: जी और अब एक और प्रश्न हमारे साथ जुड़ गए हैं। एमपी से राजेश नीमा जी ने प्रश्न ले रहे हैं उनका। जी राजेश जी।
2: जी, मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ और मेरा सवाल ये है कि यदि एक घर में एक मकान आधा मकान कच्चा है और एक कमरा पक्का है तो वो जनगणना की कौन सी श्रेणी में आएगा?
0: जी, तो जनगणना में अगर सारे सवालों के बारे में एक जिस्ट में बताऊं तो प्रीडोमिनेंटली यानी मुख्यतः जो यूज होता है उसका इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं। जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर सोर्स की अगर मैं बात करूं कि आपके पास कुआं भी है और नल से भी पानी आ रहा है, लेकिन आप नल का पानी ज़्यादा यूज करते हैं तो नल आपको लिखना है। उसी तरह आपका अगर आधा मकान कच्चा है आधा पक्का है, या ज़्यादा मकान पक्का है और थोड़ा सा मकान कच्चा है तो पक्का लिखना है। तो ये डिपेंड है आपका कितना पोर्शन पक्का है कितना पोर्शन कच्चा है।
1: और अभी कौन लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से, पप्पू सिंह जी। जी पप्पू जी
3: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार।
3: सर, जैसे मकान के अलावा जैसे हमारा प्लॉट है और उसमें हमारे पशु बनते हैं और ईंधन खंडा रखे रहता है और वहाँ पे कुछ भी बना नहीं है, वैसे ही है, उसमें पेड़ वगैरह खड़े हैं, तो उसकी गणना भी होगी क्या?
0: जी नहीं, जैसे हमारे इस फेज का नाम है मकान सूचीकरण, तो वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए। खाली प्लॉट को गिनते नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे अगर कोई कच्चा सा शेड भी है जिसमें पशु रखे हुए हैं तो उसको एक नंबर दिया जाएगा और उसको नॉन रेसिडेंशियल करके उसको गिना जाएगा।
1: तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न था एक
0: जी
1: तरीके से,
0: जी
1: क्योंकि
0: हाँ
1: अक्सर लोग गांव में जो होता है पशु वगैरह बांध देते हैं और पूरा एक शेड प्रॉपर ताकि बारिश से उनको बचाया जा सके वो रखते हैं। अच्छा रुशाली जी, एक और ये सवाल है कि 2011 में बैंकिंग सेवा का उपयोग नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार जो है जनधन डीबीटी के बाद इसे जोड़ने का क्या मकसद है?
0: मकसद यही है, क्योंकि एक स्कीम शुरू की गवर्नमेंट ने जनधन योजना, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कितने लोगों के पास या कितने परिवारों के पास बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है, ये देखने के लिए ये प्रश्न नए से जोड़ा गया है।
1: जी, और अंत में चलते चलते हम रुशाली जी आपसे चाहेंगे कि जनता से क्या अपील हम करना चाहेंगे ताकि वो इसमें सहयोग दे सकें पूरी तरीके से।
0: जी, जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि पूरा कोऑपरेट करें इस जनगणना के लिए, क्योंकि जनगणना से जो भी आंकड़े आते हैं, फिर से एक बार दोहराती हूँ मैं, पूरी तरह से गोपनीय रखे जाते हैं। इससे कोई भी आपके ऊपर ना कोई टैक्स लगेगा, लेकिन जो भी आंकड़े आप सही आंकड़े देंगे उससे सरकार की नीतियाँ बनेगी, पॉलिसीज बनेगी, जैसे किस गांव में स्कूल बनाने हैं या किस गांव में पानी की सुविधा देनी है, अच्छे पानी देनी है या टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो इस तरह की जो भी वेलफेयर स्कीम्स सरकार बनाती है उसके लिए सही सही जानकारी देना बिल्कुल ज़रूरी है। तो यही एक अपील है कि सही जानकारी दे और कोऑपरेट करे, और जो प्रगणक है हमारे वो अपना काम संभाल के पूरा एक्स्ट्रा काम ये कर रहे हैं, तो उनको अच्छे से कोऑपरेट तो करे ही, प्लस अच्छे से उनसे उनके साथ बिहेव करे, अच्छे से बात करे।
1: जी बिल्कुल वैशाली जी, क्योंकि 10 साल में एक बार ये मौका आता है कि जब आपके घर की गिनती, आपके सपनों की गिनती जो है वो की जाती है। जनगणना कोई डर की बात नहीं है, ये आपके हक की बात है, और आपका मकान गिना जाएगा तभी मकान तक सुविधा पहुंचेगी। भारत की पहली डिजिटल जनगणना में भागीदार बनिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली जी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आज आप हमारे समक्ष मौजूद रहे और हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का आपने जवाब दिया। बहुत
0: धन्यवाद
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं मुझे दीजिए इजाजत, कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनहरी यादें।

वही रातें बनती हैं यादों का हंसी गुलदस्ता, जहां साथ हो यारों का और खुला हो बातों का रास्ता। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को मीता बोले तो आपकी मीत का प्यार भरा नमस्कार। और कहिए दोस्तों, इस खूबसूरत सी रात में अरमान कुछ जगह जगह से हैं। ठंडी हवा के झोंके आपको सुकून दे रहे हैं। कुछ पुरानी यादें दस्तक तो नहीं दे रही। आप अभी वहीं अपने कमरे में हैं या आपकी भावनाएं, आपके एहसास कहीं अतीत की गहराइयों में अंगड़ाइयां ले रही हैं। चलिए बस आराम से सुकून से बैठ जाइए और आनंद लीजिए प्यारे प्यारे गीतों को, गीतों का और भी खूबसूरत बनाइए अपनी इस रात को। नील गगन की चादर ओढ़े तारों की छांव में सोती है रात। नील गगन की चादर ओढ़े तारों की छांव में सोती है रात। हवा भी कुछ ऐसे चलती है जैसे कानों में कहती है कोई बात।

आंखें थक गई बाट निहारत, आंखें थक गई बाट निहारत, रूठ गई सब सखियां, सैया मुँह से बोलत नाही, सुनी हो गई रतियां।

इजाज़त हो तो तुम्हारी आँखों में डूब जाऊँ, इजाज़त हो तो तुम्हारी आँखों में डूब जाऊँ, थक जाऊँ अगर दुनिया से तुम्हारी बाहों में खो जाऊँ।

न कोई राह न मंजिल न रोशनी का सुराग, न कोई राह न मंजिल न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूँ मेरे हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

ख्यालों की दुनिया में यूं ही खोए रहिए दोस्तों, हमें भी याद करते रहिए, गीत गाते गुनगुनाते रहिए, जो भी आपके एहसास हैं उन्हें जगाते रहिए और खुश रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी दोस्त मीता बोले तो आपकी मीत आपसे यही अनुमति चाहती है। नमस्कार।

प्रस्तुत कर रहे हैं वायलिन पर राग श्याम कल्याण, तबले पर आपके साथ हैं श्यामल बोस। तो आइए सुनते हैं वीजी जोग का वायलिन वादन।

अभी आप सुन रहे थे वीजी जोग का वायलिन वादन। आप प्रस्तुत कर रहे थे वायलिन पर राग श्याम कल्याण। तबले पर आपका साथ दे रहे थे श्यामल बोस। और इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप क्रमशः हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार सुनेंगे, जिसे रिले करेंगे हम अपने दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई, ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। यह यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेले से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले पांच वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15वें ओवर में 2 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई की ओर से कार्तिक शर्मा ने 44 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।